मतवाली फिजा संसार सुहाना लगता है मत होश हवा मतवाली फिजा संसार सुहाना लगता

सुबह की ताज़ी हवा जैसे हमें आगे बढ़ने का संदेश देती है, रुकना नहीं है, थकना नहीं है, हमेशा चलते रहना है। रास्ते में चाहे जैसी भी रुकावटें हों, कदम उम्मीद के साथ चलते रहने चाहिए।

भंवरा फूलों की तलाश में निरंतर उड़ता रहता है। उससे सीखिए कि जीवन में भी सुंदर अवसर खोजने के लिए मन को खुला और कदमों को गतिशील रखना चाहिए। हर नया दिन एक नया फूल है जिसमें सफलता की खुशबू छुपी है। और इसी विचार के साथ मैं आपसे लेती हूँ अनुमति, छोड़ के जा रही एक प्यारे से गीत के साथ। जल्द मुलाकात होगी और आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका ऋचा झा। अथ वार्ताः। केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन ह्यः नवदिल्ल्यां सम्पन्नोपवेशनानन्तरं 13,000 कोटि रूप्यकाधिकाः पञ्च परियोजनाः अनुमोदिताः। एतासु 4 रेलमार्ग सम्बद्धाः, एका च राजमार्ग सम्बद्धा परियोजना अस्ति। सूचना प्रसारण मन्त्री अश्विनी वैष्णवः उक्तवान् यत् केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु, आन्ध्रप्रदेश इत्येतेषु 4 राज्येषु रेलमार्गस्य 8 बहुमार्गीय परियोजनाः अनुमोदिताः। असौ उक्तवान् यत् आहत्य 50,4,900,000 कोटि रूप्यकाणां व्ययेन एताः परियोजनाः 31 वर्षात् 31 वर्षपर्यन्तं पूर्णाः करिष्यन्ते।
1: 5 बहुत बड़े फैसले लिए हैं। पहले 4 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रेलवे के हैं और 5वां प्रोजेक्ट हाईवे का है। पहले 4 प्रोजेक्ट में जो हावड़ा से चेन्नई की रूट है, मेन लाइन है, इस मेन लाइन के क्वाड्रुपलिंग के डिसीजंस हैं और एक है कटक से

चैंपियनशिप चल रही है और बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन चैंपियनशिप में क्या कुछ रहा आज के स्पोर्ट्स है जानते हैं अब डेट्स।

0: दिलवालों की दिल्ली में बैडमिंटन इन दिनों गया है। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल इंडोर स्टेडियम के बैडमिंटन एरिना में हवा में लहराते शटल पर लगता हर स्मैश, नेट पर चतुराई से जुटाया गया हर पॉइंट, फोरहैंड और बैकहैंड शॉट पर बनता हर अंक बैडमिंटन प्रेमियों के जोश को जश्न में बदल रहा है। शटलर्स की हर एक फुर्तीली चाल और रैकेट की हर गूंज इतिहास लिख रही है। इस रैकेट गेम के 44 फीट लंबे कोर्ट पर हर एक सनसनाते स्मैश के साथ स्टैंड्स में मौजूद हजारों बैडमिंटन प्रेमियों के दिल की धक धक और स्टेडियम से उठती गूंज ये बता रही है कि दिल्ली दुनिया का दिल जीतने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। इस अद्भुत और अनूठे माहौल के बीच किसी को पराजय निराश कर रही है तो किसी की जीत खेल प्रेमियों को और ज्यादा जोश से भर रही है। आगे बढ़ने के लिए मचे जद्दोजहद के बीच चिर परिचित माहौल, घरेलू मैदान, तालियों की गड़गड़ाहट और स्टैंड से उठता शोर भारत के झंडा बरदारों को नई ताकत और गजब की स्फूर्ति से भर रहा है। इस जुनूनी माहौल के बीच भारतीय खिलाड़ी हैरत अंगेज बात चाहे 5 बार की वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडलिस्ट पीवी सिंधु की हो या फिर वर्ल्ड नंबर 1 शी युकी को पहले राउंड में बाहर करने वाले युवा खिलाड़ी आयुष सट्टी की, घरेलू दर्शकों का समर्थन इनमें एक नई जान फूंक रहा है। भारत के लिए तीसरे दिन की शुरुआत भी शानदार रही। कोर्ट पर उतरने से पहले ही एक जीत मेजबान देश के लिए दर्ज हो गई जब सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की 5वीं सीट जोड़ी मेंस डबल्स के राउंड ऑफ 32 में पहुंची। स्कॉटलैंड के अलेक्जेंडर डुन और एडम प्रिंगल ने फिटनेस की समस्या के कारण कोर्ट पर उतरे बिना ही मैदान छोड़ दिया। हालांकि इस अनचाही परिस्थिति ने सात्विक और चिराग की जोड़ी के गगनभेदी स्मैश और नेट पर चीते जैसी फुर्ती को देखने की उम्मीद कर रहे बैडमिंटन प्रेमियों को थोड़ा निराश किया। फिर भी ये भारतीय जोड़ी प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई। मैदान पर जीत के साथ अभियान को आगे बढ़ाने का जिम्मा मिक्स डबल्स में 15वीं सीट ध्रुव कपिला और तनिषा क्रेस्टो पर था। इस जोड़ी ने भी उम्मीदों को परवान चढ़ाया। दोनों का मकाऊ की जोड़ी और वेंगची एनसी के खिलाफ मुकाबला एक तरफा रहा। पहला गेम भारतीय जोड़ी ने 21-11 से जीता। दूसरे गेम में भी शुरुआत से ही पकड़ बनाए रखी और एक बार फिर स्कोर 21-11 ही रहा। ध्रुव ने बताया कि पिछले साल की गलतियों से सीखकर इस बार कोर्ट पर उतरे। वहीं तनिषा ने बताया कि बेहतर तालमेल से जीत आसान हो गई।
1: Since last year we learned a lot and this year it's going well now. Like there are days like when we are not at the best but still we are trying to figure it out like how do we have to become more stable and keep performing well.
2: Before him coming my game was not more mixed doubles oriented but I think after him stepping in he's changed my game a lot especially like moving in and being more aggressive which gives Dhruv a lot more opportunity at the back and I think that's exactly what's needed in mixed doubles and gives us the right plan.
0: हालांकि भारतीय खेमे की सफलता के तीसरे दिन का सिलसिला मेंस डबल्स हरण अमसा करुणन और एम आर अर्जुन की भारतीय जोड़ी 15वीं रैंक कोरियाई जोड़ी कैंग मिन युक और की डांग जू से पहले गेम में संघर्ष के बाद मैच 17-21 14-21 से हार बैठी। इस मुकाबले में भारतीय जोड़ी के बीच वैसा तालमेल नहीं बन सका जिससे वे जीत तक पहुंच सकते थे। एम आर अर्जुन ने भी इस बात को माना।
3: आई थिंक हम लोग स्टार्ट अच्छा ही किया था मैच से पहले। हमारा टैक्टिक ऐसा था कि कोरियंस के साथ यू नो दे आर वेरी गुड एट डिफेंस तो मैच लंबा होने वाला था एंड हम लोग मेंटली प्रिपेयर था लंबा मैच खेलने के लिए एंड आई थिंक 15 ऑल तक executed our tactic pretty well. Here and there mistakes हो रहा था बट हम लोग कवर भी कर रहा था 15 ऑल तक लेके आया मैच को बट फिर उधर से जो आई थिंक 2-3 पॉइंट्स कंटिन्यूस चला गया आई थिंक दैट कॉस्ट अस द मैच बिकॉज 18-15 से एक्सपीरियंस प्लेयर है वो लोग तो एक एक्सपीरियंस प्लेयर से 18-15 डाउन से टू ब्रिंग अप द मैच और क्लोज द मैच इज अ डिफिकल्ट टास्क।
0: कोर्ट नंबर 3 पर इसके बाद बारी आई भारतीय महिला बैडमिंटन की नई सनसनी उन्नति हुडा की। उनका मुकाबला था 13वीं रैंक वाली कनाडा की मिचेल ली के साथ। बिना किसी दबाव और तनाव के कोर्ट पर उतरी उन्नति ने हार के बावजूद सबको अपना मुरीद बना लिया। पहला गेम 21-11 से जीतने वाली हरियाणा की उन्नति ने दूसरा गेम आसानी से, लेकिन इस मैच का सारा रोमांच तो जैसे तीसरे गेम में छिपा था। उन्नति 2 बार मैच पॉइंट पर भी पहुंची लेकिन कैनेडियाई खिलाड़ी ने दबाव में बेहतर प्रदर्शन करते हुए 23-21 मैच दोनों जीत लिया। लेकिन बैडमिंटन प्रेमियों का दिल तो भारतीय लड़की ने जीता। तभी तो हार के बाद भी उन्नति के चेहरे पर मुस्कान थी।
4: बहुत अच्छा मैच था। आई प्लेड रियली गुड। मैंने अपना पूरा दिया बट लास्ट में मैं अपने साइड मैच को कन्वर्ट नहीं कर पाई। 2 बारी एडवांटेजेस भी आए, मैच पॉइंट भी आया बट आई एम रियली हैप्पी दैट आई पुश्ड मायसेल्फ एंड पुश्ड हर ऑल्सो। इट वॉज अ रियली गुड मैच एंड आई एम हैप्पी द वे आई प्लेड ऑन द नेट। आई डिड गुड टैप्स एंड ट्रिपल्स ऑल्सो। आई फील लाइक इन बिटवीन 2-3 पॉइंट्स I did few silly mistakes from my hand that I shouldn't have been done because वो world number 13 है, so I think उसकी तरफ से silly mistakes बीच-बीच में critical and and whenever she had the chance, she just took it. So I have to learn this from playing with the upper ranked players.
0: Unnati ne mana ki is match ne unhe dher sara anubhav diya.
4: Yeah, I feel like in this tournament I was taking a lot of time and I was a bit more patient than my previous games and I was sticking to the plan, and when she was able to understand what I'm playing, so I was able to change my game plan also according to the situation, so it has improved if I compare with my previous matches.
0: Lagatar do haar se hatash Bharatiya Kheme ki nirasha ko men singles mein 14th seed Lakshya Sen ki haar ne aur gehra kar diya. Match mein favorite Lakshya ki chunauti ko America के गैरेट टैन ने मैराथन मुकाबले में 21-19, 19-21, 17-21 से ढेर कर दिया. पराजय से परेशान लक्ष्य ने माना कि विरोधी ने ज्यादा बेहतर खेल दिखाया.
1: इट वॉज अ गुड मैच. आई वुड गिव अ लॉट ऑफ क्रेडिट टू माई ओपोनेंट. ही प्लेड अ वेरी सॉलिड गेम एंड again towards the third set both of us were like completely exhausted, so yeah, I think I gave it my was just not enough to win this match and yeah, a little bit disappointed.
0: Iske baad bari thi Bharat ke men's badminton ki nayi ummeed आयुष शेट्टी की. पहले राउंड में वर्ल्ड नंबर वन को शिकस्त देने वाले आयुष ने श्रीलंकाई प्रतिद्वंदी दिमेंदु अभय विक्रमा को मात्र 26 मिनट में एक तरफा अंदाज में 21-8, 21-10 से हरा कर प्री क्वार्टर फाइनल के लिए अपनी शक्ति को बचा लिया. आयुष ने कहा, मैच आसान था.
5: आई थिंक आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर अ टफ मैच. आई थिंक ऑल माय मैचेस आई कम प्रिपेयर्ड एज इफ यू नो इट्स गोना बी अ रियली ग्रेट मैच बिकॉज आई थिंक एवरीवन इज प्लेइंग गुड, प्लेइंग ग्रेट बैडमिंटन आई थिंक इन मेन सिंगल्स. सो या आई थिंक आई वाज प्रिपेयर्ड फॉर अ टफ मैच बट हैप्पी विद द यू नो कंफर्टेबल. डेफिनेटली आई थिंक इट विल बी अ ग्रेट मैच अगेन टुमारो अगेंस्ट एलवी. आई प्लेड हिम अ कपल ऑफ टाइम्स. इट्स ऑलवेज अ ग्रेट मैच एंड सुपर टफ ओपोनेंट. एज ऑफ नाउ यू नो रिकवर एंड आई थिंक लेटर यू नो वी प्रिपेयर फॉर द मैच एंड the match and yeah, I think we'll be preparing really well.
0: कहते हैं कि अंत भला तो सब भला. तीसरे दिन भारत के लिए अंतिम मैच में कोर्ट पर उतरी भारत की सबसे बड़ी उम्मीद पीवी सिंधु. सिंधु ने राउंड ऑफ यू झेंग को 21-16, 21-17 से मात दी. मैच के बाद सिंधु ने कहा कि इस जीत के बाद अब वो अगले मैच के लिए भी तैयार हैं.
6: मुश्किल ही होगा ऑब्वियसली, इजी मैचेस नहीं रहेगा. अभी जब हम टॉप एथलीट्स के साथ खेल रहे तो इजी मैचेस या इजी पॉइंट्स एक्सपेक्ट नहीं कर सकते. वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर लॉन्ग मैचेस एंड आई एम रेडी फॉर इट. एंड मैं वांगजी के साथ बहुत अ लॉट ऑफ टाइम्स आई हैव प्लेड अगेंस्ट हर एंड वी नो ईच अदर्स गेम. बस आई नीड टू गिव माई बेस्ट एंड प्ले माई गेम.
0: सिंधु ने माना कि उनके लिए फिटनेस को बनाए रखना इस समय एक चुनौती है.
6: या आई थिंक रिकवरी प्लेज अ वेरी मेजर रोल एंड यू नो बैक देन व्हेन यू आर एट योर 20s यू आर लाइक ओके यू नो यू कैन प्ले यू कैन कम बैक यू कैन प्ले एंड देन and on, but I think after a certain time, you know, you also need to understand you're not 20 or 19 anymore. You need to understand your body and accordingly smartly make those changes.
0: विदेशी खिलाड़ियों में वर्ल्ड नंबर 6 चाइनीज ताइपे के चाउ तियन चेन ने इटली के जियोवानी टोटी को आसानी से 21-12, 21-11 से शिकस्त दी. तीसरी सीड इंडोनेशिया के जोनाथन क्रिस्टी भी सिंगापुर के जिया हैंग ते के साथ 19-21, 21-19, 21-11 से जीतकर प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे. 12वीं सीड चाइनीज ताइपे के लिन चुन यी डेनमार्क के रास्मस गेमके से हारकर उलटफेर के शिकार हुए. महिला वर्ग में टॉप सीड कोरिया की अन से यंग, तीसरी सीड चीन की वैंग जेही, 10वीं सीड जापान की कोदाई नाराओका, 5वीं सीड चीन की हैन यू भी अन्य खिलाड़ियों के साथ प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं. अब आज चौथे दिन प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले होने हैं. महिला डबल्स में त्रिशा जौली और गायत्री पुलेला भारतीय अभियान का आगाज करेंगी. इस जोड़ी का सामना 7वीं सीड जापान की रिन इवानागा और की नाकानिशी से होगा. मिक्स डबल्स के राउंड ऑफ 16 में ध्रुव कपिला और तनिषा क्रेस्टो 6ठी सीड चीन के गुओ जिनवा और चेन फेंग हुई से भिड़ेंगे. मेन सिंगल्स में आयुष शेट्टी का सामना 11वीं सीड इंडोनेशिया के अलवी फरहान से होगा. महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु प्री क्वार्टर फाइनल में 3री सीड चीन की करेंगी. भारत के लिए दिन का अंतिम मैच मेंस डबल्स में 5वीं सीड सात्विक सैराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का होगा. यह जोड़ी मलेशिया के जुनेदी आरिफ और यैप रॉयकिंग से खेलेगी. तो तिरंगा यूं ही आसमान की बुलंदियों पर लहराता रहे, जीत का कारवां आगे बढ़ता रहे और भारतीय बैडमिंटन की स्वर्णिम गाथा लिखी जाती रहे. इन्हीं कामनाओं के साथ प्रोड्यूसर शाहनवाज खान, एडिटर स्वाति और इंदिरा गांधी स्टेडियम से मोहम्मद शाहिद आजमी की रिपोर्ट के साथ मैं धर्मेंद्र

0: ಸುಬ್ರಾಯ ಚುಕ್ಕಾಡಿ ಅವರ ರಚನೆಯ ಭಾವಗೀತೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರಿ ನರಸಿಂಹ ನಾಯಕ್ ಅವರ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ. ಈ ಒಂದು ಭಾವಗೀತೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಹೊತ್ತಿನ ಇವತ್ತಿನ ಭಾವಸ್ಪಂದನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಭಾವಸ್ಪಂದನದ ಈ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಾಗಿದ್ದೆ ನಾನು, ನಿಮ್ಮ ರೇಡಿಯೋ ಗೆಳೆಯ ಆರ್ ಜೆ ಅಕ್ಷಯ. ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇರಿ, ಇದು ನಿಮ್ಮದು ನೆಚ್ಚಿನ ರೇಡಿಯೋ ಎಫ್ ಎಂ ರೈನ್ಬೋ 101.3 ಕನ್ನಡ ಕಾಮನ ಬಿಲ್ಲು, ಮ್ಯೂಸಿಕಲಿ ಯಾರ್ಸ್. ಸಮಯ ನೇನು 8 ಗಂಟೆ ಆಗ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹಿಂದಿ ಹಾಗೆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ವಾರ್ತೆಗಳು ದೆಹಲಿ ಕೇಂದ್ರದ ಸಹ ಪ್ರಸಾರದಲ್ಲಿ.
1: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है. मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना. फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा. तब बोला, अब लगवा ही लेता हूँ पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना. जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in.
2: हर घर सूर्य घर.
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के 8 जिलों को कवर करने वाली रेलवे की 4 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी. मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 22 के मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, सोनबरसा खंड को 4 लेन बनाने को भी स्वीकृति दी. गृह मंत्री अमित शाह आज तमिलनाडु के कोवलम में दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे. भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन का 4था दौर आज सिंगापुर में आयोजित किया जाएगा. बांग्लादेश में आज नए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए मतदान होगा. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ईरान के खिलाफ आर्थिक युद्ध की घोषणा. ईरान की मदद करने वाले देशों को दी बुरे आर्थिक नतीजे भुगतने की धमकी. और FIH हॉकी विश्व कप में पूल डी के अपने अंतिम मैच में भारतीय महिला टीम आज शाम एक्सल्टफेन में इंग्लैंड से खेलेगी. और अब समाचार विस्तार से. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के 8 जिलों को कवर करने वाली 4 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिससे भारतीय रेल के वर्तमान नेटवर्क में लगभग 410 किलोमीटर की वृद्धि होगी. नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इन परियोजनाओं की लागत 9,450 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है और इन्हें 2030-31 तक पूरा करने का लक्ष्य है.
4: 5 बहुत बड़े फैसले लिए हैं. पहले 4 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रेलवे के हैं और 5वां प्रोजेक्ट हाईवे का है. पहले 4 प्रोजेक्ट में जो हावड़ा से चेन्नई की रूट है, मेन लाइन है, इस मेन लाइन के क्वाड्रुपलिंग के डिसीजंस हैं. और एक है कटक से पैरादीप रेलवे लाइन का क्वाड्रुपलिंग का, 3rd एंड 4th लाइन. और 5वां प्रोजेक्ट है मुजफ्फरपुर से

0: सीतामढ़ी होते हुए सोनबरसा एक तक ये फोर लेन हाईवे बनाने का टोटल 13,041 करोड़ रुपीज के प्रोजेक्ट्स कैबिनेट ने अप्रूव किए।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 22 के मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी सोनबरसा खंड को 4 लेन वाले मानक राजमार्ग में अपग्रेड करने को भी मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित परियोजना बिहार के बढ़ते राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क से जुड़ने के कारण रणनीतिक और आर्थिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है।
0: ये प्रोजेक्ट नेपाल के बॉर्डर से लेके स्टार्ट होता है। 83 किलोमीटर का ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट है। एग्जिस्टिंग लाइन को अपग्रेड किया जाएगा 4 लेन हाईवे में और 3,591 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट इसमें हो। कई मेजर टूरिज्म के स्पॉट्स हैं, प्लस एक तरीके से ये सारा इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है।
1: गृहमंत्री अमित शाह आज तमिलनाडु के कोवलम में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस परिषद में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, तमिलनाडु और तेलंगाना राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप शामिल हैं। बैठक में दक्षिणी क्षेत्र के सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री और प्रशासक तथा प्रत्येक राज्य से 2 वरिष्ठ मंत्री उपस्थित रहेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इस बैठक से द्विपक्षीय रक्षा संबंध और मजबूत होंगे, रणनीतिक भरोसा और सहयोग बढ़ेगा तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता और सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा। दोनों देश समुद्री सुरक्षा में गहरे सहयोग और मेक इन इंडिया फ्रेमवर्क के तहत रक्षा उपकरणों और तकनीक के क्षेत्र में करीबी सहयोग पर विचार विमर्श करेंगे। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने आर्मेनिया की अपनी 2 दिन की यात्रा पूरी कर ली है। यात्रा के दौरान उन्होंने आर्मेनिया के उप रक्षा मंत्री करेन ब्रुटियान और जनरल स्टाफ प्रमुख एडवर्ड अस्रियान के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बातचीत में रक्षा और सैन्य तकनीक सहयोग के सभी पहलुओं पर चर्चा हुई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन का 4th संस्करण आज सिंगापुर में आयोजित किया जाएगा। ये सम्मेलन नए और उभरते क्षेत्रों सहित सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है। एक रिपोर्ट।
2: सम्मेलन में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा वाणिज्य उद्योग इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद भाग ले रहे हैं। इसकी पहली बैठक सितंबर 2022 में नई दिल्ली में हुई थी। इसके बाद दूसरी बैठक अगस्त 2024 में सिंगापुर में और तीसरी बैठक अगस्त 2025 में नई दिल्ली में हुई। इन बैठकों में उन्नत विनिर्माण, डिजिटलीकरण, स्वास्थ्य सेवा और चिकित्सा, कौशल विकास तथा स्थिरता पर हुई चर्चाओं से भारत सिंगापुर व्यापक रणनीतिक साझेदारी की रूपरेखा तैयार हुई। इसे पिछले वर्ष सितंबर में सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग की भारत यात्रा के दौरान लागू किया गया था। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ये सम्मेलन दोनों पक्षों के बीच जारी पहलों की प्रगति की समीक्षा करने और आपसी सहयोग को और मजबूत करने के अवसर प्रदान करेगा। इसके साथ ही भारत सिंगापुर व्यापारिक गोलमेज सम्मेलन का 4th संस्करण भी आयोजित किया जाएगा। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
1: भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में तत्काल सुधारों की आवश्यकता पर बल दिया है। भारत ने कहा है कि परिषद की संरचना और निर्णय लेने की प्रक्रिया वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों के अनुरूप होनी चाहिए और इसमें विकासशील देशों को अधिक प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। परिषद में कार्यप्रणाली पर चर्चा में संयुक्त राष्ट्र में भारत की प्रतिनिधि योजना पटेल ने कहा कि सुधारों की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक आवश्यक है। उन्होंने स्थायी और अस्थायी दोनों प्रकार की सदस्यता में विस्तार और विकासशील देशों के लिए अधिक प्रतिनिधित्व की भारत की मांग दोहराई।
3: सुरक्षा परिषद में सुधारों पर भारत का रुख स्पष्ट रूप से ज्ञात है। हम ग्लोबल साउथ के लिए अधिक प्रतिनिधित्व के साथ दोनों श्रेणियों में विस्तार चाहते हैं। इसे केवल स्पष्ट रूप से परिभाषित बिंदुओं और वार्ताओं के माध्यम से ही हासिल किया जा सकता है।
1: उन्होंने कहा कि वर्ष 1945 के बाद से संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। इंडिया डे फेस्टिवल आज मॉस्को में शुरू हो रहा है। 4 दिवसीय इस फेस्टिवल में भारतीय और रूसी समुदायों को संस्कृति, परंपराओं और लोगों के बीच आपसी संबंधों का जश्न देखने को मिलेगा। एक रिपोर्ट।
4: यह फेस्टिवल मॉस्को के गोस्तिनी द्वोर में आयोजित किया

0: लगाएगा। संस्कृतियों की एकता, लोगों की दोस्ती थीम पर आयोजित इस फेस्टिवल में कई जगह पर अलग अलग तरह के कार्यक्रम होंगे। यहाँ बने लगभग 20 खास जोन में आने वाले लोगों को भारतीय संस्कृति के अलग अलग पहलुओं जैसे योग, शतरंज, भारतीय शादियाँ, नृत्य, भारतीय व्यंजन और आयुर्वेद को जानने समझने का मौका मिलेगा। इस फेस्टिवल में पूरे रूस से लगभग 75 योग स्कूल और दूसरे देशों के इंस्ट्रक्टर भी शामिल होंगे। भारतीय नृत्य की विविधता और कलात्मक परंपराओं को दिखाने वाले कार्यक्रमों में 200 से ज्यादा भारतीय और रूसी डांसर भी हिस्सा लेंगे। समाचार कक्ष से विकास नापा।
1: बांग्लादेश में 35 साल के लंबे अंतराल के बाद राष्ट्रपति चुनाव के लिए आज दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक संसद में मतदान होगा। सत्ताधारी दल के सांसद बीएनपी के नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर का मुकाबला 11 पार्टियों के विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार कर्नल उली अहमद के बीच होगा। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति कल शाम बंग भवन के दरबार हॉल में बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ नए आर्थिक युद्ध की घोषणा की है। ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान को अमेरिका के साथ समझौता करने के कई अवसर दिए गए लेकिन वो विफल रहा। एक रिपोर्ट।
2: ट्रंप ने ईरान की मदद करने वाले किसी भी देश को आर्थिक प्रतिबंध लगाने की धमकी भी दी है। उन्होंने चेतावनी दी है कि कोई भी देश जो अपने वित्तीय संस्थानों, व्यवसायों, हवाई अड्डों या सरकारी एजेंसियों को ईरान को समर्थन देने की अनुमति देता है उसे भी भारी आर्थिक परिणामों का सामना करना पड़ेगा। साथ ही अपनी चेतावनी को दोहराया कि ईरान को कभी भी परमाणु हथियार हासिल करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ट्रंप ने कहा कि बातचीत भविष्य में फिर से शुरू हो सकती है लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि तेहरान को पहले समझौता करने के लिए तैयार होना होगा। इस बीच ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बगीर गालिबफ ने कहा कि ईरान होर्मुज जलडमरू मध्य को तब तक नहीं खोलेगा जब तक अमेरिका 14 सूत्री ज्ञापन के तहत अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा नहीं कर लेता। समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
1: और अब खेल खबरों के साथ है मुकेश कुमार बल।
3: जी विशाल, खेल खबरों में शुरुआत करते हैं हॉकी से। FIH विश्व कप के पूल डी के अपने अंतिम मैच में भारतीय महिला टीम का सामना आज इंग्लैंड से होगा। ये मैच एम्स्टलवीन के वैगनर स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 6:30 बजे से शुरू होगा। दूसरी ओर भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कल अपने अंतिम ग्रुप मैच में चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को 5-3 से हराकर अगले दौर के लिए क्वालिफाई कर लिया है। हरमनप्रीत सिंह और हार्दिक सिंह ने 2-2 गोल किए जबकि अभिषेक ने 1 गोल दागा। और विशाल, अगर बात करें बैडमिंटन की तो BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप के प्री क्वार्टर फाइनल में महिला सिंगल्स में PV सिंधु का मुकाबला चीन की खिलाड़ी से होगा। पुरुष सिंगल्स में आयुष शेट्टी और इंडोनेशिया के अलवी फरहान आमने सामने होंगे। वहीं पुरुष डबल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी चुनौती पेश करेंगे। महिला डबल्स में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद का मुकाबला जापान की जोड़ी से होगा। अगर बात की जाए मिक्स्ड डबल्स में तो ध्रुव कपिला और तनिषा क्रेस्टो चीन की जोड़ी से खेलेंगे। और अब ले चलते हैं अपने श्रोताओं को क्रिकेट के मैदान की तरफ। तो श्रीलंका के गोल में भारत ने 2 मैचों की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में श्रीलंका को 165 रन से हराया है। भारत ने श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। तो विशाल, ये थी अब तक की कुछ महत्वपूर्ण खेल खबरें।
1: और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तेज बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्रों और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में कल तक तेज बारिश का अनुमान है। ओडिशा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि उत्तरी ओडिशा के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है।
4: उत्तरी ओडिशा के कई इलाकों में बाढ़ का पानी गंभीर समस्या बना हुआ है। पानी का स्तर अभी भी ऊंचा है और धीरे धीरे कम हो रहा है जिससे कई लोग फंसे हुए हैं। बालेश्वर जिले में बालियापाल सबसे बुरी तरह प्रभावित इलाकों में से एक है जहां खबर है कि 45,000 से ज्यादा लोग अभी भी फंसे हुए हैं। भद्रक जिले में स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र बंद है। सुवर्णरेखा नदी का जलस्तर भी बढ़ रहा है। राजघाट पर आज सुबह 6 बजे नदी 11.80 मीटर के स्तर पर बह रही थी जबकि खतरे का 10.36 मीटर है। सुवर्ण रेखा की बाढ़ से लगभग 2,80,000 लोग प्रभावित हुए हैं। IMD ने इस शनिवार से फिर बारिश का अनुमान जताया है और मयूरभंज, केंदुझर और सुंदरगढ़ जिलों के लिए येलो वार्निंग जारी की है जिससे और ज्यादा बाढ़ आने की चिंता बढ़ गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: इस बीच राष्ट्रीय राजधानी के कई हिस्सों में बारिश से गर्मी से राहत मिली है। मौसम सुहावना हो गया है। कई इलाकों में कल रात से बारिश हो रही है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है वैष्णवी।
5: धन्यवाद विशाल। जम्मू कश्मीर भारत का महत्वपूर्ण अंग। भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो कोर का ये बयान आज की सभी अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। दैनिक जागरण के अनुसार जम्मू कश्मीर के अपने पहले दौरे में सर्जियो कोर ने कश्मीर को लेकर अमेरिकी रुख में बड़े बदलाव का दिया संकेत। कहा, जम्मू कश्मीर के लिए यात्रा परामर्श की करेंगे समीक्षा। भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी के खिलाफ छात्र आंदोलन के बीच झारखंड सरकार की बड़ी कार्रवाई दैनिक भास्कर में है। 22 भर्ती परीक्षा रद्द, सीआईडी को सौंपी गई जांच। यूपीएससी जैसा सिस्टम क्यों नहीं बनाते, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए से सुप्रीम कोर्ट का ये सवाल नवभारत टाइम्स में है। जेंजी को साधने की मोर्चाबंदी तेज, अमर उजाला लिखता है, भारतीय जनता पार्टी ने विश्वविद्यालयों में युवाओं से संवाद का जिम्मा केंद्रीय मंत्रियों को सौंपा। नए सिम कार्ड के लिए नए नियम सख्त, हिंदुस्तान लिखता है, साइबर धोखाधड़ी और डिजिटल अरेस्ट रोकने के लिए सरकार ने नए सीएम जारी करने की प्रक्रिया और कठोर की। और डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म के जरिए तय समय सीमा से अधिक मोबाइल कनेक्शन रखने वाले ग्राहकों की जाएगी पहचान।
1: धन्यवाद वैष्णवी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के 8 जिलों को कवर करने वाली रेलवे की 4 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 22 के मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, सोनबरसा खंड को 4 लेन बनाने को भी स्वीकृति दी। गृह मंत्री अमित शाह आज तमिलनाडु के कोवलम में दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन का चौथा दौर आज सिंगापुर में आयोजित किया जाएगा। बांग्लादेश में आज नए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए मतदान होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ईरान के खिलाफ आर्थिक युद्ध की घोषणा। और एफआईएच हॉकी विश्व कप में पूल डी के अपने अंतिम मैच में भारतीय महिला टीम आज शाम एम्स्टर्डम में इंग्लैंड से खेलेगी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. Union Cabinet approves 4 multi-tracking railway projects covering 8 districts of West Bengal, Odisha, Tamil Nadu and Andhra Pradesh. Cabinet also clears 4 laning of Muzaffarpur, Sitamarhi, Sonbarsa section of NH-22 in Bihar. Union Home Minister Amit Shah to chair Southern Zonal Council meeting at Kovalam in Tamil Nadu this morning. 4th round of India-Singapore Ministerial Roundtable to be held in Singapore today. Bangladesh to go to post today to elect a new president. US President Donald Trump declares economic warfare against Iran, threatens economic punishment for any country helping Tehran. And Indian women's team to take on England in their final Pool D match of FIH Hockey World Cup in Amstelveen this evening. And now the news in detail. The Union Cabinet has approved 5 projects worth over 13,000 crore rupees, including 4 railway and 1 highway project. Briefing media after the meeting in New Delhi yesterday, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said the Union Cabinet has cleared 4 multi-tracking projects of railways covering 8 districts across 4 states of West Bengal, Odisha, Tamil Nadu and Andhra Pradesh. He said with total estimated cost of 9,450 crore rupees, the projects are scheduled for completion by 2030-31.
7: Five major decisions have been taken. The first 4 projects are related to the railways, while the 5th is a highway project. The first 4 railway projects include the quadrupling of the Howrah-Chennai main railway route and the quadrupling of the Cuttack-Paradeep railway line. The 5th project is the construction of a 4-lane highway from Muzaffarpur via Sitamarhi to Sonbarsa. These projects, with a total cost of 13,041 crore rupees, were approved by the cabinet today.
8: Total 13,041 crore rupees ke projects cabinet ne approved kiye.
6: Mr. Vaishnaw informed that the cabinet has also approved the upgradation of the Muzaffarpur Sitamarhi Sonbarsa section of National Highway 22 in Bihar to a 4-lane standard at a total capital cost of over 3,590 crore rupees.
8: ये प्रोजेक्ट पूरे बिहार के लिए
7: द प्रोजेक्ट इज बिकमिंग अ मेजर लाइफ लाइन फॉर द एंटायर बिहार इट स्टार्ट्स फ्रॉम सोनबरसा ऑन द नेपाल बॉर्डर एंड पासेस थ्रू सीतामढ़ी एंड मुजफ्फरपुर इट विल क्रिएट अ कंप्लीट ट्रांसपोर्ट आर्टरी विच विल बेनिफिट बिहार फॉर मेनी इयर्स इट इज एन 83 किलोमीटर ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट अंडर विच द एग्जिस्टिंग रोड विल बी अपग्रेडेड इंटू अ फोर लेन हाईवे विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 3,591 करोड़ रुपीज
8: का इन्वेस्टमेंट इसमें हो
6: Union Home Minister Amit Shah will chair 31st meeting of the Southern Zonal Council at Kovalam near Chennai in Tamil Nadu this morning. The meeting is likely to focus on issues requiring coordination between the centre and southern states and union territories. The Southern Zonal Council comprises Andhra Pradesh, Karnataka, Kerala, Tamil Nadu and Telangana along with union territories of Puducherry, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep. Chief Ministers of the Southern States and three Union Territories, Puducherry, Andaman, Nicobar Islands and Lakshadweep are participating in the meeting. More from our correspondent.
3: Six Chief Ministers, Tamil Nadu Chief Minister Joseph Vijay, Karnataka Chief Minister D.K. Shivakumar, Kerala Chief Minister Satishan, Telangana Chief Minister Revanth Reddy, Andhra Pradesh Chief Minister Chandrababu Naidu and Puducherry Chief Minister Rangasamy are set to participate in the conference. Andaman Nicobar Islands and Lakshadweep administrators are also likely to participate in the meeting. High-ranking officials including Chief Secretaries and Home Secretaries from the respective states will also participate in the event. Discussions will be held on various key issues including interstate cooperation, economic growth, industrial investments, strengthening partnership, infrastructure development, water resource sharing, education, healthcare, information technology, disaster management, crime prevention and border disputes will be discussed in this meeting. Meanwhile, Home Minister Amit Shah was received by the BJP State President and other senior leaders last night. Later in the night, Mr. Shah also met the Chief Minister of Tamil Nadu, Joseph Vijay in Kovalam. R. Chidambaranathan from Chennai for Akashwani News.
6: The fourth round of India-Singapore Ministerial Roundtable will be held in Singapore today. The participating ministers from the Indian side are Finance Minister Nirmala Sitharaman, External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar, Commerce and Industry Minister Piyush Goyal and Minister of State for Commerce, Industry, Electronics and IT Jitin Prasad. A report.
2: The mechanism of ISMR is an important platform to drive cooperation, including in new and emerging areas. Its inaugural meeting was held in New Delhi in September 2022, followed by the second meeting in Singapore in August 2024 and third meeting in New Delhi in August 2025. Deliberations on advanced manufacturing, connectivity, healthcare and medicine, skills development and sustainability from these meetings drive the roadmap for India-Singapore Comprehensive Strategic Partnership CSP roadmap, which was unveiled during the visit of Prime Minister of Singapore, Lawrence Wong, to India in September last year. The MEA said the fourth round of ISMR will enable both sides to review the progress of various ongoing initiatives and identify avenues to further strengthen India-Singapore collaboration. The fourth edition of India-Singapore Business Roundtable that serves as a strategic and advisory forum of key business leaders will also be held along the ISMR. Meanwhile, Dr. Jayashankar met his Singaporean counterpart Vivian Balakrishnan on his arrival in the country yesterday. Payal Sharma, Akashwani News, Delhi.
6: Defence Minister Rajnath Singh will hold a bilateral meeting with the Defence Minister of Japan, Shinjiro Koizumi, in New Delhi today. The meeting is expected to further strengthen bilateral defence relations, enhance strategic trust and cooperation, promote stability and security in the Indo-Pacific region. U.S. Ambassador to India Sergio Gore described the Union Territory of Jammu and Kashmir as an important part of India and said the governments at the center and in the region have taken significant steps to improve the security in the Union Territory. The U.S. envoy was talking to media after holding a meeting with Jammu and Kashmir Chief Minister Umar Abdullah at his residence in Srinagar yesterday. Chief Minister Umar Abdullah said the meeting focused on India-U.S. relations and areas where the United States can engage with Jammu and Kashmir. He said the emphasis was on positive engagement and future collaboration. This is Akashwani giving you the news. For quick news updates around the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of these stories and more, log on to our website www.newsoneair.gov.in and download the News on AIR app. Bangladesh will hold its presidential election today, with lawmakers set to choose between the ruling BNP stalwart Mirza Fakhrul Islam Alamgir and an 11-party opposition alliance candidate, Colonel Oli Ahmed. The voting will take place for the first time in a presidential election after a gap of 35 years. The voting will be held at the parliament, Jatiya Sangshad,

ಕಣ್ಣು ಕುಣಿಸು ಕುಣಿಸು, ಕಣ್ಣನ್ನು ತಣಿಸು ತಣಿಸು, ಅತ್ತ ಇತ್ತ ಸುತ್ತ

0: एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन और जापान के फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक इनिशिएटिव्स के बीच क्लोज अलाइनमेंट आज पहले से भी कहीं ज्यादा जरूरी है।
1: श्री कोइजुमी ने कुमामोतो में भूकंप से प्रभावित लोगों के प्रति भारत की संवेदना पर आभार व्यक्त किया। उन्होंने जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स के एक जहाज में चिकित्सा आपात स्थिति के दौरान भारतीय नौसेना द्वारा दी गई सहायता की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि ये दोनों देशों के बीच सहयोग का प्रतीक है, जहां मुश्किल समय में दोनों देश एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। दोनों नेताओं ने समुद्री संचार मार्गों की सुरक्षा के लिए दोनों देशों के बीच समन्वय मजबूत करने पर सहमति जताई। इससे पहले आज सुबह जापान के रक्षा मंत्री ने राष्ट्र समर स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 31वीं दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक तमिलनाडु के कोवलम में शुरू हो गई है। बैठक में दक्षिणी राज्यों के नेता और वरिष्ठ अधिकारी अंतर्राज्यीय विवादों, सुरक्षा और विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। बैठक में महिलाओं और बच्चों के साथ दुष्कर्म के मामलों की जल्द जांच और सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक विशेष अदालतें बनाने तथा शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा हो रही है। इसके अलावा अंतर्राज्यीय सहयोग, आंतरिक सुरक्षा, आर्थिक विकास, औद्योगिक निवेश और स्वास्थ्य सेवाओं पर भी विचार विमर्श किया जा रहा है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ब्रिक्स अध्यक्षता को जन केंद्रित बनाने और मानवता सर्वोपरि की भावना के साथ आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री यादव ने एक अंग्रेजी दैनिक में प्रकाशित अपने लेख को सोशल मीडिया पोस्ट में साझा किया। उन्होंने कहा कि भारत मिशन लाइफ के सिद्धांतों पर आधारित सतत जीवन शैली को बढ़ावा देने के साथ साथ वनीकरण, जंगलों में आग की रोकथाम, आपदा से निपटने की क्षमता और पारंपरिक ज्ञान पर आधारित जन केंद्रित जलवायु अनुकूलन पर बल दे रहा है। दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की तैयारियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। सम्मेलन का आयोजन 12 और 13 सितंबर को दिल्ली में होगा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री संधू ने कहा कि भारत की अतिथि देवो भव की परंपरा के अनुरूप दिल्ली सभी विदेशी प्रतिनिधियों के सुव्यवस्थित, सुरक्षित और गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। चौथी भारत सिंगापुर मंत्रिस्तरीय गोलमेज बैठक आज सिंगापुर में हुई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और वाणिज्य, उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने बैठक में हिस्सा लिया। एक रिपोर्ट।
2: बैठक में डिजिटल तकनीक, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संचालन और साइबर सुरक्षा जैसे रणनीतिक और उभरते क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा की गई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बैठक में उन्नत विनिर्माण, फिनटेक, डिजिटलीकरण, स्वास्थ्य और सतत विकास के क्षेत्रों में व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने पर बल दिया गया। डिजिटल कौशल विकास में सहयोग को नई गति देने पर भी चर्चा हुई। भारत सिंगापुर मंत्रिस्तरीय गोलमेज बैठक दोनों देशों के बीच नए और उभरते क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण मंच है। इसकी पहली बैठक सितंबर 2022 में नई दिल्ली में हुई थी, दूसरी बैठक अगस्त 2024 में सिंगापुर में और तीसरी बैठक अगस्त 2025 में नई दिल्ली में हुई थी। समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
1: भारत ने काबुल के एक सरकारी अस्पताल को दवाइयां और चिकित्सा सामग्री भेजी है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह सहायता अफगानिस्तान के लोगों की स्वास्थ्य जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इसका उद्देश्य अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाना है। भारत और नेपाल के बीच सीमा प्रबंधन पर चौथी संयुक्त कार्य समूह की बैठक आज उत्तराखंड के देहरादून में शुरू हुई। दो दिन की इस उच्च स्तरीय बैठक में सीमा सुरक्षा और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने तथा आपसी हित के अन्य मुद्दों पर ध्यान दिया जा रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने कांग्रेस कार्य समिति के पूरा वंदे मातरम गाने के बजाय इसके केवल दो छंद गाने के फैसले की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि यह संसद से पारित कानून का खुला उल्लंघन है और राष्ट्रविरोधी है। संवाददाताओं से बातचीत में श्री शाह ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस एक बार फिर वोट बैंक की राजनीति के लिए तुष्टिकरण का रास्ता अपना रही है।

0: मैं देश की जनता को अपील करना चाहता हूं कि एक बार इस देश ने गलती करी थी वंदे मातरम के दो टुकड़े होने देने की और एक गलती के गंभीर परिणाम हमने भुगते हैं। अब देश की जनता एकजुट हो और कांग्रेस पार्टी के इस फैसले के खिलाफ आवाज बुलंद करे कि अब इस देश में तुष्टिकरण की राजनीति नहीं चलेगी। आजादी के 80 साल के बाद 1937 में जो फैसला कांग्रेस ने किया था, जिसको नरेंद्र मोदी जी ने सुधारा है, उसके सामने का कोई विरोध इस देश की जनता नहीं सहन करेगी।
1: वंदे मातरम पर कांग्रेस कार्यसमिति के प्रस्ताव को लेकर भारतीय जनता पार्टी द्वारा तुष्टिकरण की राजनीति करने का आरोप लगाए जाने के बाद कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी वर्ष 1937 से वंदे मातरम का गायन करती आ रही है। नई दिल्ली में श्री वेणुगोपाल ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के लिए भावना का मामला है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए राजनीति का मुद्दा है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज पटना में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत बने 2,35,000 घरों की चाबियां लाभार्थियों को सौंपी। उन्होंने नए लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र भी वितरित किए। श्री चौहान आज पटना के बामेटी में आयोजित कृषि जन कल्याण संवाद में भी शामिल होंगे। वाणिज्य विभाग में अपर सचिव यशवीर सिंह ने कहा है कि भारत के निर्यात में प्रगति मुक्त व्यापार समझौतों के प्रभावी इस्तेमाल, विनिर्माण क्षेत्र में उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाओं, आपूर्ति श्रृंखला को देश में ही विकसित करने और नए बाजारों तक पहुंच बनाने पर निर्भर करती है। उन्होंने बात भारतीय उद्योग विनिर्माण संघ के तीसरे सम्मेलन में कही। सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने आज नई दिल्ली में दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा के साथ एक पेड़ मां के नाम पहल के तहत पौधारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस अवसर पर श्री मल्होत्रा ने कहा कि दिल्ली में भाजपा सरकार के सत्ता में आने के बाद से पर्यावरण संरक्षण सहित सभी क्षेत्रों में विकास कार्य में निरंतर प्रगति हो रही है।
2: हमारे पर्यावरण मंत्री सिरसा जी ने और रेखा जी ने मिलकर दिल्ली के अंदर 70,00,000 पेड़ लगाने की मुहिम छेड़ी और बहुत अच्छा सिस्टम बनाया है। पोर्टल के माध्यम से दिल्ली में कोई भी व्यक्ति रजिस्ट्रेशन करवा करके उसके बाद दिल्ली सरकार उनको अप्रोच करेगी, उनको पेड़ देगी या उनको ऐसे स्थान पर बुलाएगी जहां पर ग्रीन कवर बढ़ाने की बात है।
1: कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए एक पेड़ मां के नाम अभियान को दिल्ली का अब तक का सबसे बड़ा अभियान बताया।
3: एक पेड़ मां के नाम 2.0 जो देश के प्रधानमंत्री जी ने सेकंड मुहिम शुरू की है, इसमें अब तक 50,00,000 पेड़ और पौधे लग चुके हैं। यह दिल्ली का अब तक का सबसे बड़ा अभियान है। पोर्टल के माध्यम से रजिस्टर करके अब तक 3.5 लाख पेड़ लगाए जा चुके हैं, जिसमें लगभग 1,58,000 पब्लिक के लोगों ने आकर साथ दिया। ऐसे अनेकों हमारे मुहिम चल रही है। हम दिल्ली के अंदर एक बड़ा प्रचार प्रसार इस पर्यावरण को बचाने के लिए कर रहे हैं।
1: जम्मू जिले के खेरी गांव में जमीन धंसने से करीब 12 मकानों को नुकसान पहुंचा है। इनमें 2 मकानों को काफी नुकसान हुआ है। कृषि भूमि और एक सड़क भी प्रभावित हुई है। राजस्व तथा पुलिस की टीमों ने मौके का जायजा लिया है और राहत और बचाव कार्य जारी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। बांग्लादेश में 35 साल के लंबे अंतराल के बाद राष्ट्रपति चुनाव के लिए जातीय संसद में मतदान हो रहा है। मतदान 5 बजे तक चलेगा। सत्ताधारी दल के सांसद बीएनपी के नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर का मुकाबला 11 पार्टियों के विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार कर्नल ओली अहमद से होगा। रूस ने कल रात यूक्रेन की राजधानी कीव पर मिसाइलों से हमला किया। इसमें 6 लोग मारे गए और 33 घायल हुए। यह हमला ऐसे समय हुआ है जब रूस कीव पर बैलिस्टिक मिसाइल हमलों को तेज कर रहा है, जिससे यूक्रेन की सीमित हवाई रक्षा क्षमताओं पर और दबाव बढ़ रहा है। और अब खेल खबरों के साथ हैं जागृति शर्मा।
4: नई दिल्ली में BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद महिला डबल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। भारतीय जोड़ी ने जापान की 7वीं वरीयता प्राप्त रिन इवानागा और की नाकानिशी को हराया। खेल के बाद मीडिया से बातचीत में गायत्री और त्रिशा ने कहा कि वे मैच के शुरुआती 2-3 अंकों में ही विपक्षी खिलाड़ियों की रणनीति समझ गई थी। उन्होंने बताया कि पहले गेम के दूसरे हिस्से में उन्होंने आक्रामक खेल अपनाया और यही रणनीति दूसरे गेम में भी जारी रखी, जिसका उन्हें फायदा मिला। सिंधु समेत भारत के कई प्रमुख खिलाड़ी आज अपने प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले खेलेंगे। सिंधु का सामना चीन की वांग झी यी से होगा।

0: खिलाड़ी आयुष शेट्टी का मुकाबला इंडोनेशिया के अलवी फरहान से होगा। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का सामना मलेशिया के जुनैदी आरिफ और रॉय किंग याप से होगा। वहीं मिक्स्ड डबल्स में ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो की जोड़ी चीन के गुओ शिनवा और चेन फांग हुई से खेलेगी। और हॉकी में FIH विश्व कप के पूल डी के अपने अंतिम मैच में भारतीय महिला टीम आज इंग्लैंड के साथ मुकाबला खेलेगी। ये मैच अम्स्टलफेन के वैगनर स्टेडियम भारतीय समय के अनुसार शाम 6:30 बजे से शुरू होगा।
1: घरेलू शेयर बाजार सूचकांकों में आज दोपहर के कारोबार में तेजी बनी रही। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 668 अंक बढ़कर 77,577 जबकि निफ्टी 169 अंक की बढ़त के साथ 24,248 पर कारोबार कर रहा था। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश में कल मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम और पश्चिमी मध्य प्रदेश में अगले 2 दिन तक तेज वर्षा हो सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और जापान के बीच रक्षा साझेदारी को और मजबूत करने पर सहमति। समुद्री सुरक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर। तमिलनाडु के कोवलम में गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 31वीं दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में अंतर्राज्यीय विवाद, सुरक्षा और विकास के मुद्दों पर चर्चा। भारत सिंगापुर मंत्रिस्तरीय गोलमेज बैठक में सेमीकंडक्टर और साइबर सुरक्षा सहित महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श। बांग्लादेश में 35 वर्ष के अंतराल के बाद पहली बार राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान जारी। और त्रिशा जॉली तथा गायत्री गोपीचंद BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप के महिला डबल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: उमंग CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का प्यार भरा नमस्कार
3: और अजीत का भी जोहार और नमस्कार। कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, मन्नत, गुरकीरत राहुल, गुरशब्द सिंह राहुल जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: सूर्य बिना कुछ मांगे हमें प्रकाश देता है, नदी बिना भेदभाव जल देती है, वृक्ष पत्थर खाने पर भी फल देते हैं। उन्होंने कभी नहीं कहा कि हमने दिया, वे बस देते हैं क्योंकि देना ही उनका स्वभाव है।
3: बड़ी खूबसूरत पंक्ति है, वे बस देते हैं क्योंकि देना ही उनका स्वभाव है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके इतने सुंदर विचार के लिए। जी हाँ श्रोताओ, इसी प्रकार प्रकृति भी हमें बस देती है। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश कुमार शर्मा जी का,
2: शेरी वर्नेर महाराष्ट्र से बलदेव दामोदर और अरुणा दामोदर,
3: और केंद्रपाड़ा ओडिशा से देशदीप दास, कूट कुटिया नायक, शुभम नायक और सत्यजीत नायक,
2: गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेड़था बाजार।

0: छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन और ईशांत देवांगन।
1: आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। सच में आप हमारे धन्यवाद के पात्र हैं। स्वागत एक बार फिर से आप सबका हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए में।
0: जैसा कि आप जानते हैं कि इस श्रृंखला में हम लेकर आते हैं ज्ञान विज्ञान साहित्य भूगोल इतिहास और अनेकों ज्ञान की शाखाओं की मनोरंजक जानकारियाँ।
1: तो विमलेश जी, आज हमारी बातचीत का विषय क्या रहेगा?
0: अजीत जी, मैं सोच रही थी जानकारियाँ तो हम इस श्रृंखला में देते ही रहते हैं, लेकिन पिछले सप्ताह प्राप्त संदेशों से पता चलता है कि हमारे श्रोता प्रेरक प्रसंग भी बहुत पसंद करते हैं।
1: जी हाँ, ये तो है।
0: तो क्यों न आज और कल कुछ प्रेरक प्रसंग प्रस्तुत किए जाएं?
1: नेकी और पूछ विमलेश जी, आपने बिल्कुल सही कहा। जीवन में प्रेरक प्रसंगों से भी हमें बहुत सहायता और संबल मिलता है। तो बताइए जरा श्रोताओं को कि हमारा आज का प्रेरक प्रसंग क्या रहेगा?
0: अजीत जी, आज बात करते हैं एक तितली के संघर्ष की।
1: वाह, क्या बात है, एक तितली के संघर्ष की।
0: श्रोताओं, आज हम आपको एक छोटी सी तितली की कहानी सुनाने जा रहे हैं।
1: जी हाँ श्रोताओं, ये कहानी लंदन की प्रसिद्ध बाल पत्रिका किड्स वर्ल्ड में छपी थी। शीर्षक था द बटरफ्लाई एंड द कुकून। ये कहानी केवल एक कीट की नहीं बल्कि हम सबके जीवन की कहानी है।
0: जी
1: श्रोताओं, कहानी कुछ इस प्रकार से है।
0: एक दिन एक व्यक्ति अपने बगीचे में टहल रहा था। उसकी नजर एक पेड़ की टहनी पर लटके एक छोटे से कुकून पर पड़ी, यानी रेशम के कोए पर पड़ी। उसने देखा कि कुकून के भीतर एक प्यूपानुमा तितली बाहर निकलने का प्रयास कर रही थी।
1: श्रोता, वो व्यक्ति बड़ी उत्सुकता से उसे देखने लगा।
0: जी
1: उसने देखा कि वो तितली एक बहुत छोटे से छेद से बाहर आने की कोशिश कर रही थी। वो बार बार जोर लगाती और फिर रुक जाती। कुछ देर के बाद फिर पूरी ताकत से प्रयास करती। ये संघर्ष कई घंटों तक चलता रहा। विमलेश जी, आगे क्या हुआ?
0: जी अजीत जी, जो हुआ वो बहुत ही अजीब हुआ। उस व्यक्ति ने सोचा कि तितली थक गई है, वो बेचारी अब बाहर निकल ही नहीं पाएगी। उस व्यक्ति का हृदय दया से भर गया। उसने सोचा, बेचारी तितली कितना संघर्ष कर रही है, यदि मैं इसकी थोड़ी सी मदद कर दूं तो इसका कष्ट समाप्त हो जाएगा।
1: श्रोताओं, ऐसा सोचता हुआ वो अपने घर गया, एक छोटी सी कैंची लाया और बहुत सावधानी से कुकून का छेद थोड़ा सा बड़ा कर दिया।
0: जी
1: अब वो तितली बिना किसी कठिनाई के बाहर निकल आई। लेकिन जैसे ही वो बाहर आई, उस व्यक्ति ने देखा उसका शरीर फूला हुआ था और उसके पंख छोटे और सिकुड़े हुए और बहुत ही कमजोर थे।
0: उसे लगा कि बस कुछ देर की ही तो बात है, कुछ ही देर में पंख फैल जाएंगे और तितली उड़ जाएगी। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। तितली जमीन पर ही रेंगती रही, वो कभी उड़ न सकी और कुछ ही दिनों में उसकी जीवन लीला भी समाप्त हो गई।
1: जी हाँ श्रोताओं, उस व्यक्ति को बहुत दुख हुआ। कुछ दिनों के बाद उसने एक और कुकून देखा जिससे तितली निकलने का प्रयास कर रही थी। वो बहुत मेहनत कर रही थी।
0: जी
1: बार बार प्रयास करती पर थक कर रुक जाती। अब की बार इस व्यक्ति ने सोच लिया था कि वो तितली की कोई मदद नहीं करेगा।
0: कई घंटों के बाद जब वो तितली बाहर आई तो उस व्यक्ति ने देखा कि वो शानदार रंगों वाली एक बेहद सुंदर तितली थी। वो थोड़ी देर रेंगी, फिर पंख फैलाकर उड़ गई।
1: श्रोताओ, उस व्यक्ति ने अपनी कहानी में लिखा, मुझे अध्ययन करने के बाद ये पता चला कि प्रकृति ने तितली के लिए यह संघर्ष जानबूझकर रखा था।
0: जी
1: जब तितली उस छोटे से छेद से बाहर निकलने का प्रयास करती है, तब मेहनत के कारण तो उसके शरीर का द्रव उसके सिकुड़े हुए पंखों में पहुंचता है। इस द्रव को हीमोलिम्फ कहते हैं
0: और यही द्रव पंखों को मजबूत और उड़ने योग्य बनाता है। यदि तितली संघर्ष न करे तो उसके पंख कभी विकसित ही नहीं हो सकते।
1: तो विमलेश जी, इस घटना का सारांश क्या बनता है?
0: अजीत जी, जिस दया को उस व्यक्ति ने सहायता समझा था, वही तितली के जीवन की सबसे बड़ी बाधा बन गई। एक विद्यार्थी जब परीक्षा की तैयारी करता है तो रातों की मेहनत, असफलताओं का डर और लगातार अभ्यास, यही संघर्ष उसे सफल बनाता है।
1: और ठीक इसी प्रकार विमलेश जी, जब एक खिलाड़ी रोज घंटों पसीना बहाता है तो वही संघर्ष, वही अभ्यास उसे विजेता बनाता है।
0: एक किसान तपती धूप में खेत जोतता है तभी उसकी फसल लहलाती है। जी हाँ श्रोताओ, खासकर अपने विद्यार्थी मित्रों, प्रकृति का नियम है, बिना संघर्ष के न शक्ति मिलती है न सफलता। इतिहास गवाह है, जिन लोगों ने कठिनाइयों का सामना किया है वही महान बने हैं।
1: श्रोताओ, अब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जीवन के बारे में जानते हैं। उन्होंने गरीबी देखी, संघर्ष किया लेकिन हार नहीं मानी।
0: जी
1: हेलन केलर ने जीवन भर दिव्यांगता का सामना किया लेकिन संघर्ष के कारण वो पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई।
0: हम सभी नेल्सन मंडेला के बारे में जानते हैं। उन्होंने 27 वर्ष जेल में बिताए लेकिन उनका संघर्ष दक्षिण अफ्रीका में स्वतंत्रता और समानता का प्रतीक बन गया।

0: जी हाँ विद्यार्थी मित्रों, यदि इन लोगों के जीवन से संघर्ष निकाल दिया जाए तो शायद दुनिया इन्हें कभी याद भी न रखे।
1: जी
0: तो प्रिय मित्रों, यदि आज आपके जीवन में कोई कठिनाई है, यदि आपको लगता है कि परिस्थितियां आपके विरुद्ध हैं, यदि लगता है कि बार बार असफलता मिल रही है,
1: तो निराश मत होइए। हो सकता है शायद जीवन आपको उड़ने के लिए तैयार कर रहा हो। याद रखिए, कोयला दबाव सहकर ही हीरा बनता है, सोना आग में तपकर ही कुंदन बनता है, और तितली संघर्ष करके ही उड़ना सीखती है।
0: तो मित्रों, ये थी हमारी आज की प्रेरक कहानी। अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। श्रोताओ, हमारा आज का प्रश्न है, कुकून से बाहर निकलते समय तितली के शरीर से जो द्रव निकलता है उसे क्या कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: कुकून से बाहर निकलते समय तितली के शरीर से जो द्रव निकलता है उसे क्या कहते हैं?
0: आप अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर भेज सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे ईमेल पर यानी audio@ciet.nic.in पर भी अपने संदेश और विचार भेज सकते हैं।
1: एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो जरूर करें। यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप करें NCERT बुक्स PDF। इस वेबसाइट से आप पुस्तकों को डाउनलोड कर सकते हैं।
0: और इन्हीं पुस्तकों को यदि आप ऑडियो प्रारूप में यानी ऑडियो बुक के रूप में सुनना चाहते हैं तो जाइए NCERT ऑफिशियल YouTube चैनल पर, और इसी ऑफिशियल चैनल पर आप हमारी पाठ्य पुस्तकों को सुन सकते हैं। श्रोताओं, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम पानी रे पानी जल चक्र की कहानी।
1: कक्षा 7 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में पारंपरिक भारतीय नट और नटी के तुकांत नाट्य प्रारूप में जल चक्र की कहानी को कविता और तालवाद्य की मजेदार संगत से बताया गया है और बच्चों को जल संरक्षण की प्रेरणा दी गई है।
0: पानी रे पानी जल चक्र पर कविता।

0: सोनी जल्दी उठ जा बेटी, भीड़ हो जाएगी।
1: मम्मी सोने दो ना, ये भी कोई समय है उठने का? अभी तो सुबह के 3:30 ही बजे हैं।
0: अरे बेटी, 2 दिनों से पानी नहीं आया है। हमारे सामुदायिक रेडियो पर मैसेज आया था कि मोहल्ले में आज सुबह 4 बजे टैंकर से पानी दिया जाएगा। चल तैयार हो जा, मैं भी बाल्टी ले लेती हूँ।
1: माँ भैया को भी ले चलते हैं ना।
0: अरे उसे सोने दे, भैया थका हुआ है। इन दिनों स्कूल में फुटबॉल मैच चल रहे हैं ना, कसरत करने भी तो जाता है कितनी।
1: माँ मैं भी तो स्कूल जाती हूँ और आपके साथ साथ घर का सारा काम भी कराती हूँ, क्या भैया ही थकता है बस।
0: ओहो अब चल भी, बहस मत कर।
2: नहीं माँ, इस बार मेरी बारी, अगली बार भैया की बारी, ठीक है?
0: ठीक है बाबा, ठीक है, अब चल भी, बहस मत कर।
1: ठीक है चलो।
0: अरे तू कहाँ से आ गई? हट हट हट यहाँ से, मेरी बारी है।
3: तो साथियों, ऐसा दृश्य थोड़े बहुत अंतर के साथ दुनिया के बहुत से देशों में देखने को मिल जाएगा। आए दिन अलग अलग समाचार माध्यमों से सूचनाएं मिलती हैं कि जलाशय सूख रहे हैं, नदियां सूख रही हैं।
0: जी हाँ, इसी तरह सोनी के मोहल्ले और आसपास के क्षेत्रों में अक्सर पानी की समस्या बनी रहती थी और हर बार वही क्रम चलता रहता था। वही क्रम यानी सोनी जल्दी आएगी। सोनी शाम को रेडियो सुन रही थी।
4: नमस्ते, हमारे कम्युनिटी रेडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका रेडियो होस्ट गौहर परवेज। शनिवार को संध्या 7 बजे हरित नगर कम्युनिटी हॉल में आप सब कर रहेगा इंतजार। हम लेकर आ रहे हैं बच्चों के लिए एक बेहद खास प्रोग्राम, पानी रे पानी। बेहद खास इसलिए कि उस दिन आप मिल पाएंगे अपने चाहते रेडियो किरदार झुमरू और झुमकी से। तो आइएगा जरूर।
0: बच्चे बहुत उत्साहित थे क्योंकि प्रोग्राम में आ रहे थे उनके प्रिय रेडियो किरदार झुमरू और झुमकी। इनका प्रोग्राम तो बहुत अच्छा होता है। अरे आ गए, देखो,
5: अरे वाह, देखो आ गए।

0: तो प्यारे प्यारे बच्चों और साथियों, मैं हूँ तुम्हारी दोस्त झुमकी
1: और मैं हूँ झुमरू।
0: नमस्कार।
1: तो झुमकी, आज हम बच्चों से क्या चर्चा करने जा रहे हैं?
0: ये तो बहुत सही सवाल किया है आपने। आज हम चर्चा करेंगे, करेंगे किस पर?
1: किस पर?
0: पानी पर।
1: पानी पर? क्यों?
0: वो इसलिए क्योंकि इन दिनों पानी की समस्या ही सबसे बड़ी है।
1: हाँ, बड़ी तो है। अब देखो ना, इन बच्चों को सुबह सुबह 3-4 बजे पानी लेने के लिए लाइन में खड़ा होना पड़ता है। क्यों बच्चों, है ना यही बात?
2: हाँ, ये बात तो है,
3: पानी की समस्या तो है, हम तो परेशान हो गए हैं।
1: तो बच्चों, इसे समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा जल चक्र।
2: जल चक्र?
1: हाँ, तो आज हम खेलेंगे भाषा का खेल, जिसमें आपको करना है शब्दों का मेल।
0: तो चलो शुरू करें।
1: चलो झुमकी।
0: ठीक है ठीक है, तो चलो मैं शुरू करती हूँ। सूरज निकला चमचमाया, धूप ने फिर जल को तपाया, आगे जोड़ो झुमरू जी और वो भी ताल में।
1: हाँ हाँ, जोड़ता हूँ मैं, ये लो बात ध्यान से मेरी सुन लो। नदियों तालों का जल उड़ाया, भाप बन जल ऊपर आया।
0: झुमरू जी ने तो कमाल कर दिया। अब ये भी लीजिए, जब भाप बनी तब बादल छाए, नील गगन में झूले खाए, जब लद गए बूंदों से बादल, भारी हो गए तब बादल। तालियां।
1: रिमझिम रिमझिम वर्षा आई, चहू और हरियाली छाई, झरनों नदियों में बह पानी, जल चक्र की है ये कहानी।
0: इसके बाद क्या हुआ झुमरू जी?
1: बताते हैं बताते हैं, सुनिए। पानी फिर से सागर जाता, बार बार यही क्रम दोहराता।
0: क्या बात है। सूरज भाप बादल वर्षा का जल चक्र यूं चलता जाता, सभी बोलेंगे जल चक्र यूं चलता जाता।
1: तो बच्चों, कैसा लगा भाषा का ये खेल?
2: बहुत अच्छा।
4: अभी आपने सुना कार्यक्रम पानी रे पानी, जल चक्र की कहानी। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम वो बारिश का दिन।
5: ये कार्यक्रम एक रोचक नाटक के द्वारा वैज्ञानिक खोज की जानकारी देते हुए बताता है कि ज्वर मापी यंत्र थर्मामीटर का आविष्कार कैसे हुआ।

0: तनु माँ के साथ छुट्टियों में नाना जी के पास आई हुई है। तनु के नाना जी आजकल तनु के साथ छोटे बच्चे की तरह हो गए हैं। वैसे वो शहर के जाने माने डॉक्टर हैं, पर अब रिटायर हो चुके हैं और सुबह शाम कुछ समय के लिए घर पर ही मरीजों को देखते हैं। नाना जी के साथ तनु रोज सैर करने जाती है, पर आज बारिश के कारण दोनों घर में बैठकर कैरम खेल रहे हैं।
1: ये तुम्हारा हरा दिया, हरा दिया।
2: वैसे तनु, हाँ बारिश ने तो हम दोनों को घर पर ही रोक रखा है।
3: जी,
2: पर कैरम का खेल खूब जमा। न जाने कितने समय के बाद कैरम बोर्ड को हाथ लगाया आज मैंने, फिर भी एक खिलाड़ी को हरा दिया।
3: नाना जी, मैं तो हार कर भी जीत गई हूँ।
2: ये कैसी अजीब बात है?
3: देखिए ना, आप चाहे हारे या जीते, हर बार आपको मुझे कहानी सुनाने का इनाम तो देना ही पड़ता है।
2: ये बात तो है। अच्छा ठीक है, ये बताओ आज कौन सी कहानी सुनोगी, परियों की या जादूगर की?
3: ना परियों की ना जादू वाली, मुझे तो वैसी ही कहानी सुनाइए जैसे हर दिन सुनती हूँ मैं आपसे।
2: अच्छा बेटा तरु, तेरे डॉक्टर नाना के पास तो बीमारी, रोगी और उनके स्वस्थ होने की कहानियाँ ही है बस।
3: लेकिन एक बात तो है, आपकी कहानियाँ परियों की कहानी से अधिक रोचक और मजेदार होती हैं।
2: अच्छा?
3: हाँ और क्या, तू सुनाइए ना। हाँ, जल्दी सुनाइए।
2: हाँ बेटा सुनाता हूँ। अरे सोचने तो दो,
3: जल्दी सोचिए।
2: मैं किसकी कहानी सुनाऊं? देखो वो।
3: अरे जीवन काका।
2: अरे अरे आओ जीवन, क्या बात है भाई?
4: बाबूजी,
2: हाँ
4: आज सुबह से बुखार सा लग रहा है, सिर में भी दर्द है।
2: बुखार? अरे भाई बारिश में भीग तो नहीं गए कहीं? आओ अभी देखता हूँ, आओ इधर आओ।
4: जी
2: यहाँ लेट जाओ।
4: जी
2: लग रहा है बुखार। अरे बेटे तनु,
3: जी
2: जरा अंदर से थर्मामीटर तो ले आओ।
3: जी अभी लाई।
2: हाँ हाँ खांसी भी है तुम्हें, जरा जबान दिखाओ तो।
4: जी
2: पेट भी गड़बड़ है तुम्हारा तो। एक मिनट देखो, ये बारिश की वजह से हुआ है
4: जी।
2: पहली बारिश में थोड़ा सावधान रहा करो।
4: जी जी जी, जी।
2: अरे बदलते मौसम का असर तो होता ही है ना भाई जीवन।
3: जी, जी, जी, नाना जी।
2: हाँ ला बेटा ला। जीवन
4: जी
2: जरा मुंह खोलो, लो इसे जीभ के नीचे रख लो।

0: डॉक्टर साहब ने थर्मामीटर लगाकर जीवन का बुखार देखा तो हल्की हरारत थी। उन्होंने जीवन काका को दवा दी और आराम करने के लिए कह दिया। जीवन चला गया। नाना जी को लगा जब वो थर्मामीटर लगाकर जीवन का बुखार देख रहे थे तो तनु कभी उन्हें और कभी थर्मामीटर को ध्यान से देख रही थी।
1: अरे तनु
2: जी,
1: क्या बात है, कोई कहानी सोच रही है अपने नाना को सुनाने के लिए है?
2: नाना जी, मैं सोच रही थी जब पुराने समय में थर्मामीटर नहीं थे तो डॉक्टर मरीज का बुखार कैसे नापते थे?
1: बेटी तनु
2: जी,
1: ये समझ लो कि इसका उत्तर अपने आप में एक मजेदार कहानी है।
2: तो फिर आज वही कहानी सुनाइए ना।
1: सुनो
2: जी,
1: जब थर्मामीटर नहीं था ना, तब डॉक्टर रोगी को छूकर ही उसके ज्वर यानी बुखार का अनुमान लगाने की कोशिश करते थे।
2: लेकिन अनुमान से शरीर में कितना डिग्री बुखार है ये पता लगाना तो कठिन होता होगा।
1: एकदम ठीक बात कही तूने बेटा।
2: दुनिया का सबसे पहला थर्मामीटर किसने बनाया था
1: ये जानने के लिए तो तुम्हें लगभग 400

0: वर्ष पीछे इतिहास में जाना होगा। और बिटिया वो भी अपने देश से दूर विदेश में।
1: तो चलिए ना, मैं तो तैयार हूँ इस इतिहास यात्रा के लिए।
0: चलो। ये यूरोप के एक देश इटली की घटना है बेटा। तब वहां एक चिकित्सक थे डॉक्टर सेक्टोरियस
1: जी।
0: दुनिया का सबसे प्रथम थर्मामीटर बनाने का श्रेय उन्हीं को दिया गया है।
1: अच्छा।
0: हाँ, पहला थर्मामीटर देखने में इतना विचित्र था कि जब डॉक्टर इससे किसी रोगी का बुखार देखते तो हंसी आ जाती थी।
1: नाना जी, हंसना तो सेहत के लिए अच्छा होता है। वैसे कैसा था उनका बनाया थर्मामीटर?
0: बेटे एकदम अलग आकार था।
1: अच्छा।
0: बिल्कुल अलग आकार का था ये पहला थर्मामीटर।
1: जी।
0: उससे बुखार देखने के लिए डॉक्टर को पानी में उड़ते बुलबुले गिनने पड़ते थे।
1: अच्छा।
0: अर्थात ज्यादा बुलबुलों का मतलब होता था तेज बुखार। कम बुलबुले हो तो थोड़ा बुखार।
1: लेकिन पानी में उठने वाले हवा के बुलबुलों का बुखार से क्या संबंध हो सकता है?
0: बिटिया रानी, वही मजेदार बात सुनो। वो थर्मामीटर भी शीशे की एक लंबी ट्यूब या नली के आकार का था जो बीच में कई जगह मुड़ी हुई थी।
1: अच्छा।
0: हाँ बेटा, उसके एक छोर पर शीशे का एक छोटा सा ग्लोब था।
1: अच्छा।
0: हाँ, और नली का दूसरा छोर खुला हुआ था।
1: वाह, शीशे के ग्लोब वाला थर्मामीटर। लेकिन बुखार कैसे देखते थे उस थर्मामीटर से?
0: बताते हैं बेटा, बताते हैं। देखो
1: जी,
0: जिसे बुखार होता
1: जी,
0: डॉक्टर उसके मुंह में नली का ग्लोब वाला भाग रखते
1: जी।
0: उसके बाद नली का दूसरा छोर एक खुले बर्तन में भरे पानी के अंदर डाल दिया जाता।
1: फिर
0: मुंह में रखा ग्लोब शरीर के तापमान से गर्म होने लगता
1: जी।
0: अब ग्लोब गर्म होता तो उसमें मौजूद हवा भी गर्म होकर फैलने लगती।
1: अच्छा।
0: और नली के मुड़े हुए हिस्से में से होकर दूसरे छोर पर पानी से भरे बर्तन में पहुंचने लगती।
1: लेकिन बुखार?
0: ओहो बेटा, बताता हूँ, सांस लेने दे, बूढ़ा आदमी। सुन ध्यान से
1: जी।
0: तो बेटा तुम तो जानती हो कि हवा पानी से हल्की होती है ना
1: जी,
0: इसीलिए वो बुलबुलों के रूप में पानी से बाहर निकलती जाती
1: जी।
0: शरीर का तापमान जितना अधिक होता उतने ही ज्यादा बुलबुले बनते, और डॉक्टर उन बुलबुलों को गिनते रहते।
1: अच्छा।
0: और बुखार का अनुमान लगा लेते। हाँ, लेकिन एक बात।
1: क्या?
0: देखो, पहले प्रयोग के समय देखा जा चुका था
1: जी
0: कि सामान्य तापमान वाले व्यक्ति के मुंह में ग्लोब से पानी में कितने बुलबुले निकलते थे।
1: यानी बुलबुलों की संख्या जितनी अधिक होती रोगी का बुखार उतना ही तेज होता।
0: बिल्कुल ठीक, एकदम ठीक।
1: लेकिन बात तो तब भी अनुमान पर ही टिकी होती ना।
0: हाँ बेटा, ये तो बात सही है, क्योंकि तापमान नापने का कोई तरीका तो तब था नहीं।
1: हाँ जी।
0: इस तरह ग्लोब और बुलबुलों वाला थर्मामीटर
1: जी
0: दुनिया का पहला थर्मामीटर माना गया।
1: अच्छा।
0: हाँ बेटा, आधुनिक थर्मामीटर जैसे आकार वाला थर्मामीटर फ्रांस में सन 1654 में बना
1: जी।
0: समझ गई ना
1: जी।
0: पर इसमें पारे के स्थान पर अल्कोहल भरा होता था
1: जी,
0: और तापमान नापने के लिए उस पर मोती लगे होते।
1: अच्छा।
0: आज ऐसे निशान नहीं होते थे बेटा।
1: वाह, मोतियों से जड़ा थर्मामीटर।
0: नहीं बेटा, वो सच्चे मोती नहीं होते थे, मोती जैसे होते थे।
1: अच्छा।
0: हाँ बेटा, और फिर 19वीं सदी के आते आते आज के उपयोग में आने वाला थर्मामीटर बना लिया गया।
1: अच्छा।

नमस्कार, पेश है एफएम रेनबो पर अब तक के मुख्य समाचार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जापान के रक्षा मंत्री शिंजीरो कोइज़ुमी के बीच आज नई दिल्ली में बैठक हुई। दोनों नेताओं ने समुद्री सुरक्षा सहयोग पर प्रबंधन समझौते पर हस्ताक्षर किए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने सिंगापुर में प्रधानमंत्री लॉरेंस वांग से नेताओं ने व्यापक रणनीतिक साझेदारी के प्रारूप के कार्यान्वयन में हुई प्रगति की समीक्षा की। गृह मंत्री अमित शाह चेन्नई के कोवलम में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। वे आज पश्चिम बंगाल में कई कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। दिल्ली के उप राज्यपाल तरणजीत सिंह संधु ने राजधानी में आगामी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की तैयारियों की समीक्षा बैठक की। बैठक में सभी मोर्चों पर निर्बाध बहु एजेंसी समन्वय और समयबद्ध क्रियान्वयन की आवश्यकता पर बल दिया। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पटना में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत चालू वित्त वर्ष में निर्मित 2,35,000 मकानों की चाबी लाभार्थियों को सौंपी। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 68 लाख रूपये से अधिक की बेहिसाब नकदी बरामद की। सड़क और परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने आज नई दिल्ली में दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा के साथ एक पेड़ मां के नाम पहल के तहत पौधारोपण कार्यक्रम में भाग लिया। शिक्षा मंत्रालय ने युवा संगम के सातवें चरण के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख इस महीने की 31 तारीख तक बढ़ा दी है। बांग्लादेश में 35 साल के लंबे अंतराल के बाद आज राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ नए आर्थिक युद्ध की घोषणा की है। रूस ने कल रात यूक्रेन की राजधानी कीव पर मिसाइलों से हमला किया। इसमें 6 लोग मारे गए और 33 अन्य घायल हो गए। BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में ट्रीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद में पहुंची और FIH हॉकी विश्व कप के पूल डी के अपने अंतिम मैच में भारतीय

0: नंदन वंदन अभिनंदन आप सभी का हमारे आज के कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स के इस अंक में हार्दिक अभिनंदन है। मैं गीतिका ओनियाल आप सभी का स्वागत करती हूं और आपसे वादा करती हूं कि हर बार की तरह आज का हमारा ये कार्यक्रम आपके दिलों में एक नई उम्मीद जगाने वाला है, क्योंकि हमारे लिए कोई कहीं मुस्तैद है, कार्यरत है, जो अपनी जान को अपनी हथेलियों में लेकर चलता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो देश की सेवा में सर्वत्र अपना सर्वत्र न्योछावर किए आगे बढ़ रहा है, हर दिन हर रात। आपसे साझा करना चाहेंगे कि आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हैं शिव शंकर कुमार जी, जो इंस्पेक्टर हैं जनरल ड्यूटी सहस्त्र सीमा बल में, आजकल गैंगटॉक में कार्यरत हैं और इन्हें गैलेंट्री मेडल से भी सम्मानित किया गया है। और सबसे प्यारी और खूबसूरत बात आज के अंक की ये है कि ये सीधा गैंगटॉक से यहाँ पहुँचे हैं आकाशवाणी के स्टूडियोज में आपको अपनी यात्रा से अवगत कराने के लिए, रूबरू कराने के लिए। हर ऑफिसर की अपनी यात्रा होती है, लेकिन उस यात्रा का गंतव्य सिर्फ देश सेवा होती है। तो देश सेवा को समर्पित हमारे आज के मेहमान शिव शंकर कुमार जी का मैं हार्दिक स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। शिव शंकर कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं इंस्पेक्टर शिव शंकर कुमार SSB की ओर से आप सभी श्रोताओं को जय हिंद कहना चाहूँगा। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सभी से जुड़ने का अवसर मिला है, इसके लिए मैं ऑल इंडिया रेडियो टीम का भी धन्यवाद करना चाहूँगा। SSB का मुख्य उद्देश्य देश की सुरक्षा के साथ साथ सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति सुरक्षा को बनाए रखना है। इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए हमारे SSB के सभी कार्मिक दिन रात पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ अपना काम कर रहे हैं। SSB हमारी इंडो नेपाल बॉर्डर, इंडो भूटान बॉर्डर के साथ साथ इलेक्शन ड्यूटी, इंटरनल सिक्योरिटी ड्यूटी को भी बखूबी अंजाम दे रही है। एक बार फिर से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा पूरी टीम का।
0: जी इंस्पेक्टर, आपने जिस तरह से व्याख्या की यहाँ पर SSB की, इससे ये साबित होता है कि आप देश के साथ साथ अपनी सेवाओं से, सेनाओं से कितना प्रेम करते हैं। और आज आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं सहस्त्र सीमा बल का, उन तमाम सैनिकों का, उन तमाम अधिकारियों का जो कहीं ना कहीं अपनी कर्तव्य निष्ठा के साथ अपने, आप कहते हैं ना कि अपने आत्मनोबल या आत्मबल तो हमें दी है, पर हम किस तरह से अपने आप को समर्पित करते हैं वो भी सेनाओं के माध्यम से काबिले तारीफ है। अगर आपके व्यक्तिगत जीवन की बात की जाए तो नन्ना मन
1: जी,
0: लंबी उड़ान, छोटे छोटे पंख, आपका जो जीवन है खासतौर पर आपके बचपन की बात की जाए तो किस तरह के बच्चे थे आप? क्या शैतान थे? और पढ़ाई में कितना मन लगता था? कैसा माहौल था घर में?
1: बचपन तो मेरा बिहार में सीतामढ़ी, जो एक बाजपट्टी पड़दौरा गाँव है, वहाँ बिता है मेरा। परिवार का माहौल बहुत खुशनुमा माहौल था और हमेशा इनकरेजिंग मिलता था काम करने के लिए। शरारती बच्चे तो थे ही, लेकिन हमारे अनुशासन के प्रति हमेशा सजग रहने को सिखाया गया है
0: जी।
1: और अपने काम को पूरी ईमानदारी से करने का भी एक हमारे पिताजी सिखाते थे कि पूरी ईमानदारी से कोई भी काम को करना है तो पूरी ईमानदारी से करना है, लगन के साथ करना है। तो वो हमारे अंदर हमेशा के लिए रह गया और आगे चल के हमारे जब भी हमारे प्रोफेशन लाइफ में भी वो काम किया है
0: जी। कहते हैं कि हमारा जो परिवेश है, हमारा जो परिवार है, उसका बहुत बड़ा हाथ होता है हमारे विकास में। आज हम जो कुछ भी हैं अपने परिवार की वजह से और जो भी संस्कार आपको प्राप्त हुए वो देश सेवा में निहित है, नजर आ रहे हैं। और आज जब आप अपनी वर्दी पहने यहाँ FM रेनबो के स्टूडियोज, आकाशवाणी के स्टूडियोज में बैठे हैं, तो आपके माता पिता जिस वक्त आपको सुन रहे होंगे, घर परिवार वाले सुन रहे होंगे, वो

0: बात की मिसाल दे रहे होंगे कि हाँ हमारे बच्चे ने अपने लिए नहीं अपने देश के लिए जो बेड़ा उठाया है काबिले तारीफ है। तो शिव कुमार जी, आप शिव शंकर कुमार जी, आप हमें ये बताइए कि कहाँ से प्रेरणा मिली कि आपको देश सेवा में इस पथ पर चलना है और SSB ज्वाइन करने का फैसला कैसे लिया?
1: मेरे लिए वर्दी हमेशा सम्मान और जिम्मेदारी की प्रतीक रहा है। मन में हमेशा ऐसी इच्छा थी कि फौज के प्रति, देश के प्रति कुछ करना है, तो ऐसा काम करे जो देश और समाज में अपना योगदान भी दे सके। इसी सोच को जब हमने ग्रेजुएशन पास किया तो सुरक्षा बल में जाने का सेवा SSC की फॉर्म आई, उसमें मैंने पास करके और फिर SSB को ज्वाइन किया है। एक SSB एक ऐसा माध्यम रहा, एक ऐसा अवसर रहा जिसके देश सेवा के साथ साथ देश सेवा करने का पूर्ण मौका मिला
0: जी। और ये मौका आपके जीवन में एक सुखद अनुभूति लेकर आया, वर्दी पहनना, फिर देश सेवा में जितने भी ऑपरेशंस में आप कार्यरत रहे उनके माध्यम से कहीं ना कहीं ये अनुभूति ज़रूर हुई होगी कि अगर मैं सेना ना ज्वाइन करता तो ये मौका मुझे कहाँ मिलता, कहाँ मैं अपने देश का परचम लहरा पाता। तो ये सौभाग्य की बात है कि सेनाओं ने आपको चुना और सशस्त्र सीमा बल आपको बल दे रहा है आज, और आप इस बल से देश सेवा कर रहे हैं, इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती। तो ये बताइए कि आपने ग्रेजुएशन किया और ग्रेजुएशन के उपरांत आपने एग्जाम क्लियर किया, क्या प्रक्रिया रही, कैसे पहुंचे और कितने अटेम्प्ट्स किए, कितने अटेम्प्ट्स में आपको यह हासिल हुआ, क्या कुछ और भी करने की सोच रहे थे साथ साथ, या सिर्फ ये था कि फौज में ही जाना है?
1: ये मेरी पहली अटेम्प्ट ही थी और मैंने 2012 में ये SSB को ज्वाइन किया था और इसकी जो फॉर्म थी SSC के थ्रू आई और 2010 में इसका प्रोसेस शुरू हो गया था। पूरी भर्ती जो होती है वो फिजिकल होता है, मेडिकल होता है, रिटेन होता है, इंटरव्यू होता है, सारी प्रक्रिया को चयन करने के बाद, पास करने के बाद मेरा चयन हुआ था। इसमें फिजिकल टफनेस के साथ साथ मेंटल टफनेस की भी परीक्षा होती है इसमें। अगर वो सारा चीज़ आप पास कर जा रहे हैं तो फिर आपका चयन हो जाता है। उस समय एक ही बात मन में था कि अगर मौका मिले तो मैं भी अपने इस काम को पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ ये करूँगा
0: जी। तो वो कौन सा वर्ष था जब आपका चयन हुआ और चयन होने के बाद जब ये खबर आप अपने परिवार तक ले गए तो उनकी क्या प्रतिक्रिया थी?
1: ये 2012 में हुआ है। 2012 में हमें SSB ज्वाइन करने का मौका मिल गया था। परिवार के लिए तो ये बहुत खुशी और गर्व का विषय था, लेकिन एक छोटा सा वो भी था कि फौज में जा रहा है तो फौज में घर से दूर रहेगा। उनके मन में एक था कि घर से दूर रहेगा, लेकिन उनका हमेशा सपोर्ट रहा है कि हाँ चलो जो भी करना है अपने मन से ईमानदारी से करना है, मुश्किल परिस्थितियों में भी ड्यूटी करना है तो उसके लिए भी परिवार का साथ होना बहुत जरूरी है। उन्होंने हमेशा साथ किया दिया है
0: पर उसी साथ के चलते आप आज यहाँ तक पहुँच गए। सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर तक का सफ़र आपने पूरा किया, इसके बारे में चर्चा ज़रूर करेंगे। ये भी बताएं कि जब आप घर परिवार के साथ साथ जब जिस जगह से आप संबंध रखते हैं, आपके नाते रिश्तेदार दोस्त, उन तक जब ये बात पहुँची कि हमारा दोस्त या हमारा परिवारजन अब SSB ज्वाइन करने वाला है, तो उन्होंने क्या कहा आपसे? क्या कभी किसी ने ऐसा कहा कि आप जैसा बनना चाहते हैं, हम भी SSB ज्वाइन करना चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं देश की?
1: हमारे गांव वालों के लिए भी ये गर्व की बात था कि हमारे बीच का एक लड़का कोई जाकर फौज में भर्ती हो रहा है, वो सबके लिए गर्व की बात था। और एक तो आइडल बन ही जाता है गांव समाज के लिए कि हाँ कोई भी जाए तो वो उसके जैसा बनना है। मैं ये नहीं मानता हूँ कि मेरे जैसा ही बनना है, सब अपने अपने क्षेत्र में काम करे वो ज़्यादा जरूरी है
0: जी। पर ऐसा तो ज़रूर होता होगा कि जब आप अपने घर जाते होंगे तो आपके अपने आपके दोस्त, आपके परिवारजन एक जमावड़ा सा लग जाता होगा और कहते होंगे सुनाओ ना कुछ किस्से कहानियाँ, क्या कुछ होता है SSB में, जहाँ जिस बटालियन के साथ जाते हो क्या कुछ खास हुआ? क्योंकि कहीं ना कहीं हमें बहुत उत्सुकता रहती है कि हमारे जो देश के जो जीते हैं। हम आम जनमानस बस आपकी किस्सों को दोहराते हैं, लेकिन जब आपकी जुबानी उनको सुनते हैं ना तो गर्व से सीना फूल जाता है। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से भी जितने लोग हमें सुन रहे हैं, संदेश आने हम तक पहुंच चुके हैं, तो कहीं ना कहीं मन में जिज्ञासा रहती है कि कैसा जीवन जीते हैं। ये तो जानते हैं कि मुस्तैद रहते हैं, लेकिन उसके अलावा भी कोई ज़िंदगी ऐसी होती होगी जो हम नहीं जी पाते। और यही कारण है कि आज देश के युवा भावी पीढ़ी फोर्सेज ज्वाइन करना

0: आते हैं, तो ऐसा होता होगा आपके साथ?
1: ये होता है, फौज ऐसी संस्था है जो एक जॉब नहीं देती, एक लाइफ देती है
0: जी,
1: ये पूरा जीवन देती है हमको। आप अगर आप इसमें जीना चाहते हैं तो पूरी लाइफ जो है वो देती है। और किस्से कहानियाँ तो चलते रहते हैं, घर पे जाते हैं तो जो भी किस्से कहानियाँ वो चलते रहते हैं, सभी उत्सुक रहते हैं कि कुछ तो बताए फौज में कैसे चलता है, क्या होता है नहीं होता है, ये सब तो चलते रहता है। और ड्यूटी के टाइम में ड्यूटी, और ड्यूटी जब नहीं रहती है तो हम लोग भी रिलैक्स होके रहते हैं और काम करते हैं
0: जी। लेकिन लक्ष्य, जिस लक्ष्य के लिए, जिसकी प्राप्ति के लिए आपने मेहनत की, वो लक्ष्य आपको प्राप्त हुआ, और लक्ष्य प्राप्ति के साथ साथ जैसे ही आप अपना एग्जाम क्लियर किया, हर चरण में आप उत्तीर्ण हुए, पास हुए, उसके उपरांत तो ट्रेनिंग जो एक अहम हिस्सा रही, तो ट्रेनिंग का सफर कैसा रहा, कहाँ ट्रेनिंग हुई, और क्या आप ये मानते हैं कि इस ट्रेनिंग ने आपको पूर्ण रूप से तैयार कर दिया था सेवा देने के लिए?
1: मेरी पोस्टिंग सबसे पहले 2012 में हुई, जब मैं बेसिक ट्रेनिंग करने के लिए CTC सलोनीबारी असम में है वहाँ गया। वहाँ से एक सिविलियन को कैसे ट्रांसफॉर्म किया जाता है एक फौज में आने के लिए, फौजी बनने के लिए, उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया गया 13 महीना का जो बेसिक ट्रेनिंग था उसमें। इससे ये होता है कि हमारा सिविल लाइफ और फौज के लाइफ थोड़ा डिफरेंस होता है, मतलब फौज में कैसे किससे बात करना है, कैसे चलना है, कैसे रहना है, सारा चीज़ को वो 13 महीने के अंदर में हमें हमारे इंस्ट्रक्टर लोग ने, हमारे जो भी अधिकारी लोग, उसको पूरी तरह से मजबूत बनाया। टल टल चीज़ को हमने सिखाया गया उसके उसी दौरान। उसके बाद हमारी पोस्टिंग आगे होती चली गई। उसके बाद मेरी पोस्टिंग सबसे पहले 53 बटालियन फालाकाटा में हुई, जो इंडो भूटान बॉर्डर को मैन करती है, वहाँ पे ड्यूटी करती है। उसके बाद 2018 में मेरी पोस्टिंग सीतामढ़ी 51वीं बहनी है, वहाँ पे जो इंडो नेपाल बॉर्डर को ड्यूटी करती है, मैन करती है, वहाँ पर हमारी ड्यूटी हो गई। वहाँ से होने के बाद हमें 2021 में ANO जो एंटी नक्सल ऑपरेशंस है, वो 16वीं वाहिनी जमुई बिहार में हमारी पोस्टिंग हो गई, वहाँ पे हमने दी। और फिलहाल मैं SSQ गैंगटोक में अपनी सेवाएं एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में, एक ऑफिस ड्यूटी के रूप में दे रहा हूँ।
0: बहुत खूब, बहुत खूब। तो हम यही कहेंगे कि ये सफ़र, ये कारवां यूं ही जारी है और जारी रहेगा। सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर बने हमारे शिव शंकर कुमार जी, और आज इंस्पेक्टर के रूप में हमारे साथ, हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। तो इनके सफ़र के बारे में और चर्चा करेंगे, और आप सभी श्रोता जो संदेश भेजना चाहते हैं 9868107070 इस नंबर के माध्यम से आप संदेश भेजिए, और अपनी भागीदारी निभाइए। इस बात का प्रतीक चिन्ह बनिए कि हम देशवासी अपने देश से कितना प्रेम करते हैं, सेवाओं के माध्यम से। हमारे जो ऑफिसर्स हैं, जो नित्य प्रति कार्यरत रहते हैं और जिनके लिए सिर्फ देश सेवा ही सर्वोपरि है, उनको सलाम करते हैं संदेश के माध्यम से।

0: लक्ष्य प्राप्ति किसे कहते हैं ये तो हम अपने फौजियों से ही सीखते हैं। अपनी तीक्ष्ण बुद्धि, कर्तव्य निष्ठा और देश के प्रति प्रेम ने हमेशा इन्हें लक्ष्य प्राप्त करना ही तो सिखाया है। और इस लक्ष्य प्राप्ति की वजह से हमारे देश भारत ने हमेशा परचम लहराया है, अपने फौजियों की वजह से और इनके देश प्रेम की वजह से। और इसी कड़ी में आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं इंस्पेक्टर शिव शंकर कुमार, सहस्त्र सीमा बल। साझा कर चुकी हूं कि आजकल ये गैंगटॉक में कार्यरत हैं और सीधे गैंगटॉक से यहाँ आकाशवाणी के स्टूडियो आए हैं। यही इनकी कर्तव्य निष्ठा है, यही देश प्रेम है। और सहस्त्र सीमा बल ने जैसे ही इन्हें कहा कि आपको जाना है और पहुँचना है, देखिए ये तुरंत कल चले और आज यहाँ पहुँच गए। आपसे ये जानना चाहते हैं हम शिव शंकर कुमार जी, एक लंबा सफ़र तय करता है एक फौजी। 2012 में आपकी नियुक्ति हुई, आप सब इंस्पेक्टर बने, फिर 2018 में इंस्पेक्टर बने। ये सफ़र कितना चुनौतीपूर्ण और जिम्मेदारियों से भरा हुआ था। पदोन्नति अपने आप में हमें सुखद अनुभूति कराती है, लेकिन वो अपने साथ बहुत सारी चुनौतियां और जिम्मेदारी लेकर आती है।
1: यह सफ़र मेरे लिए बहुत सीखने वाला रहा है। 2012 में मैं सब इंस्पेक्टर नियुक्त हुआ था। उसके बाद एक प्रक्रिया है, अगर वैकेंसीज हो और आपका सर्विस रिकॉर्ड ठीक हो तो आपको एक डिपार्टमेंट आपको प्रमोशन देती ही देती है
0: जी।
1: उसके साथ मुझे इंस्पेक्टर बनाया गया था। रैंक बढ़ने के बाद जिम्मेदारियां भी बढ़ती है
0: जी।
1: इस दौरान मैंने अपने जितने भी वरिष्ठ अधिकारी हुए उनसे भी बहुत कुछ सीखा और जो हमारे उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिला, क्योंकि एक सिविलियन होकर आकर फौज में ट्रेनिंग के बाद अगर ऑन ग्राउंड जो ड्यूटी करता है तो पहले से जो भी काम कर रहे हैं उनसे सीखने को मिलता है, वो हमारे दिनचर्या में शामिल हो जाता है
0: जी। जी, वो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाता है और आप उस ज़िंदगी को जीने लगते हैं और लगने लगता है हम इसी के लिए बने थे और जिसके लिए बने थे आज उसके लिए कार्यरत है, आपकी रग रग में शामिल हो जाता है। शायद सेनाएं आपको इस तरह से तैयार करती हैं कि बस आपके रगों में, आपके खून में सिर्फ सेनाएं और देश प्रेम रह जाता है
1: जी।
0: अच्छा, हमें ये भी बताएं कि जब आप सेनाएं ज्वाइन करते हैं, जब आपने SSB ज्वाइन की तो निश्चित परीक्षण के अंतर्गत आपको फिर आगे पोस्टिंग्स मिली, लेकिन प्रशिक्षण का सिलसिला फौज में जाने के बाद कभी खत्म नहीं होता, वो तो बरकरार रहता है ना। तो क्या आपको लगता है कि जो भी ट्रेनिंग्स आपने बीच बीच में की या करते आ रहे हैं इसने आपका निर्माण किया है, इसने आपको पूर्ण रूप से एक फौजी होना भी सिखाया है और कैसे चुनौतियों से लड़ा जाए ये भी बताया है।
1: प्रशिक्षण ही किसी को बेटर बनाती है। पहले हमने बेसिक ट्रेनिंग किया, उसके बाद समय समय पर ऑर्गेनाइजेशन हमको कोर्सेज कराती रहती है, इन प्रोफेशनल कोर्सेज हो और ट्रेनिंग भी हो वो कराते रहती है। जैसे आपको प्रमोशन भी मिलता है तब भी आपको कोर्सेज करने पड़ते, कोर्सेज क्वालिफाई करने पड़ते तब आपको प्रमोट किया जाता है। उसी तरह से हर कोर्स के लिए, हर ड्यूटी के लिए अलग अलग कोर्सेज है जो आपको साउंड बनाने के लिए कराए जाते हैं। जिस प्रकार से कोई भी कोर्सेज हो, जंगल वारफेयर का कोर्सेज हो, जंगल में कैसे रहना है उसकी ट्रेनिंग कराना हो, जैसे बॉर्डर पर ड्यूटी करना है, इंडो नेपाल बॉर्डर को कैसे मैन करना, इंडो भूटान बॉर्डर को कैसे मैन करना, उसकी भी ट्रेनिंग, ये अनवरत जारी रहता है। और फौज मैंने तो इसमें अनवरत जारी रहेगा कोर्सेज कराना, जिससे कि आप और टफ हो सके और अपने काम को अच्छे तरह से कर सके, इसीलिए ट्रेनिंग हमेशा जरूरी है
0: जी। और ना शब्द तो कभी होता ही नहीं आपकी डिक्शनरी में, क्योंकि सेनाएं आपको हमेशा यही सिखाती हैं,
1: ना तो है ही नहीं,
0: ना तो है ही नहीं, बस जैसा कि हमने कहा कि लक्ष्य प्राप्ति ही आपका अल्टीमेट गोल है, जिस काम को आपको दिया गया उसको आपको पूर्ण करना है, यही आपकी जिम्मेदारी है।
1: और हम लोग उस जिम्मेदारी को पूरी तरह बखूबी निभाते भी है
0: जी, निभाते हैं। और एक बात व्यक्तिगत पूछना चाहूंगी, एक फौजी होने के नाते घर भी है, परिवार है, तमाम रिश्ते हैं और एक तरफ देश प्रेम है, तो इस कहते हैं कि एक फौजी के मन में कभी कोई जंग नहीं होती, उसके वक्त उस मतलब परिवार और देश को लेकर उसके मन में सिर्फ देश प्रेम होता है कि बस अब देश के लिए समर्पित है, माना कि घर है, परिवार है, भावनाएं हैं, तो इस चीज को आप किस तरह से अपने जीवन में समाहित करते हैं?
1: थोड़ा मुश्किल तो है, थोड़ा मुश्किल है, लेकिन परिवार का अगर सहयोग मिलते रहे तो ये सब आसान हो जाता है, परिवार और नौकरी के बीच में ये सामंजस्य बैठाना अगर परिवार से साथ मिलता है तो ये एकदम आसान हो जाता है। सुरक्षा बल की नौकरी में कई बार परिवार के जो महत्वपूर्ण अवसर होते हैं उसमें भी हम लोग नहीं आ पाते हैं, तब भी एक परिवार का जो सहयोग होता है अगर वो मिलते रहता है तो सारा आसान हो जाता है।
0: जी, सब कुछ आसान हो जाता है घर परिवार से आपको ये कहा जाए कि जाओ अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करो और जाओ अपने कर्तव्यों को पूर्ण करो, क्योंकि हमारा सम्मान तुम्हारे सम्मान में है, क्योंकि जब जब तुम अपनी जिम्मेदारी निभाओगे तब तब हम गर्व से कहेंगे कि हमारा बेटा जो है देश प्रेम में है और देश के लिए कार्यरत है। तो यही तो जज्बा है जो हमें हर वक्त अपनी ओर आकर्षित करता है, और कितने ही युवा ये चाहते हैं कि हम फोर्सेस ज्वाइन करें और देश का नाम ऊंचा करें। तो मिट्टी के रखवालों को हमारी ओर से सलाम है।

0: आप सभी का पुनः स्वागत संदेश टू सोल्जर्स में। सशस्त्र सीमा बल से इंस्पेक्टर शिव शंकर कुमार आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं और इनकी यात्रा इन्हीं की जुबानी सुनने में जो सुखद आनंद प्राप्त हो रहा है, ना जाने कितनों के लिए ये प्रेरणा स्रोत बन रहा है। बहुत सारे संदेश हम तक पहुंच रहे हैं, आप सभी के नाम हम जरूर लेंगे, लेकिन इससे पहले इनकी यात्रा जिसको हम सुनने के लिए इतने ललायत हैं कहीं भी छूट ना जाए। दिल चाहता है इनसे बार बार बहुत सारे प्रश्न किए जाएं। जितना हमें आपके बारे में पता लगा है कि आपको नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में कई बार तैनात किया गया है, आपको तैयार किया गया है, कभी महसूस होता है कि अगर आपको ये कार्यभार ना सौंपे गए होते तो आप जो आज हैं वो आज ना होते।
1: जी, ऐसे क्षेत्रों में हमेशा सतर्क रहना, हमारी अपनी ट्रेनिंग और जो हमारे ऑफिसर्स के निर्देशों के अनुसार हम लोग काम करते हैं, ड्यूटी के लिए हमेशा मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार रहना पड़ता है। टीम के साथ साथ एक टीम के भावना के रूप में काम करते हैं, टीम का कम्युनिकेशन एक दूसरे के प्रति ठीक रहना चाहिए और एरिया के बारे में जानकारी होना चाहिए जहाँ पे हम लोग ड्यूटी कर रहे हैं, तो कोई भी काम आसान हो जाता है।
0: जी, कोई भी काम आसान हो जाता है, लेकिन आसानी से पहले अपने आप को बहुत ज़्यादा तैयार करना होता है और आपकी तीक्ष्ण बुद्धि, आपकी कर्तव्य निष्ठा और कर्तव्यों का पालन कर निहित है, इसकी वजह से ही आपको शायद ऑपरेशन जोश के लिए भी चयनित किया गया, जहां पर आपने अपनी टीम के साथ मिलकर दमखम स्थापित किया और उस कहते हैं कि उस ऑपरेशन को सक्सेसफुल किया।
1: जी, ये 8 जून की घटना है, 8 जून 2022 की घटना है। ये मेरे टीम के लिए सबसे महत्वपूर्ण दिन था। ये बिहार राज्य के जमुई जिले की घटना है जिसमें हम एक ऐसे सफल ऑपरेशन के करेंगे जिसमें हमारी टीम ने एक हार्डकोर नक्सल को न्यूट्रलाइज किया था और उसमें भारी मात्रा में गोला बारूद और अन्य सामग्री भी बरामद।
0: जी,
1: ये सफलता मेरी नहीं पूरी टीम की सफलता है, जिसमें आपसी तालमेल हो, सही समय पे जो मिली सूचना को परिणाम था, ये ऑपरेशन सफल किया। उसके बाद वरिष्ठ अधिकारियों का मार्गदर्शन, उसके बाद पूरी तैयारी के साथ टीम ने कार्रवाई की, रिलाइज किया था। इस तरह के ऑपरेशन किसी एक व्यक्ति की भूमिका नहीं होती है, एक पूरी टीम होती है, पूरी टीम का योगदान होता है इसमें। आसूचना मिलने प्राप्त करने से लेके ऑपरेशन को अंजाम देने तक एक सभी कार्मिकों की अपनी अपनी जिम्मेदारी है और वो अपनी पूरी ईमानदारी और साहस के साथ इस जिम्मेदारी को निभाया था। SSV इस ऑपरेशन के बाद जमुई जिले में बहुत सारे नक्सलियों ने अपने आप इस ऑपरेशन के बाद खुद ब खुद सरेंडर किया सुरक्षा बलों के सामने आकर।
0: उनके मन में इतना डर
1: इनके मन में डर भर बन गया था और जस्ट एक सप्ताह के अंदर ही जो ये ऑपरेशन होने के बाद बहुत सारे नक्सलियों ने सुरक्षा बलों और पुलिस के सामने आके खुद ब खुद सरेंडर कर दिया। मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत गर्व के साथ बताना चाहूँगा कि SSV के महत्वपूर्ण योगदान के कारण जम्मू जिला आज पूर्णतः नक्सल फ्री घोषित हो चुका है। इसमें SSV का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मैं इस अवसर पर अपनी टीम को भी, सभी साथी कार्मिकों को उनके साहस और मेहनत एवं कर्तव्य निष्ठा के लिए बधाई देना चाहूँगा। सही समय पे सही कार्रवाई करना एक ऑपरेशन के लिए सबसे जरूरी होता है, जो हमारी टीम ने उसको किया।
0: जी, एक बात और पूछना चाहूंगी, जब इस तरह के ऑपरेशंस का आप हिस्सा बनते हैं, एक टीम का हिस्सा बनते हैं, तो निश्चित रूप से अपने सहकर्मियों से भी आप बहुत कुछ सीखते होंगे।
1: काफी कुछ सीखने को मिलता है। मैंने पहले भी बताया कि ये टीम को लेकर काम करने की पूरी टीम काम करती है, जिसमें हम लोग हमेशा कोई भी ऑपरेशन करते हैं तो एक टीम के साथ काम करते हैं। इसमें किसी एक की जिम्मेवारी नहीं होती, सभी की अलग अलग जिम्मेवारियाँ बांटी हुई होती है और वो सभी मिल के इस काम को अंजाम देते हैं। एक सूचना मिलने से लेके ऑपरेशन करने तक सारी की जिम्मेदारियाँ अलग अलग होती है और जब ये ऑपरेशन सफल होता है तो वो सभी के लिए उतना ही गर्व का बात है जितना अगर इसको सभी के लिए गर्व की बात।
0: हर मेंबर के लिए, जितने भी मेंबर्स हैं। अच्छा, हर मेंबर को उसका कार्यभार सौंप दिया जाता होगा और ये कहा जाता होगा कि आपको ऐसा करना है ऐसा करने पर। जिस तरह से कमांड दिया जाएगा आपको उसी वक्त डिसीजन लेकर कि आपको उसको सुचारू करना है, आप उसी वक्त अपनी बुद्धि से, अपनी कहते हैं कि हमारी बुद्धि जो है हमें निर्णय लेने में मदद करती है, कमांडर आपका आपको निर्देश देता है, उसके बाद आप तैयार हो जाते हैं उस काम को करने।
1: ग्राउंड में आने के बाद सभी को ऑन ग्राउंड के हिसाब से ही काम करना पड़ता है, लेकिन पहले जो भी प्रशिक्षण मिला हुआ है उसको अपने निहित करते हुए और काम को आगे किया जाता है। हमेशा जो भी ऑपरेशन होता है तो सबसे पहले सभी का काम को बता दिया जाता है कि आपका ये काम है, आपका ये काम है, आपको अपने अपने काम को बखूबी करते हैं और उसके कारण हमें सफलता मिलती है।
0: बहुत खूब। अच्छा, यहाँ पर आकर आपको लगता होगा जब आप ऑपरेशंस का हिस्सा बनते हैं और जैसा कि हमने कहा कि आप बहुत से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में आपने कार्य भी किया है, तो जो प्रशिक्षण आपने हासिल किए हैं, जो आपको प्रशिक्षण दिए हैं सशस्त्र सीमा बल ने, वो आपको लगता होगा कि वो आपके साथ बहुत अच्छा हुआ कि आपको वो ट्रेनिंग, आप आज इतने सारे ऑपरेशंस का हिस्सा बन रहे हैं।
1: ट्रेनिंग सबसे जरूरी है, जितना टफ ट्रेनिंग होगा उतना फ़ायदा मिलेगा ग्राउंड में काम करने के लिए और कुछ बेहतर करने के लिए हमेशा काम करेगा। ट्रेनिंग सबसे जरूरी चीज़ है, टफ जितना ट्रेनिंग होगा उतना फ़ायदा हमको ग्राउंड में काम करने के लिए मिलेगा।
0: जी, और कहते हैं कि कुछ विपत्ति जो है ना बताकर आती है लेकिन कुछ अनदेखी होती हैं, उसके लिए आपको सशस्त्र सीमा बल किस तरह से तैयार करता है?
1: हमेशा कठिन परिस्थितियों के लिए तैयार करके रखता है। फौज ऐसा ही है कि जो कठिन परिस्थिति जब भी है तब भी एक फौजी खड़ा रहता है वहाँ पे, उसी के लिए फौज रहती ही है।
0: जी, जैसा कि हम ने सभी श्रोताओं को बताना चाहेंगे कि आपको आपके ऑपरेशन जोश के लिए, जिसमें आपने अपनी पूरी टीम के साथ मिलकर उस नक्सली प्रभावित क्षेत्र को नेस्तनाबूद किया, और अगर हम गलत नहीं हैं तो जितने भी आर्म्स और एम्यूनेशन थे उनको भी आपने जब्त किया आखिर में, और आपको 2024 में गैलेंट्री पदक से भी नवाजा। तो अनुभूति किस तरह की थी? सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर बनना अपने आप में एक अलग अनुभूति, लेकिन सम्मान मिलना आपके कार्य के लिए वो उससे भी बड़ी बात, उस वक्त कैसा महसूस हुआ?
1: ये पल तो मेरे लिए गर्व और इमोशनल भी था। जब देश की सेवा करते हुए कोई सम्मान मिलता है तो बहुत खुशी भी होती है। इस सम्मान को केवल अपना सम्मान नहीं मानता हूँ, ये पूरी टीम का सम्मान है, और मेडल आगे अपनी जिम्मेदारी को और बेहतर तरीकों से करने की प्रेरणा देता है और आगे हम लोग भी

0: और मेहनत से और लगन के साथ कार्य करते रहेंगे।
1: जी बिल्कुल, आपने सही बात की कि जब मेडल प्राप्त होता है सुखद अनुभूति होती है, लेकिन उसके साथ बहुत आप अपने ऊपर और लेते हैं और ये कहते हैं अपने आप से स्वयं से बात करते हैं और भी बेहतर कर दिखाएंगे, है ना, और अभी निर्वाह करते हुए चलेंगे, मन में बात जरूर आती होगी।
0: हमेशा कोई भी ऑपरेशन होता है तो उसके बाद में उसकी समीक्षा होती है कि इस ऑपरेशन को और कितने बेहतर किया जा सके, तो आगे नेक्स्ट ऑपरेशन में उसको और उससे बेहतर किया जा सकता है और करते हैं हम लोग।
1: जी बहुत बढ़िया। अच्छा, के अलावा भी आपको और कई सम्मान दिए हैं SSB ने, उनके बारे में भी हमें बताएं।
0: तो उनके अलावा बहुत सारे सम्मान वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा प्रोत्साहन मिलता है, जिसे हमारे DG महोदय के द्वारा भी DG सिल्वर डिश से नवाजा गया है। एंटी नक्सल ऑपरेशंस में अगर ड्यूटी कर रहे थे वहाँ भी रिवॉर्ड्स मिले हैं, कमेंडेशन भी मिले हैं। हर सम्मान एक खुशी देता है और साथ साथ कराता है कि और इससे बेहतर करना है कुछ।
1: जी इससे बेहतर करना है और देश की, चाहे फौज की बात की जाए तो चाहे वो आंतरिक सुरक्षा की बात हो चाहे वो बाहम सुरक्षा की बात हो, और हर फोर्स अपना अपना कार्य करता है, जो आंतरिक सुरक्षा के लिए कार्यरत है वो आंतरिक करते हैं, जो बाहम के लिए जिम्मेदार है वो बाहम सुरक्षा के लिए कार्य करते हैं, लेकिन उद्देश्य एक ही है, देश। देश याद आता है और बस देश ही समझ में आता है, उसके अलावा कुछ और नहीं।
0: सबसे पहले देश है, देश के लिए कुछ भी करने के तैयार रहते हैं हम लोग।
1: जी बिल्कुल, आपने ठीक बात कही, देश के लिए तो मर मिटने तक के लिए तैयार रहते हैं। जब अपने घरों से निकलते हैं और फौज ज्वाइन करते हैं और फौज ज्वाइन करने के बाद तो जिस भी ऑपरेशन का हिस्सा बनते हैं तो कभी ये नहीं सोचते कि घर भी लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे। जो कर्तव्य निष्ठा है, यही जो आपका प्रेम है देश के प्रति, हम देशवासियों को हमेशा ये प्रेरित करता है कि आप हमें जहां भी मिले हम आपको सलाम करें और कहें आप हैं तो हम हैं और आप नहीं तो हम नहीं।

0: और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स, और संदेश टू सोल्जर्स में आज हमारे साथ हैं सशस्त्र सीमा बल से इंस्पेक्टर शिव शंकर कुमार, जिनकी बातें सुनने के बाद कहीं ना कहीं दिल में खूक उठ रही होगी आपकी, और आप भी ये सोच रहे होंगे कि हम भी फोर्सेस ज्वाइन करें और देश के प्रति अपने सम्मान को, हर कोई व्यक्ति ना यही चाहता है कि देश के लिए काश हम कुछ कर पाए, करना हर किसी के दिल में हुक जरूर मारता है। आज हम बात कर रहे हैं इंस्पेक्टर शिव शंकर कुमार जी से, इनकी यात्रा हमने इनकी जुबानी सुनी। शिव शंकर कुमार जी, आपसे जानना चाहते हैं कि अलग अलग बटालियंस में आप तैनात रहे, आप अलग अलग बटालियंस का हिस्सा रहे, क्या कुछ कार्यभार आपको सौंपे गए और वो कार्यभार आपको कितने अच्छे लगे, वो तो आपकी मुस्कान से पता लग रहा है कि आपके लिए हर बटालियन दिल के करीब रही है और बहुत सारी यादें देखी गई है हर बटालियन, तो कुछ कहना चाहेंगे, बताना चाहेंगे अपनी बटालियंस के बारे में?
1: मेरे लिए हर वाहिनी अपने अलग अलग यादें हैं, हर वाहिनी की अलग अलग यादें हैं, वहाँ पे काम करने वाले साथी जो भी रहते हैं वो एक फैमिली का हिस्सा बन जाते हैं, हम अपना सारा सुख दुख जो भी है उस के इर्द गिर्द ही बुनते हैं, हम एक टीम की तरह एक टीम भावना के साथ काम करते हैं, जो भी कार्य किए गए हैं वो साथियों के साथ बिताए हुए छोटे छोटे पल हमेशा याद रहते रहते हैं। मैंने पहले भी बताया कि हमने सभी बॉर्डर पर काम किया है, इंडो भूटान बॉर्डर सबसे पहले हमने किया, इंडो भूटान बॉर्डर का सिनेरियो अलग, फिर इंडो नेपाल बॉर्डर पे आया, इंडो नेपाल बॉर्डर का भी अलग ड्यूटी, उसके बाद हमने एंटी नक्सल ऑपरेशंस में काम किया 16 बटालियन में, जिससे हमें बहुत बड़ी सफलता भी मिली थी वहाँ पे। इसके बाद अभी हम पूरी तरह से ऑफिस ड्यूटी में है, गैंगटोक में पोस्टेड है, तो सारा काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, इसी

0: ड्यूटी के दौरान।
1: जी, ये बहुत प्यारी बात होती है कि जब आपको अलग अलग ऑपरेशन साथ ही साथ अलग अलग तरह के कार्यभार संभालने का मौका मिलता है अपने कार्यकाल में, इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती। आप फोर्सेस को उतनी अच्छी तरह से जान पाते हैं कि हमारी जो फोर्सेस है क्या कुछ करती हैं, कैसे करती हैं, और यही शायद बहुत खूबसूरत बात होती है। अच्छा, ये बताइए कि हर बटालियन या हर जब जिस बटालियन में आप रहे हैं, 3-3 साल के अंतराल के बाद आपकी पोस्टिंग बदली होगी, एक बटालियन छोड़ने के बाद, एक पोस्टिंग छोड़ने के बाद कितना दुख होता है?
0: ये काफ़ी दुख होता है, कभी लगता ही नहीं कि वहाँ से निकल के दूसरे जगह चले जाए। एक फैमिली बन जाती है, लगता है कि यहीं पे अपनी पूरी नौकरी कर ले, यहीं पे अपनी ड्यूटी कर ले, लेकिन एक प्रोसेस है और उसको हमको मानना पड़ता है। जब ऊपर से आदेश आ गया कि आपकी पोस्टिंग दूसरे जगह कर दी गई है, वो बिना हिचक के हम लोग अपना बैग पैक करते हैं और चल देते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए।
1: क्या बात है, जिस तरह जो भी निर्देश दिया जाता है उसी आपको मुस्तैद करते हैं, फिर नई जगह में पहुंचते हैं और फिर अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हैं। अच्छा, ये बताइए, जब किसी टीम में रहते हैं तो आपसी प्रेम तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिस वजह से आप जब उस यूनिट को, उस पोस्टिंग को छोड़ते हैं तो बहुत दुख होता है, लेकिन वो 3 साल का समय कहते हैं कि बहुत आत्मीयता लेकर आता है, सारे सुख दुख एक दूसरे के साथ, अपने टीम मेंबर्स के साथ, अपनी यूनिट के सहकर्मियों के साथ आप साझा करते हैं। पार्टी वार्टी करते हैं?
0: पार्टियाँ होती रहती है।
1: अच्छा,
0: ऐसा कुछ नहीं है, मैंने पहले भी बताया कि फौज एक लाइफ देती है, आप उस लाइफ को पूरी तरह से इंजॉय कीजिए, ड्यूटी है और वो लाइफ भी देती है जो जिसके लिए हम लोग भर्ती होते हैं।
1: जी, अच्छा, आप कुछ देर पहले मुझसे कह रहे थे कि अगर आप यूनिट में ना भी हों, अपने घर गए हों और आपके घर में कोई, तो वो खुशी आपकी यूनिट में भी मना ली जाती है?
0: फौज में ये परंपरा भी है कि अगर घर में खुशी है तो फोन कर दो और यहाँ पे पार्टी पहले हो जाती है।
1: अरे वाह, क्या बात है। मतलब आपके जितने भी दोस्त हैं वहाँ पर अपने हिस्से की पार्टी वहाँ कर लेते हैं, आपकी खुशी में शामिल हो जाते हैं, इससे बड़ी बात और कुछ नहीं। जब आपके साथ है, यूनिट में है, तब भी एंजॉय कर रही हैं, तब भी मना रही हैं, एक दूसरे को सेलिब्रेट कर रही हैं, और अगर दूर भी हैं बस बताने भर से वो आपकी खुशी में शामिल हो जाते हैं।
0: फौज की ड्यूटी 24 घंटे की ड्यूटी है, हमेशा सुख दुख उन्हीं के साथ बांट के रहना है, तो उनके लिए ही सारा चीज़ समर्पित रहता है, हम अपनी टीम के लिए ही हमेशा समर्पित रहता है।
1: अच्छा, ये बताइए कि जब घर आप जाते, वापस जब अपनी यूनिट जाते होंगे, तो माँ, घर परिवार वाले कुछ डब्बे खाने पीने का सामान देते होंगे, आपके साथ बंद कर जरूर जाता होगा?
0: वो सबके लिए होता है,
1: वो सबके लिए होता है, ऐसा तो नहीं होता ना कि एक महीने का सामान है तो एक महीने में खत्म होना है, या वो उससे पहले खत्म हो जाता है?
0: नहीं, वो सबके लिए होता है, जो टीम है हमारी वो सबके लिए होता है।
1: हाँ, तो मुझे लगता है कि जाते साथ ही सब डब्बे खाली हो जाते होंगे।
0: जरूर जरूर,
1: और बड़ी चाह होती है ये, अरे घर से आए हो, ये बताओ क्या लेकर आए हो,
0: हमेशा रहती है चाहत रहती है कि कुछ तो लेकर आया होगा।
1: अच्छा, ये बताइए, वैसे तो आप बहुत ज़्यादा अपने काम में व्यस्त रहते होंगे, लेकिन आपके साथ ऐसा कौन है जो साथ चलता है, जिसको आप ये कहते हैं कि ऐसा लगता है कोई ज़िंदगी में है, जिससे बात कर रहे हैं, जो चल रहा है साथ, कोई है ऐसा?
0: एक टीम रहता है, वो हमेशा हमारे साथ चलती है।
1: और रेडियो?
0: रेडियो भी है, वो रेडियो एक लाइफ का हिस्सा है, वो हमेशा आपको चलते रहता है, साथ साथ चलते रहता है, दिनचर्या में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, वो आपको बताते रहती है। हाँ, हमेशा
1: किसी की आवाज़ कानों तक पहुंच रही है, लेकिन आप व्यस्त हैं, अपने काम में मग्न हैं, लेकिन अपना साथी, वो साथी तो हैं ही, सहकर्मी तो हैं ही, लेकिन रेडियो भी साथ साथ है। अच्छी, बताइए कि त्यौहार कैसे मनाते हैं आप, सारे त्यौहार मनाते हैं वहाँ?
0: अगर हम यूनिट में मौजूद है तो त्यौहार हमेशा मनता है, और एकदम धूमधाम से सेलिब्रेट के साथ सभी चीज़ होते के साथ मनता है। अगर अगर घर पे नहीं है, अगर यूनिट में है, तो यूनिट में बहुत धूमधाम से त्यौहार मनता है, जिससे किसी को ये मलाल ना रहे कि मैं इस बार घर नहीं गया हूँ। हाँ। और बहुत धूमधाम से मनता है
1: जी। और खेलने का शौक कितना है आपको?
0: हम लोग उतने बड़े खिलाड़ी तो नहीं है, लेकिन खेलते हैं, सभी गेम खेलते हैं, वॉलीबॉल हो, क्रिकेट हो, बैडमिंटन हो, सभी खेल में रुचि है और सब समय मिलता है, खेलते रहते हैं हम लोग।
1: और खेल कहीं ना कहीं आपकी इच्छा शक्ति और आपके विकास, आपके शारीरिक विकास में एक अहम भूमिका निभाता है, जो हमेशा आपको सजीव रखता है।
0: फौज की नौकरी करने के लिए सबसे जरूरी है फिटनेस, और अगर आप खेल अपने नियमित हिस्सा रखते हैं तो आपकी फिटनेस भी बनी रहती है।
1: जी बहुत खूब, बहुत बढ़िया। और आपको इतने सारे दोस्तों ने सलाम भेजा है, जय हिंद सर लिखकर भेजा है, यहाँ पर दोस्त ने अपना नाम नहीं लिखा, माफ़ी चाहूँगी दोस्त, नाम लिखते तो शायद आसान हो जाता मेरे लिए पढ़ना। संदेश टू सोल्जर्स का नियमित श्रोता हूँ। तिरुचिरापल्ली विजय आपको नमस्कार भेजा है, और सेना नायक इंस्पेक्टर शिव शंकर जी को जय हिंद वंदे मातरम इन्होंने कहा है, इनकी राष्ट्र सेवा के लिए हमारा हृदयपूर्ण नमस्कार आप स्वीकार करें। आप
0: सभी को जय हिंद मेरा।
1: जी बहुत संदेश भेजने के लिए। अच्छा यहाँ पर एक संदेश आया है, नाम इन्होंने नहीं लिखा पर ये कहा है कि अगर हम फोर्सेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो कैसे, हम जब डिग्निटी की बात होती है, साहस की बात होती है, समर्पण की बात होती है, ये आम जनमानस को भी हम कैसे प्रेरित करें कि वो भी अपने जीवन में आत्मसात करें, कैसे उस स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन को अपनी जिंदगी में शामिल करें।
0: डिसिप्लिन अपने अंदर से आता है, डिसिप्लिन के लिए कहीं से ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं है, आप अपने आप को अनुशासित रखिए, डिसिप्लिन आ जाएगी।
1: और वैसे भी हमारे फौजी अपने आप में एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है, जब भी हम इनकी गाथा सुनते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से जब आप घर घर तक पहुंचते हैं तो कहीं ना कहीं मोटिवेशन डिसिप्लिन सब हमें मिल जाता है। संदेश हमारे पास आया है यहाँ पे यश शिंदे का, और इनको कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा, जय भारत वंदे मातरम इन्होंने लिख भेजा है, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त। जय हिंद लिख भेजा है मोनू सेठ ने, और इन्होंने लिखा है मत देख लेना निगाह उठाकर मेरे वतन की तरफ, वरना वक्त भी तुम्हारा होगा, जगह भी तुम्हारी होगी, बस तिरंगा हमारा होगा। बहुत खूब। अगला संदेश हम तक पहुंचा है यहाँ पर शबनम का, बीके कॉलोनी से, और बीके दत्त कॉलोनी से, और ये कह रही हैं कि जब आपको प्रथम ड्यूटी मिली और ये इन्हीं का गांव है जहाँ आपको मिली, और ये बहुत ज़्यादा खुश हैं, और बहुत ज़्यादा खुश हैं कि आप गैंगटॉक से सीधा यहाँ आकाशवाणी स्टूडियोज़ पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ पर अदा कर रहे हैं सभी दोस्त। मंसूर का यहाँ पर संदेश आया, जय हिंद। यहाँ पर पीयूष ने भेजा है, पटेरिया ने ग्वालियर से संदेश भेजा है, यहाँ पर समय कम है, संदेश पूरे नहीं पढ़ पाऊंगी, लेकिन हम शिव शंकर कुमार जी को आपके संदेशों से जरूर अवगत कराएंगे। संदेश भेजने वालों में हमारे पास बिजनौर से संदेश है, और ये है चरण कुमार का, और बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त संदेश भेजने का। शिव शंकर कुमार जी संदेश भेजा है इन्होंने, शिव पांडे लखनऊ से संदेश भेज रहे हैं, मोनिश इद्रिस ने बिलासपुर से संदेश भेजा है। संदेश भेजने वालों में बहुत सारे दोस्त हैं हमारे, हम शुक्रिया देना चाहते हैं आपका। नितिश कुमार ने हमें संदेश भेजा है, देखिए आपसे प्रेम करने वालों की फहरिस्त बहुत बड़ी है, और हम तो बहुत ज़्यादा खुश हैं इस बात को जानकर कि हमारे फौजियों से कितना प्रेम किया जाता है। अनिल कुमार का चंपावत उत्तराखंड से संदेश आया है, संदेश भेजने वालों में पंडित स्वार्षद संदेश भेज रहे हैं, धन्यवाद आप सभी दोस्तों का। संदेश भेजने वालों में से एक क्लास 12th के स्टूडेंट भी हैं जो एनडी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, अजय अहिरवार ने संदेश हमें भेजा है। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त आप सभी का संदेश भेजने के लिए। और इंस्पेक्टर शिव शंकर कुमार जी जो SSP में कार्यरत हैं, आजकल गैंगटॉक में है, आपने जिस तरह से व्याख्या की और आप SSB का नाम ऊंचा कर रहे हैं, आप देश का नाम ऊंचा कर रहे हैं। संदेश भेजने वालों में और भी कई दोस्त हैं, KKS रायपुर छत्तीसगढ़ से संदेश आया है यहाँ पर दोस्त, आपका नाम में KKS रायपुर CG इन्होंने लिखा है, क्या जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका महोदय, आप आम जनमानस में सैनिक जैसी कर्तव्य निष्ठा और श्रेष्ठ नागरिक बनने की प्रेरणा कैसे दी जा सकती है, इस पर हमने भी बात की है। अगर किसी का नाम मैं यहाँ पर नहीं ले पाई हूँ तो आप सभी से माफी चाहूंगी। अवधेश कुमार का औरंगाबाद बिहार से संदेश है, सुमन कर्माकर का सोनितपुर आसाम से संदेश है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके संदेश हम तक पहुँचे, इसके लिए हम आपका धन्यवाद देना चाहते हैं, और धन्यवाद देना चाहते हैं इंस्पेक्टर शिव कुमार जी का जो कार्यरत हैं गैंगटॉक में और सशस्त्र सीमा बल में कार्यरत हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आकाशवाणी के स्टूडियोज़ में आने के लिए और हमें SSB से जुड़ी हुई इतनी सारी बातों से अवगत कराने के लिए।
0: धन्यवाद सभी को, सभी को जय हिंद। मैं देश के युवाओं से भी इतना कहना चाहूँगा, अपने सपनों पर भरोसा रखिए और मेहनत करते रहिए, सफलता एक दिन में नहीं मिलती लेकिन एक दिन ज़रूर मिलती है। सभी जो भी देश के युवा है, देश के सेवा और सुरक्षा बल में आना चाहते हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि

0: अपने फिटनेस को और अनुशासन को बनाए रखिए, आप जरूर चयनित होइएगा। अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा कि सबके लिए कि अपनी जिम्मेदारी और पूरी ईमानदारी के साथ काम करते रहिए, ये हमारी बात है। सभी को जय हिंद।
1: जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद इंस्पेक्टर शिव शंकर कुमार जी SSB से हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद होने के लिए और इतनी सारी बातें साझा करने के लिए।

0: गृहणन्। एतैः सह पुदुच्चेरी राज्यस्य उपराज्यपालः, अण्डमान निकोबार द्वीप समूहस्य उपराज्यपालः, लक्षद्वीपस्य प्रशासकः अथ च विविध मन्त्रालयानां वरिष्ठाधिकारिणः अपि उपस्थिताः आसन्। उपवेशने उपस्थिताः सदस्याः स्वास्थ्य निधि वितरणम्, आधारभूत संरचना, पर्यावरण संरक्षणम् अथ च क्षेत्रीय सुरक्षा सम्बद्धेषु विषयेषु सहकारी संघीयतायाः महत्वे च बलं प्रदत्तवन्तः। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः वन्दे मातरमिति राष्ट्रिय गीतस्य सम्पूर्ण गानस्य स्थाने केवलं पद्यद्वयस्य गानसन्दर्भे कांग्रेस कार्यसमित्याः निर्णयस्य तीव्रां निन्दां कृतवान्। वार्ताहरैः सह संलपन श्रीशाहः अकथयत् यत् एषः निर्णयः संसदा निर्मितस्य विधेः प्रत्यक्षम् उल्लङ्घनम् अथ च राष्ट्रविरोधि कृत्यं वर्तते। गृहमन्त्री प्रतिपादितवान् यत् सप्तत्रिंशदधिक एकोनविंशतिशततमे वर्षे कांग्रेसपक्षेण तुष्टीकरणार्थं वन्दे मातरं गीतं भागद्वये विभक्तम्। श्रीशाहः आरोपितवान् यत् राहुलगान्धिनः नेतृत्वे कांग्रेसदलं पुनः एकवारं तुष्टीकरणस्य मार्गम् अनुसरति।
1: मैं देश की जनता को अपील करना चाहता हूं कि एक बार इस देश ने गलती करी थी वंदे मातरम के दो टुकड़े होने देने की, और एक गलती के गंभीर परिणाम हमने भुगते हैं। अब देश की जनता एकजुट हो और कांग्रेस पार्टी के इस फैसले के खिलाफ आवाज बुलंद करे कि अब इस देश में तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चलेगी। आजादी के 80 साल के बाद 1937 में जो फैसला कांग्रेस ने किया था, जिसको नरेंद्र मोदी जी ने सुधारा है, उसके सामने का कोई विरोध इस देश की जनता नहीं सहन करेगी।
0: संस्कृत वार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। झारखंड उच्च न्यायालयः एकादशतः त्रयोदश जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षायाः अथ च खाद्य सुरक्षा अधिकारी नियुक्तेः निरस्तीकरण सम्बन्धे राज्य सर्वकारस्य अधिसूचनायाम् अग्रिम आदेश पर्यन्तं स्थगनादेशं प्रायच्छत्। न्यायमूर्तिना दीपक रोशनेन याचिकानां श्रवणावसरे स्पष्टीकृतं यत् विधिप्रक्रियां नैसर्गिक न्याय सिद्धान्तान् च उल्लङ्घ्य पूर्वं नियुक्ताः अधिकारिणः पदात् निष्कासयितुं न शक्यन्ते। न्यायालयेन सर्वकारः सहैव झारखण्ड लोकसेवा आयोगः आगामिवादश्रवणाय सितम्बर मासस्य 15 दिनाङ्कं यावत् स्वप्रतिवचनं दातुम् आदिष्टौ। जम्मूकश्मीरस्य कठुआ जनपदस्य सीमाक्षेत्रेषु संदिग्ध व्यक्तीनां गमनागमनस्य सूचनां प्राप्य सुरक्षाबलैः अद्य सघनम् अन्वेषणाभियानं प्रारब्धम्। आकाशवाण्याः जम्मू संवाददात्रे वृत्तानुसारम् एतत् अभियानम् उधमपुर कठुआ सीमावर्तिषु बिलावर क्षेत्रस्य वनभागेषु च प्रचालितम्। स्थानीय जनानाम् अनुसारं बुधवासरे चिररात्रौ बिलावर क्षेत्रस्य एकस्मिन् ग्रामे अज्ञात व्यक्तिभिः कस्यचित् गृहस्य द्वारं शब्दापितम्। पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीरे निवसन्तः जनाः सम्पूर्णे क्षेत्रे विरोध प्रदर्शनानि तीव्रीकृतवन्तः। अनेन पाकिस्तानस्य शासन व्यवस्थायाः वास्तविकता पुनः प्रकाशिता। पीओजेके इत्यस्मिन् क्षेत्रे विरोध प्रदर्शनानां विस्तारः निरन्तरं वर्धते, येन इस्लामाबादस्य तत्कथनं निरस्तं भवति यत् अशान्तिः केवलं रावलकोट क्षेत्रे एव सीमिता अस्ति। जीएएसी इत्यनया कार्यसमित्या इस्लामाबादस्य तत् कथनं निराकृत्य कथितं यत् विरोध प्रदर्शनानि अधुना सम्पूर्णे अधिकृत क्षेत्रे प्रसृतानि सन्ति। बैडमिंटन क्रीडायां भारतस्य महिला युगल क्रीडिके त्रिसा जौली अथ गायत्री गोपी चन्दः च नवदिल्ल्याम् आयोजितायां बीडब्ल्यूएफ विश्व प्रतिस्पर्धायाः प्रागुपान्त्य चरणे प्रविष्टवत्यौ। इति वार्ताः।
2: आयुष्वाणी ಪ್ರತಿ ಸೋಮವಾರ, ಬುಧವಾರ ಹಾಗೂ ಶನಿವಾರ ರಾಜ್ಯವ್ಯಾಪಿ ಪ್ರಸಾರದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ 8:30 ಎಫ್ಎಂ ರೈನ್ಬೋ 101.3 ಮೆಗಾಹರ್ಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ, ಬೆಳಗ್ಗೆ 8:55 ಆಕಾಶವಾಣಿ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿವಿಧ ಭಾರತಿ 102.9 ಎಫ್ಎಂನಲ್ಲಿ, ಬೆಳಗ್ಗೆ 7:45

0: ಆಕಾಶವಾಣಿ ಎಫ್ಎಂ ರೇನ್ಬೋ 101.3 ಮೆಗಾಹರ್ಟ್ಸ್ ಮ್ಯೂಸಿಕಲಿ ಯೋರ್ಸ್.
1: ಜಗಮಲಗೋ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಕನಸುಗಳಿಗೆ ಸುವಾಲಿ,
2: ರಾಗಗಳ ಝರಿಯಲ್ಲಿ ನೆನಪುಗಳ ತಂಗಾಳಿ,
1: ಮನದಾಳದ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಹಿತವಾದ ಸಾಹಿತ್ಯ,
2: ಭಾವಗಳ ಭೋರ್ಗರೆತಕ್ಕೆ ಸ್ವರಗಳ ಸಾಂಗತ್ಯ,
1: ಸಿಹಿ ನಿದ್ರೆಗೆ ಜಾರೋ ಮುನ್ನ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟೋಣ ರೆಕ್ಕೆ,
2: ಮೃದು ಮಧುರ ಹಾಡುಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಾರೋಣ
1: ಕನಸಿನ ಲೋಕಕ್ಕೆ.
2: ಪ್ರತಿ ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆಗೆ
1: ಕನಸಿನ ಲೋಕ, ಕನಸುಗಳ ಕಣ್ತರಿಸೋ ಮಧುರ ತಾಣ.
3: ಸಮಯ ಆಗಿದೆ 8:44. ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಆಲಿಸೋಣ ದೆಹಲಿ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ವಾರ್ತಾ ಸಂಚಿಕೆ. ವಾರ್ತಾ ಸಂಚಿಕೆಯ ನಂತರ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಭೇಟಿಯಾಗ್ತೀನಿ ಸುಕೂನ್ ಕೆ ಪಲ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ.
4: ನಮಸ್ಕಾರ. ಆಕಾಶವಾಣಿ ಸೇ ಸಮಾಚಾರ ಸಂಧ್ಯಾ ಕೆ ಸಾಥ್ ಮೈ ಮುಕೇಶ್ ಕುಮಾರ್. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बताया, मंत्रिमंडल ने लद्दाख में जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की एक पीठ स्थापित करने का निर्णय लिया. सर्वोच्च न्यायालय ने देश भर में छात्र प्रदर्शनों के दौरान हिंसा की जांच के लिए 5 सदस्यीय समिति गठित की. झारखंड उच्च न्यायालय ने 11वीं से 13वीं झारखंड लोक सेवा आयोग और खाद्य सुरक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षाएं रद्द करने के राज्य सरकार के निर्णय पर रोक लगाई. सरकार ने 31 अक्टूबर तक 10 लाख टन कच्ची चीनी के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति दी. केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को वर्ष 2047 तक समावेशी और विश्व स्तरीय शहर बनाने के लिए मास्टर प्लान जारी किया. बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर बांग्लादेश के 23वें राष्ट्रपति निर्वाचित. और महिला हॉकी विश्व कप में इंग्लैंड के साथ गोल रहे ड्रॉ खेलने के बाद भारत ने दूसरे दौर में प्रवेश किया. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख में जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की एक पीठ स्थापित करने को स्वीकृति दे दी है. गृह मंत्री अमित शाह ने आज सोशल मीडिया के माध्यम से इसकी घोषणा की. उन्होंने कहा कि इस निर्णय से लद्दाख के दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों के लिए न्याय तक पहुंच आसान हो जाएगी. श्री शाह ने कहा कि सरकार लद्दाख के सर्वांगीण विकास और संवैधानिक सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है. सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व न्यायाधीश आर सुभाष रेड्डी की अध्यक्षता में 5 सदस्यों की उच्च स्तरीय

0: जांच समिति गठित की है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यह समिति पिछले महीने नई दिल्ली के जंतर मंतर और देश की अन्य जगहों में विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के आरोपों की स्वतंत्र जांच करेगी।
1: समिति में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा, दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश शैलेंद्र कौर, सीबीआई के पूर्व निदेशक ऋषि कुमार शुक्ला और मेघालय के सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक एलआर बिश्नोई भी शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायाधीश जॉय माल्या बागची और न्यायाधीश वी मोहना की खंडपीठ ने कहा कि उच्च स्तरीय जांच समिति कुछ मुद्दों पर प्राथमिकता के आधार पर काम करे, जिनमें सबसे अहम मुद्दा महिला प्रदर्शनकारियों के खिलाफ लक्षित हिंसा और छेड़छाड़ की कथित घटनाओं से जुड़ा है। अदालत ने समिति से कहा कि वो मुद्दों का लगातार और समय समय पर आकलन करे और अपनी अंतरिम रिपोर्ट समय पर सौंपे। समाचार कक्ष से मुनीश शर्मा।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने विद्यार्थियों के लिए सीबीएसई की त्रिभाषा नीति के कई पहलुओं पर सवाल उठाए हैं। इनमें पाठ्य पुस्तकों और शिक्षकों की उपलब्धता, विद्यार्थियों पर बोझ और स्कूलों में इस नीति को लागू करने का तरीका शामिल है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायाधीश न्यायमूर्ति जय माल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए सीबीएसई की त्रिभाषा नीति को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। झारखंड उच्च न्यायालय ने आज 11वीं से 13वीं झारखंड लोक सेवा आयोग परीक्षा और खाद्य सुरक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा के अंतर्गत नियुक्तियों को रद्द करने के झारखंड सरकार के निर्णय पर रोक लगा दी है। न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक रोशन ने सरकार की परीक्षा रद्द करने की अधिसूचना को चुनौती देने वाली 3 अलग अलग याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए ये फैसला सुनाया। एक रिपोर्ट।
2: न्यायालय ने निर्देश दिया कि चुने गए उम्मीदवारों को बहाल किया जाए। न्यायालय ने कहा कि उचित प्रक्रिया और न्याय के सिद्धांतों का पालन किए बिना उन्हें हटाया नहीं जा सकता। न्यायालय ने राज्य सरकार और झारखंड लोक सेवा आयोग से जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 15 सितंबर को होगी। 2 याचिकाएं 11वीं से 13वीं झारखंड लोक सेवा आयोग परीक्षा और नियुक्तियों को रद्द करने को चुनौती देती है, जबकि तीसरी याचिका खाद्य सुरक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा से संबंधित है। याचिकाकर्ताओं के अनुसार 11वीं से 13वीं झारखंड लोक सेवा आयोग परीक्षा के जरिए चुने गए 342 उम्मीदवार अभी नौकरी कर रहे हैं। झारखंड सरकार ने 22 परीक्षाओं को रद्द करने, 6 परीक्षा प्रक्रियाओं को रोकने और 17 परीक्षाओं को जांच के दायरे में लाने की अधिसूचना जारी की थी। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
0: गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक में देश के विकास में दक्षिण भारत के योगदान की सराहना की है। तमिलनाडु के महाबलीपुरम में बैठक को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि दक्षिण भारत ने देश के सूचना प्रौद्योगिकी, ऑटोमोबाइल, फार्मास्यूटिकल्स और अवसंरचना विकास के सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि यही कारण है कि दक्षिण में भारी मात्रा में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भी आया है।
3: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि दक्षिण भारत की संपूर्ण विकास यात्रा 3 स्तंभ, उच्च साक्षरता दर, प्रशिक्षित मानव संसाधन और गहरे समुद्र के उपयोग में तकनीकी विशेषज्ञता पर टिकी है। इन्हीं 3 स्तंभों ने दक्षिण भारत को देश के विकास में सबसे बड़ा योगदानकर्ता बनाया है। उन्होंने कहा कि 2014 से क्षेत्रीय परिषद को एक सार्थक मंच में बदलने के प्रयास किए जा रहे हैं। श्री शाह ने बताया कि उत्तर भारत में नदी जल बंटवारे से संबंधित 8 मुद्दों में से 5 मुद्दे ब्रिटिश काल से पहले से ही चले आ रहे थे। उन्होंने कहा कि ब्रह्मपुत्र से लेकर कावेरी और गोदावरी तक प्रमुख नदियों को जोड़ने से यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि भारत को अगले 100 वर्षों तक पानी की कमी का सामना न करना पड़े। चेन्नई से आर चिदम्बर नाथन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने इस वर्ष 31 अक्टूबर तक 10 लाख मीट्रिक टन कच्ची चीनी के शुल्क रहित आयात को अनुमति दे दी है। महानिदेशक विदेश व्यापार ने आज जारी एक सूचना में कहा कि कुछ शर्तों के साथ 10 लाख मीट्रिक टन कच्ची चीनी का शुल्क के बगैर आयात किया जा सकेगा। ये फैसला त्योहारों के मौसम से पहले लिया गया है, जब आम तौर पर चीनी की मांग बढ़ जाती है। घरेलू बाजार में आपूर्ति को लेकर चिंता के बाद ये निर्णय लिया गया। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश है। सरकार ने आज दिल्ली मास्टर प्लान 2047 का अनावरण किया। ये प्लान दिल्ली को पर्यावरण अनुकूल और समावेशी राजधानी बनाने के लिए दीर्घकालिक ढांचा प्रदान करता है। वर्ष 2047 तक विकसित भारत की परिकल्पना के अनुरूप दिल्ली मास्टर प्लान का उद्देश्य राजधानी को विश्व स्तरीय, समावेशी और आर्थिक रूप से जीवंत शहर बनाना है।
4: दिल्ली मास्टर प्लान 2047 में दो तरीके अपनाए गए हैं, मौजूदा विकसित क्षेत्रों के लिए क्षेत्र आधारित पुनर्विकास और नए विकसित होने वाले क्षेत्रों के लिए सड़क मार्ग आधारित योजना। मौजूदा क्षेत्रों में परिवहन केंद्रित विकास, मिश्रित उपयोग वाली जगहों और बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने पर ध्यान दिया जाएगा। वहीं नए क्षेत्रों में जुड़े हुए सड़क नेटवर्क विकसित किए जाएंगे। इसके लिए लैंड पूलिंग और कम घनत्व वाले क्षेत्रों का उपयोग किया जाएगा। इन दोनों तरीकों से जमीन का बेहतर उपयोग, शहर के अंदर और दूसरे शहरों से बेहतर संपर्क तथा टिकाऊ और व्यवस्थित विकास सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। योजना में लोगों को शहरी विकास के केंद्र में रखा गया है। इसमें खास तौर पर युवाओं, महिलाओं, बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों की जरूरतों और उनकी आकांक्षाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सरकार ने दिल्ली मास्टर प्लान 2047 का आज अनावरण किया। ये प्लान दिल्ली को पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए तैयार किया गया है। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि आने वाले वर्षों में राष्ट्रीय राजधानी में लगभग 30 से 40 लाख नए फ्लैट जोड़े जाएंगे। इसका उद्देश्य शहर की विशाल आबादी की आवास मांग पूरा करना है। भारत और जापान ने रक्षा सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। नई दिल्ली में आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी की बैठक में यह निर्णय लिया गया। दोनों देशों के बीच समुद्री सुरक्षा सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किए गए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जापान के कुमामोतो में आए भीषण भूकंप पर भारत की संवेदना और एकजुटता व्यक्त की।
5: दोनों देशों के संबंध साझे लोकतांत्रिक मूल्यों, परस्पर सम्मान और एक पुराने सिविलाइज्ड कनेक्ट पर आधारित हैं। अगले वर्ष हम अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस के 75 ईयर्स मनाएंगे और इन वर्षों के दौरान हमारी यह दोस्ती सिर्फ हमारे दोनों देशों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्टेबिलिटी, रेजिलियंस और रूल्स बेस्ड ऑर्डर का एक कॉर्नर स्टोन बन गई है।
0: श्री कोइजुमी ने कुमामोतो में भूकंप से प्रभावित लोगों के प्रति भारत की संवेदना पर आभार व्यक्त किया। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लागू कर रहा है। इसका उद्देश्य देश में ग्रीन हाइड्रोजन का एक मजबूत तंत्र बनाना है और भारत को इसके उत्पादन तथा निर्यात के लिए एक संभावित ग्लोबल हब के तौर पर स्थापित करना है। इस मिशन को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जनवरी 2023 में स्वीकृति दी थी। इसके लिए 2029-30 तक की अवधि के लिए शुरुआती तौर पर 19,744 करोड़ रुपए का बजट रखा गया था। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में एनटीपीसी नवीकरणीय ऊर्जा के कार्यकारी निदेशक डीएमआर पांडा ने बताया कि अभी हाइड्रोजन से चलने वाली 5 बसों में हाइड्रोजन ईंधन भरा जा रहा है और हर बस एक बार फुल टैंक भरने पर 720 किलोमीटर तक चल सकती है। उन्होंने कहा कि हाइड्रोजन बनाने में भूजल यानी ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल नहीं होता।
6: हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलिसिस से बनता है एंड इसके लिए पानी चाहिए बहुत ज्यादा। वाटर रिसोर्स को कंजर्व करने के लिए हमने जो ट्रीटेड सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट निकलता है पानी, उसी को फर्दर ट्रीटमेंट करके उसी हाइड्रोजन से बसेस चला रहे हैं। बनाने का टाइम में कोई प्रदूषण नहीं, वाटर कंजर्व कर रहे हैं और जो बसेस चलते हैं एग्जॉस्ट से कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बल्कि वाटर वेपर निकलता है।
0: भारत कल पुणे में 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया करेंगे। बैठक का विषय लचीले भविष्य के लिए नवाचार, सहयोग और परिवर्तन ICT है। ये आयोजन ब्रिक्स सदस्य देशों को उभरती प्रौद्योगिकियों, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, भविष्य के नेटवर्क, साइबर सुरक्षा, क्षमता निर्माण और समावेशी डिजिटल कनेक्टिविटी पर विचारों का आदान प्रदान करने के लिए एक मंच प्रदान करेगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर आज बांग्लादेश के 23वें राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। 78 वर्षीय नेता ने देश की संसद जातीय संसद में हुए राष्ट्रपति चुनाव में 255 वोट हासिल किए। उन्होंने पूर्व सेना अधिकारी ओली अहमद को हराया। ओली दक्षिणपंथी बांग्लादेश जमाते इस्लामी और नेशनल सिटीजन पार्टी के नेतृत्व वाले 11 दलीय विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार थे। ओली अहमद को 88 वोट मिले। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शन लगातार बढ़ता जा रहा है। इससे पाकिस्तान का ये दावा झूठा साबित हो रहा है कि अशांति केवल रावलकोट तक ही सीमित है। संयुक्त अवामी कार्रवाई समिति JAAC ने पाकिस्तान के इस दावे को खारिज करते हुए कहा है कि विरोध प्रदर्शन अब पूरे अधिकृत क्षेत्र में फैल चुके हैं। कोलंबिया ने 10 अगस्त को आए भूकंप से प्रभावित क्षेत्रों में 30 दिन के लिए आर्थिक, सामाजिक और पारिस्थितिक आपातकाल की घोषणा की है। राष्ट्रपति अलेबाल्डो डे ला एस्प्रियला ने बोगोटा में कैबिनेट बैठक के बाद इस आदेश पर हस्ताक्षर किए। कोलंबिया की राष्ट्रीय आपदा जोखिम प्रबंधन इकाई ने बताया कि आज सवेरे तक 7.4 तीव्रता के भूकंप में 319 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4,469 लोग घायल हैं और 260 लोग लापता हैं। भारत में नेपाली गोरखा समुदाय ने आज नेपाली भाषा को संवैधानिक मान्यता मिलने की 35वीं वर्षगांठ मनाई। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने गोरखा समुदाय को बधाई देते हुए कहा कि भारत एक बहुभाषी देश है। उन्होंने कहा कि विविधता में एकता का बंधन हर भारतीय को मजबूती से जोड़ता है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
7: पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग पहाड़ तथा तराई डुअर्स में आज 100 से अधिक स्थानों पर नेपाली भाषा मान्यता दिवस भव्य रूप से हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। हजारों युवा, दोनों पुरुष, महिला तथा प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने पारंपरिक परिधानों में शोभा यात्रा, साहित्यिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लिया। रोशनी छेत्री, आकाशवाणी समाचार, कश्यंग।
0: और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
8: घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांक आज कई दिन बाद बढ़त के साथ बंद हुए, जिसमें सभी सेक्टर में व्यापक खरीदारी देखी गई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 0.82% यानी 628 अंक बढ़कर 77,538 पर पहुंच गया। वहीं निफ्टी 0.64% यानी 154 अंक ऊपर चढ़कर 24,232 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 5 पैसे मजबूत होकर 95.71 पर बंद हुआ।
0: एम्स्टरडैम में FIH महिला हॉकी विश्व कप में आज भारत और इंग्लैंड का मुकाबला गोल रहित बराबर रहा। इस ड्रॉ के साथ भारतीय टीम टूर्नामेंट के अगले दौर में पहुंच गई है। और दिल्ली में BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद ने महिला डबल्स के अंतिम आठ में जगह बना ली है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बताया, मंत्रिमंडल ने लद्दाख में जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की एक पीठ स्थापित करने का निर्णय लिया। सर्वोच्च न्यायालय ने देश भर में छात्र प्रदर्शनों के दौरान हिंसा की जांच के लिए 5 सदस्यीय समिति गठित की। झारखंड उच्च न्यायालय ने 11वीं से 13वीं झारखंड लोक सेवा आयोग और खाद्य सुरक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षाएं रद्द करने के राज्य सरकार के निर्णय पर रोक लगाई। सरकार ने 31 अक्टूबर तक 10 लाख टन कच्ची चीनी के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति दी। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को वर्ष 2047 तक समावेशी और विश्व स्तरीय शहर बनाने के लिए मास्टर प्लान जारी किया। और महिला हॉकी विश्व कप में इंग्लैंड के साथ गोल रहित ड्रॉ खेलने के बाद भारत ने दूसरे दौर में प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
9: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम शगुन चोपड़ा विद द न्यूज एट 9। The headlines. Union Cabinet decides to set up a bench of Jammu and Kashmir High Court at Ladakh, announces Home Minister Amit Shah. Supreme Court forms 5-member panel to investigate violence during student protest across the country. Jharkhand High Court stays state government's decision to cancel 11th to 13th JPSC and Food Safety Officer examinations. Government allows duty-free imports of 10 lakh tons of raw sugar until 31st of October. Centre unveils Delhi Master Plan 2047 to transform national capital into inclusive and world-class city. Bangladesh Nationalist Party leader Mirza Fakhrul Islam Alamgir elected as country's 23rd president. And in hockey, Indian women's team qualifies for second round after a goalless draw with England in Pool D match of World Cup in the Netherlands. And now the news in detail. Union Cabinet has approved the establishment of a bench of the High Court of Jammu and Kashmir in Ladakh. Union Home Minister Amit Shah today announced this, sharing a social media post. Mr. Shah said that the decision will significantly enhance access to justice for citizens living in remote areas of Ladakh by reducing the time required to avail themselves of the legal services they are entitled to. He added that government is fully committed to the all-round development of Ladakh and to ensure constitutional safeguards. The Supreme Court has constituted a five

0: This is Akashvani. Good evening and welcome to Market Mantra. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Nikhil Kumar.
1: नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र कार्यक्रम में कारोबारी खबरों के साथ एक बार हम फिर से हाजिर हैं। सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक के मुख्य आर्थिक समाचारों पर।
0: बेंचमार्क डोमेस्टिक स्टॉक मार्केट इंडिसीज रीबाउंड, सेंसेक्स जंप्स ओवर 600 पॉइंट्स, निफ्टी सेटल्स अबव 24,200। India's core industries grow by 5.4% in July this year on an annual basis and global crude oil prices rise over 3%.
1: घरेलू शेयर बाजार आज बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स में 600 से अधिक अंकों का उछाल और निफ्टी 24,200 से ऊपर पहुंचा। भारत के औद्योगिक सूचकांक में वार्षिक आधार पर इस साल जुलाई में 5.4% की बढ़त और वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में 3% से अधिक की तेजी आई।

0: And before we take our main stories in detail, here is an important disclaimer. The views and opinions expressed by the experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: और बढ़ते हैं अब खबरों की तरफ. घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांक आज कई दिन बाद बढ़त के साथ बंद हुए, जिसमें सभी सेक्टर में व्यापक खरीदारी देखी गई. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 0.82% यानी 628 अंक बढ़कर 77,538 पर पहुंच गया. निफ्टी 0.64% यानी 154 अंक ऊपर चढ़कर 24,232 पर बंद हुआ. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के व्यापक बाजार में मिड कैप सूचकांक में 0.4% की बढ़त हुई, जबकि स्मॉल कैप सूचकांक 0.7% ऊपर आ गया. सेंसेक्स ने लगातार 4 दिनों की गिरावट का सिलसिला तोड़ा, जबकि निफ्टी ने लगातार 7 दिनों की गिरावट का ट्रेंड खत्म किया. इससे पहले अमरीकी बॉन्ड यील्ड में गिरावट के बाद बाजार गैप अप के साथ खुले. दोनों सूचकांक ज्यादातर समय तक एक दायरे में ही कारोबार करते रहे.
0: Benchmark domestic equity indices ended in positive territory today, supported by broad-based buying across sectors. Sensex surged by 628 points, 0.82%, to close at 77,538. Nifty climbed 154 points, 0.64%, to settle at 24,232. In the broader market, at the National Stock Exchange, the mid-cap 100 index gained 0.4%, while the small-cap 100 index increased by 0.7%. Sensex curbed its four-day losing streak, while Nifty snapped its seven-day downward trend. Earlier, the markets opened with a gap up following a decline in US bond yields. Both the stock market indices traded within a range for most of the session before ending with favorable gains.
1: सेंसेक्स में शामिल 30 में से 26 कंपनियों के शेयरों में आज बढ़त देखी गई. सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली कंपनियों में एटर्नल ने 2.3%, कोटक महिंद्रा बैंक और आईटीसी ने 1.6% और बजाज फाइनेंस ने 1.5% की बढ़त दर्ज की. वहीं दूसरी तरफ टाटा स्टील में 0.4%, इंडिगो और एचसीएल टेक में लगभग 0.2% की गिरावट आई, जबकि टाइटन में मामूली सुस्ती देखी गई.
0: इन सेक्टोरल इंडिसेस ऑन द बॉम्बे

0: Stock Exchange. All the sectors registered gains except hospitals, which dropped by 0.6%. Among the top gainers, realty climbed 1.9%, FMCG as well as focused IT gained 1%, and IT added 0.9%. The overall market breadth at the Bombay Stock Exchange was positive, as shares of 2,450 companies advanced, 1,874 companies declined, and 225 companies remained unchanged.
1: अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज एक डॉलर की तुलना में 5 पैसे मजबूत होकर 95.71 रुपए पर बंद हुआ. डॉक्टर एसपी शर्मा, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है.
2: जी शुक्रिया.
1: एसपी, अगर आज के मार्केट को हम देखते हैं तो कई दिनों की गिरावट का सिलसिला टूटा है. सेंसेक्स और निफ्टी में एक ऐसी बढ़त देखी गई जिसने जरूर निवेशकों को राहत पहुंचाई होगी. आपको क्या लगता है कि कौन से ऐसे बड़े कारण रहे जिनकी वजह से हमें यह बदलाव देखने को मिला?
2: देखिए, ग्लोबली तो बहुत ही अनसर्टेनिटीज हैं जो मार्केट के किसी भी पक्ष में फेवर में नहीं है. क्रूड ऑयल प्राइसेस काफ़ी हाई स्प्रे में है, और यूएस का जो टसल है ईरान के साथ उसमें भी जो वो बरकरार है. लेकिन इस दौर में जो भारत में जो इक्विटी का जो अभी हमने देखा कि एक स्ट्रांग रीबाउंड देखा है, तो उसके पीछे एक तो हमारा जो हमारी जो कॉरपोरेट अर्निंग्स हैं, और दूसरा जो हमारे फंडामेंटल्स हैं, और तीसरा जो एक स्टेबिलिटी हमने देखी है कि इन्फ्लेशन में भी, कि आने वाले टाइम में शायद जो रेट पॉज है वो कंटिन्यू रहेगा. कोई ऐसी संभावना हम नहीं देखेंगे कि इन्फ्लेशन में बढ़ोतरी हो, क्योंकि इन्फ्लेशन जो एक पहले एक्सपेक्टेड था कि भाई शायद ये 6%, 5%, 6% उससे ऊपर चला जाएगा जिस तरीके के क्रूड के प्राइसेस बढ़ रहे थे. लेकिन अभी उनमें भी जो इन्फ्लेशन ट्रैजेक्टरी है वो बहुत ही स्लोली वो सेटल हो रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है. तो ओवरऑल जो मार्केट्स है वो एक कंसोलिडेटिंग मोड में है, और जिसमें जो बायस है, अपवर्ड बायस है, जो मार्केट्स है वो किसी भी अच्छी न्यूज़ के ऊपर ऊपर जाना चाहते हैं. लेकिन जो ग्लोबल हेडविंड्स हैं वो मार्केट को काफ़ी प्रभावित करती है, जिससे मार्केट अपना एक पोटेंशियल ट्रैजेक्टरी नहीं ले पाती है. तो कुल मिला के जो मार्केट्स है वो एक रेंज बाउंड स्थिति में है. मार्केट जाके 25,000 के लगभग जाके फिर उनमें कुछ करेक्शन शुरू होती है, फिर लगभग कोई जब 24 से नीचे खिसकने लगती हैं तो फिर वापस कोई रीबाउंड आता है. तो एक ये जो 1,500 का जो एक रेंज है निफ्टी में, वो मार्केट को सपोर्ट कर रहा है और मार्केट को वापस उसी दरमियान रखे हुए है.
1: इसमें प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है आगे चल करके?
2: देखिए, इसमें प्रॉफिट बुकिंग ऑलरेडी जो हो रही है, कंसोलिडेशन मोड में है, प्रॉफिट बुकिंग होती है, चर्निंग होती है, एक सेक्टर से निकल के लोग दूसरे में जाते हैं, और कई बार ब्लू चिप से निकल के स्मॉल कैप में जाते हैं, स्मॉल से निकल के ब्लू चिप में जाते हैं. तो मार्केट की जो कंडीशंस हैं, जो उस टाइम पे एक बढ़त आती है कि कई बार बहुत सारे जो ब्लू चिप्स हैं बहुत अच्छे चलते हैं तो लोग प्रॉफिट बुक करके अपना कुछ मिड कैप पर रुक करते हैं. तो इस तरीके से मार्केट का जो ये 1,500 के निफ्टी का जो अभी पीछे हम 1.5 साल से देख रहे हैं कि उसी रेंज में मार्केट घूम रही है, तो एक तरीके से लोगों का कॉन्फिडेंस भी बिल्ड कर रही है कि मार्केट में कोई मेजर करेक्शन, इतने हालात खराब होने के बावजूद भी ग्लोबल लेवल पे कोई मेजर करेक्शन नहीं आई है, मार्केट में एक संतुलन बना रहा. जब मार्केट्स नीचे जाती हैं तो कोई कुछ पॉजिटिव्स आते हैं तो मार्केट्स वापस रिबाउंड कर लेती हैं, जब मार्केट्स ऊपर जाते हैं तो कुछ ना कुछ उधर अनाउंसमेंट आ जाता है, ट्रंप साहब की वजह से कुछ ऐसी अनाउंसमेंट आती है जो यूएस ईरान के बीच में टसल चल रही है उसको लेके, और नेगेटिव कोई न्यूज आती है तो मार्केट्स वहां पे करेक्शन खा जाती है. तो कुल मिला के जो स्थिति है वो एक मैं ये कहूंगा कि एक वॉलेटिलिटी बट बैलेंस्ड approach.
0: Okay. Dr. Sharma, the rebound that you mentioned is also short covering in the markets after a 4-day losing streak. We saw again an uprise in the markets today. DIIs were the net buyers to the tune of 3,538 crore rupees in the equity indices. The story also says that there was a pullback in the US treasuries after a fall yesterday. So we're talking about the 10-year yield on the U.S. Bond. You have the bill notes and bonds, 1 to 6 months, the short-term treasuries, 1 to 2 years as well. There was a pullback today. What is the impact of what's going on in the bond market in the U.S. having on India and India's

0: stock market, because the national debt of the US has already crossed $40 trillion. So how do you see the hedge funds looking at India? They're still the net sellers, but it has an impact on the way our stock market is moving.
1: Yes, Arjun, because US market is not that much stable. Extreme volatility is existing because of the dwindling fundamentals. Sometimes the inflation becomes very sticky at the higher level and the growth is decelerating, and bond prices are very, very volatile, and dollar index is also volatile. So market in US is not taking any strong direction either side. But this volatility in the treasury and rebound because of the announcement that there may be some rise in the interest rate in the coming times, as majority of the people are in favor of increasing the interest rate. So again, the bond yields are becoming strong, and that's why the volatility is observed in the market. So nothing is stable in the US market. Either the fundamentals of the economy, like their manufacturing growth or the employment creation, these things are not stable. These are very volatile month after month. So creating a confusion or uncertainty in the minds of the investors. So that's why no direction is there from the US market, but remains extremely volatile. And going forward, I believe the market mood will remain volatile, because there is no discussion on peace between Iran and US, and these developments are deepening. That may cause more volatility in the global markets.
0: When we look at the stock market, Sensex went up by 0.82%, and usually we see that the small cap and the mid cap actually go up even more, but they went up only marginally today. What is the mood of the traders right now? Do you see the markets moving similarly tomorrow, or do you expect profit booking after short covering today where the markets went up, but do you see them booking profits tomorrow?
1: Yes, Arjun, majorly traders are in a consolidating mode. They are in the range bound trajectory. They book profit at the higher level and again enter in the market at the lower levels, because market is now providing the clear direction that there is no significant upside beyond 25,000 or 25,400, but and there is no deceleration after the 23,500. So market is in a very secure zone of this 1000 and 1500 Nifty. So that's why sometimes this can be a balanced approach, that market is not moving either side or upside or downside significantly, but remains in a range. That's why the profit booking happens in the sometimes in the mid, small cap, sometimes in the mid cap, sometimes by the FIIs and sometimes by the DIIs. They again enter at some opportune time, and then they book profits at some point of time when they see that profitability is coming in their invested portfolios.
0: Do you think that the fundamentals of India's economy is a factor in this pullback in the markets right now? Because the core industrial data has also come out, which we will be reading about soon for the month of July, where core industries has gone up by 5.4%. Do you see the fundamentals and, of course, the first quarterly earnings of companies also playing a role, where investors are not looking really to sell that quickly?
1: Yes, Arjun, I already mentioned that corporate earnings are very supportive and fundamentals are a great support for the stock market behavior. As I mentioned earlier also in my earlier interviews with the All India Radio, that markets are in a very strong mood. But the global developments are impacting the sentiments of the markets and undermining the performance of the market. When there is some positive discussion at the global level between US and Iran, markets rebound significantly. So that is the potential of the market, that indicates that if there is peace at the global level, then markets can rebound significantly and make a new high immediately. Yes.
0: In more news, a combined index of core industries, ICI, recorded a cumulative growth of 5.4% year-on-year in July, moderating from 6% growth in the preceding month. According to provisional estimates released by the Ministry of Commerce and Industry, growth in the core sector for June was revised upward to 6% from the earlier reported 5%. Among the nine core sectors, iron ore production rose by 29.5%, cement production grew by 13.1%, electricity generation increased by 9%, coal production rose by 7.6%, steel production increased by 2.9%, and refinery products output rose by 2.7% on an annual basis. However, fertilizer production declined by 8%, crude oil production dropped by 5.3%, and natural gas production dipped by 3.7% on a year-on-year basis.
2: SP, जिस तरह के आंकड़े हमारे सामने आए हैं, आयरन और स्टील की बात करें, सीमेंट, बिजली और कोयले के उत्पादन में अच्छी बढ़ोतरी हुई है, लेकिन उर्वरक और कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के उत्पादन में गिरावट दर्ज की गई है, तो इस तरह के जो आंकड़े आ रहे हैं आपको औद्योगिक उत्पादन के लिहाज से कैसा दर्शाते हैं और मार्केट की आगे की जो रफ्तार उस पर क्या असर डालेंगे ये?
1: देखिए, जो स्टील में माइनिंग में जो अच्छी बढ़त आई है, ये सरकार की जो भी पॉलिसीज जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के संदर्भ में कही है, या फिर आप जो एक्सप्लोरेशन ऑफ दी माइंस इन एन एफिशिएंट मैनर उसमें कही है, तो ये सब चीज़ों का भी नतीजा है कि हमारी जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज हैं जो कोर इंफ्रा में, वो बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ना शुरू हो गई हैं और विजिबल हो गई हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जिस तरीके से पहले ये काफ़ी ग्रोथ इसमें अंडरमाइंड था, जो कोर इंफ्रा में ग्रोथ बहुत कम आता था, तो अभी ग्रोथ एक लेवल से ऊपर उठा है, तो आने वाले टाइम में हम समझते हैं कि इसका एक बहुत अच्छा सपोर्ट रहेगा। और कुछ खास करके जो आगे जो हमारे जो बेस ईयर्स हैं वो भी रिवाइज हुए हैं, तो जिसकी वजह से ये वापस अपने पोटेंशियल ट्रैजेक्टरी में आए हैं। लेकिन जो खास करके जो ऐसा जो ऑयल और रिफाइनरी की बात है, तो आप देख ही रहे हैं कि ग्लोबल लेवल पे कितना टसल है और क्रूड के प्राइसेस जो है बहुत ही वॉलेटाइल रहते हैं, तो कभी टाइम बहुत अपॉर्चून होता है कि हम रिफाइनरी मार्जिन ज़्यादा इंक्रीज होते हैं तो उसका प्रोडक्शन भी इंक्रीज होता है, और कई बार जो प्राइसेस बहुत हाई लेवल पे प्रिवेल करते हैं तो ज़्यादा कॉस्टली बाय करना भी फिर वो भारी पड़ता है, तो उस वजह से जो एक बैलेंस है वो हम समझते हैं कि तो उसमें वॉलेटाइल रहेगा, उसमें ग्रोथ जो है वो हम एक सस्टेंड ग्रोथ नहीं दे सकते उसमें, जब तक कि क्रूड के प्राइसेस बहुत, अभी आप देखिए कि क्रूड के प्राइसेस पीछे $55 से लेके 100 से ऊपर जा चुके, डबल, और उसके बीच में क्रूड प्राइसेस ने पीछे 4-5 महीने में बिहेव किया है, तो इसकी वजह से जो जो रिफाइनिंग प्रोसेसेस हैं उसके ऊपर भी उतना ही इम्पैक्ट जो है आता है।
0: डॉक्टर शर्मा, वी हैव आल्सो सीन दैट देयर इज स्टिल इम्पैक्ट फ्रॉम व्हाट्स हैपनिंग इन द मिडल ईस्ट, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज ब्लॉकेड, बिकॉज फर्टिलाइजर प्रोडक्शन, you need sulfur imports for crude oil, of course, and natural gas. We rely on the Middle East for crucial imports for our refineries. But the weightage of fertilizer, crude oil, and natural gas is still 15% of the ICI, whereas the remaining 85% includes iron ore, cement, electricity generation, coal production, steel, and refinery products. All of that has seen a great increase in its output, which is why we are seeing 5.4% increase in the July figures for the index of core industries.
1: Yes, Arjun, you are right, because some sectors have increased very significantly, more than 30-40%, and that's why their weight is also high, as these refinery and crude, they have only 15-16%. So rest of the 85% is growing significant. That's why the growth is coming at 5.4%, which is a great number in the this volatile global environment.
0: And the index of industrial production, the factory output, actually went up by 7% last month also. So along with core industries data and IIP, fundamentally, the economics of the country in terms of commodities and using the commodities to manufacture and produce final goods is also there.
1: Yes, Arjun, there is a great balance between all the fundamentals, like IIP numbers are growing at 7% and core infra at 5.4%, and exports, which is very, very important for the growth of the economy and a great correlation with the GDP. Exports are increasing at the rate of 13% during the last 4 months. The average is 13%. Last month in July, merchandise exports grew more than 17-18%. So this is is the great growth in our external sector, in our exports, despite the global headwinds, and we are becoming more and more competitive in the global market, and demand for India's products is increasing significantly in the many countries.
2: एशियाई शेयर बाजारों में आज दक्षिण कोरिया का कोस्पी 5.9% के लाभ में था. जापान का निक्केई 1.4% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था. आर्थिक मोर्चे पर जापान का निर्यात पिछले महीने 23.2% बढ़ा, जबकि सालाना आधार पर आयात में 27.8% की वृद्धि हुई. आंकड़ों के अनुसार पिछले महीने देश का व्यापार घाटा 634.5 अरब येन रहा. इस खबर से जुड़े दो सवाल हैं. पहला तो ये कि दक्षिण कोरिया का जो मार्केट है उसमें उतार चढ़ाव काफी एक अलग तरीके से ही हम देख रहे हैं पिछले कुछ समय से, एक दो महीने से, और साथ ही जापान से जो सालाना आधार पर आयात में बढ़ोतरी का आंकड़ा आया है ये काफी कुछ कहता है.
1: जी बिल्कुल, आप सही बता रहे हैं, क्योंकि जो एशिया में कुछ ऐसा वॉलेटिलिटी है अभी, कुछ कई बार जो इंडिसेज हैं बहुत तेज गति से आगे बढ़ते हैं, कई बार बहुत गिरावट आती है, क्योंकि जो ग्लोबल लेवल पे एशिया एक मेजर सप्लायर है. जब जो टर्म्स ऑफ ट्रेड या फिर आप कहेंगे कि जो नेगोशिएशंस है या फिर टैरिफ स्ट्रक्चर है उसमें कुछ भी ऐसे बदलाव की घोषणा होती है तो उससे मार्केट्स के ऊपर बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है, बिकॉज दे आर द मेजर सप्लायर्स टू द एडवांस्ड इकोनॉमीज. सो उसकी वजह से जो हम देखते हैं कि वॉलेटिलिटी, कभी हम दक्षिण कोरिया के इंडेक्स में देखते हैं या कभी फिर हम इधर जापान के उसमें देखते हैं या फिर चाइना में देखते हैं या और जो एशियन कंट्रीज हैं इंक्लूडिंग इंडिया ऑल्सो, तो जैसे मैंने पहले बताया कि पोटेंशियल हमारे ये जो सभी इमर्जिंग मार्केट्स हैं इनमें पोटेंशियल बहुत अच्छा है, लेकिन जो ग्लोबल लेवल पे जो हेडविंड्स हैं, जो टसल है, उसकी वजह से ग्रोथ काफ़ी लेवल तक अंडरमाइन हुई है. जो मैं समझता हूँ कि जैसे ही पीस एस्टेब्लिश होगा तो इन मार्केट्स में बहुत तेज गति से रिबाउंड करने की समर्थता है.
0: डॉक्टर शर्मा, दी लुकिंग एट द नेट एक्सपोर्ट्स ऑफ जापान, क्लियरली दे हैविंग अ ट्रेड डेफिसिट एज अ स्टोरी is indicating the exports have gone up, but the imports have gone up even more relative to the exports. And we talk about the Japanese yen. It has now climbed back to 158.55 to the US dollar. Earlier, it was even weaker. It crossed 160. And then there was a move by the US government to strengthen the yen, because the yen is also used for, the carryover trade. So what's going on here between the Bank of Japan, the yen, and what the US is doing?
1: Yes, Arjun, Japan is in a major structural mode, structural revival, and growth is also inching up slowly. And going forward, I believe this structural shuffle will benefit the Japanese economy, because they are now connecting with the many global markets, and to increase the trade trajectory and to become once again prominent in the global trade. So I think in the coming times that will become visible, and economy will rejuvenate to the next level.
2: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ एक बड़े आर्थिक युद्ध की घोषणा की है. उन्होंने उन देशों और कंपनियों पर कड़े आर्थिक प्रतिबंधों की चेतावनी दी है जो ईरान का सहयोग करना जारी रखेंगे. राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि उन्होंने ईरान को समझौता करने के लिए कई मौके दिए थे लेकिन उसने ऐसा नहीं किया. श्री ट्रंप ने कहा कि अमरीका अब ईरान को अलग थलग करने का अभियान शुरू करेगा. उन्होंने कहा कि जो भी देश अपने वित्तीय संस्थानों, व्यवसायों, हवाई अड्डों या फिर सरकारी एजेंसियों से ईरान की मदद करेगा उसे भारी आर्थिक प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा. ट्रंप ने यह भी कहा कि इस अभियान का मकसद विदेशों में गतिविधियों के लिए ईरान के वित्त पोषण और सहयोग करने की क्षमता को कमजोर करना है. इस बीच ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाघेरी गालिबाफ ने कहा कि जब तक अमरीका 14 सूत्री ज्ञापन के तहत किए गए वायदों को पूरा नहीं करता तब तक ईरान स्ट्रेट ऑफ होर्मोज को फिर से नहीं खोलेगा. एसपी, इस बड़ी खबर पर आपके क्या विचार होंगे, क्या असर देखने को मिलेगा, मार्केट कैसा परफॉर्म करेगा?
1: देखिए, मैं समझता हूँ कि कोई भी कंट्री आइसोलेशन में ऑपरेट नहीं करता है. नाउ वी आर इन अ ग्लोबली इंटीग्रेटेड वर्ल्ड. तो अगर यूएस ऐसा कदम उठाता है कि किसी कंट्री का आइसोलेट करने का, तो उसका पूरे ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर भी प्रभाव होगा. अभी हम देख ही रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एक उस जगह की वजह से पूरा वर्ल्ड इम्पैक्टेड है, क्रूड प्राइसेस की वजह से. और अगर ऐसी सैंक्शंस आती हैं तो उनका भी प्रभाव जो है वो किसी एक कंट्री के ऊपर नहीं होगा, वो पूरा विश्वव्यापी होगा, पूरे विश्व के ऊपर उसका इम्पैक्ट आएगा. और यूएस भी उसमें से पीछे नहीं है, मतलब यूएस भी उसमें शामिल है. यूएस इज ऑल्सो नॉट आइसोलेटेड के और इंसुलेटेड के भी उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं आएगा. सब पूरा ग्लोबल इकोनॉमी इम्पैक्ट होगा. जैसे ट्रंप साहब ने बात की है कि ऐसी सैंक्शंस होंगी कि हम उसको अलग थलग कर देंगे, सो दैट इट्स नॉट पॉसिबल फॉर ए ग्लोबली इंटीग्रेटेड इकोनॉमी जहां पे सप्लाई चेन्स बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड है.
2: लेकिन मध्य पूर्व में वे हालात कुछ ऐसे बन रहे कि ईरान वैसे ही अलग थलग सा नजर आ रहा है.
1: देखिए, वो युद्ध की वजह से जब भी कोई कंट्री प्रभावित होता है तो अलग थलग नजर आता है, बट अगर आप इकोनॉमिक लिंकेजेस देखेंगे तो वो

0: वो बहुत स्ट्रांग होते हैं। हम किसी भी कंट्री को ऐसे उसके ग्रोथ को अंडरमाइन नहीं कर सकते। तो मैं समझता हूँ कि ऐसी अनाउंसमेंट्स दीज आर नॉट इन फेवर ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी। यूएस इज द लार्जेस्ट इकोनॉमी एंड यूएस इज अ रिस्पॉन्सिबल इकोनॉमी विच प्रोवाइड्स द डायरेक्शन टू द वर्ल्ड इकोनॉमिक ग्रोथ। सो उनको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ही आगे के जो डिसीजन है लेना चाहिए।
1: मूविंग ऑन टू द ग्लोबल क्रूड ऑयल मार्केट, ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस रोज ओवर 3% टुडे। ब्रेंट क्रूड वाज ट्रेडिंग 3.3% अप एट $94.61 पर बैरल इन इंट्राडे ट्रेड। West Texas Intermediate crude was trading 3.4% up at $88.77 per barrel when reports last came in.
2: चौथी भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज बैठक आज सिंगापुर में आयोजित हुई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने इस बैठक में हिस्सा लिया। इस दौरान डिजिटल तकनीक, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सेमी कंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संचालन और साइबर सुरक्षा जैसे रणनीतिक तथा उभरते क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा की गई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि डिजिटल कौशल विकास में सहयोग को नई गति देने पर भी बातचीत हुई है। बैठक में उन्नत विनिर्माण, फिनटेक, डिजिटलीकरण, स्वास्थ्य और सतत विकास के क्षेत्रों में व्यापक रणनीतिक साझेदारी को सशक्त करने पर बल दिया गया है। और अब सराफा बाजार की बात करें तो भारत में 24 कैरेट सोना आज 2.1% के उछाल के साथ 1,57,080 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था और चांदी 3.7% ऊपर चढ़कर 2,37,766 रुपए प्रति किलोग्राम पर थी। एसपी, भारतीय सराफा बाजार में गोल्ड और सिल्वर पर जो उछाल आया, इस पर आप क्या कहेंगे?
0: देखिए, एक तो अर्जुन ने जैसे पहले बताया, डॉलर का वीकनेस जो ट्रेजरी में भी डिक्लाइन था, तो जिस वजह से डॉलर वीक चल रहा था, डॉलर इंडेक्स, तो गोल्ड में उछाल आना स्वाभाविक था। और दूसरा, गोल्ड एक जो इंटरनेशनल गोल्ड प्राइसेस है वो 4,000 का लो स्तर छू के वापस एक रिबाउंड आया। जो सेंट्रल बैंक्स है वापस वो दे आर इन द बाइंग स्प्री, तो एक बढ़त आई है जो मैं समझता हूँ कि बरकरार रह सकती है। और गोल्ड का जो पहले ये 5,500 का एक बेंचमार्क बना चुका है ग्लोबल लेवल पे, $5,500 पर ट्राई ऑन्स, तो अभी 4,500 है तो काफी स्कोप है, लेकिन यहाँ पे भी कंसोलिडेट करता है तो काफी ऊपर ही।
2: डॉक्टर एसपी, कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और महत्वपूर्ण चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी शुक्रिया, थैंक यू।
1: And before we close, a reminder of the headlines. Benchmark domestic stock market indices rebound. Sensex jumps over 600 points. Nifty settles above 24,200. India's core industries grow by 5.4% in July this year on an annual basis. And global crude oil prices rise over 3%. And that's it in this edition of Market Mantra for now. Goodbye.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम गीत मेरे मनमीत में आपका स्वागत है। अभी आपके साथ है आपका दोस्त शमीम।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में केंद्र सरकार के सचिवों के साथ तीसरी उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में देश के बुनियादी ढांचे, संपर्क, सुरक्षा, विदेश नीति और सुशासन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने अधिकारियों से देश के भविष्य को ध्यान में रखते हुए दूरगामी योजना बनाने को कहा। उन्होंने कहा कि सरकारी विभागों के बीच बेहतर तालमेल जरूरी है। श्री मोदी ने डेटा के सही इस्तेमाल पर जोर दिया और इसे देश की महत्वपूर्ण संपत्ति बताया। उन्होंने कहा कि विभागों के बीच सोचने और काम करने के तरीके में सुधार होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने सरकारी विभागों, विश्वविद्यालयों और युवाओं के बीच बेहतर संवाद पर जोर दिया ताकि नीतियां बनाने में नए विचार शामिल हो सकें। उन्होंने देश के रक्षा उद्योग को मजबूत बनाने और उसे वैश्विक स्तर पर आगे बढ़ाने पर भी जोर दिया। कोविड महामारी और पश्चिम एशिया संकट का उदाहरण देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अलग अलग विभागों के बीच बेहतर तालमेल सरकार की कामकाज की संस्कृति का हिस्सा बनना चाहिए। प्रधानमंत्री ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के बेहतर इस्तेमाल की भी बात कही। उन्होंने कहा कि AI के साथ मानवीय विशेषज्ञता और निगरानी भी जरूरी है। जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी ने कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। बैठक में भारत और जापान के बीच रक्षा और सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों की साझेदारी हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने रक्षा क्षेत्र में जापान की कंपनियों और स्टार्टअप्स के साथ मिलकर काम करने, खासकर रक्षा उपकरणों के विकास और उत्पादन में सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं पर भी चर्चा की। जापान के रक्षा मंत्री ने दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग में हुई प्रगति की जानकारी दी और संबंधों को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख में जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की एक पीठ स्थापित करने को मंजूरी दे दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने कल सोशल मीडिया के माध्यम से इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से लद्दाख के दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों के लिए न्याय तक पहुंच आसान होगी। श्री शाह ने कहा कि सरकार लद्दाख के सर्वांगीण विकास और संवैधानिक सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व न्यायाधीश आर सुभाष रेड्डी की अध्यक्षता में 5 सदस्यों की एक उच्च स्तरीय जांच समिति गठित की है। हमारे संवाददाता ने बताया कि यह समिति पिछले महीने नई दिल्ली के जंतर मंतर और देश के अन्य जगहों में विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के आरोपों की स्वतंत्र जांच करेगी।
1: समिति में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा, दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश शैलेंद्र कौर, CBI के पूर्व निदेशक ऋषि कुमार शुक्ला और मेघालय के सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक LR बिश्नोई भी शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायाधीश जॉय माल्या बागची और न्यायाधीश V मोहना की खंडपीठ ने कहा कि उच्च स्तरीय जांच समिति कुछ मुद्दों पर प्राथमिकता के आधार पर काम करे, जिनमें सबसे अहम मुद्दा महिला प्रदर्शनकारियों के खिलाफ लक्षित हिंसा और छेड़छाड़ की कथित घटनाओं से जुड़ा है। अदालत ने समिति से कहा कि वो मुद्दों का लगातार और समय समय पर आकलन करे और अपनी अंतरिम रिपोर्ट समय पर सौंपे। समाचार कक्ष से मुनीश शर्मा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जाम्बिया के राष्ट्रपति हाकाइंडे हिचिलेमा को दोबारा राष्ट्रपति चुने जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पर पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत जाम्बिया के साथ अपने मजबूत और बहुआयामी संबंधों को बहुत महत्व देता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे भारत जाम्बिया संबंधों को और मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति हिचिलेमा के साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हैं। नई दिल्ली में जारी विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। उन्होंने मलेशिया की जुनैद आरिफ और रॉय किंग याप की जोड़ी को 21-23, 21-19, 21-17 से हराया। अब इनका मुकाबला तीसरी वरीयता प्राप्त चीन के लियांग वेई किंग और वांग चांग से होगा। नीदरलैंड्स के एम्स्टरडैम में FIH महिला हॉकी विश्व कप में कल भारत और इंग्लैंड का मुकाबला गोल रहित बराबरी पर रहा। इस ड्रॉ के बाद भारतीय टीम टूर्नामेंट के अगले दौर में पहुंच गई है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Ashish P. Abraham. Prime Minister Narendra Modi chaired the third high-level meeting with secretaries to the Government of India at his residence yesterday and discussed the future action agenda of ministries and departments dealing with infrastructure and connectivity, security and external affairs, and governance. He urged secretaries to think with a long-term perspective on how the country's future should be shaped. Highlighting the importance of informal interaction and building team spirit among officers, Mr. Modi called for greater engagement between government departments, universities and young people to bring fresh perspectives in policy making. During the meeting, the secretaries shared their experiences on sectoral priorities, emerging challenges and implementation issues. Cabinet Secretary, secretaries of key ministries and departments and senior officials from the PM's office attended the meeting. Japan's Minister of Defense Shinjiro Koizumi, who is on an official visit to India, called on PM Modi yesterday. During their meeting, Mr. Modi shared his vision for further strengthening the special strategic and global partnership between India and Japan and highlighted the importance of India-Japan defense and security cooperation in furthering peace, stability and prosperity in the Indo-Pacific and beyond. The PM outlined opportunities for Japan to partner with Indian companies and startups in the defense sector, particularly for co-development and co-production under the aegis of Make in India. Defense Minister Koizumi briefed Mr. Modi about the progress in bilateral defense cooperation and reaffirmed the government of Japan's continued commitment towards deepening ties with India. PM Modi also recalled his detailed discussions with Japanese counterpart Sanae Takaichi during her recent visit to India for the 16th India-Japan Annual Summit in July this year. Mr. Modi also appreciated the steady momentum in defense collaboration between India and Japan. Sharing a social media post, Mr. Modi said that they had an excellent conversation on deepening defense and security ties between India and Japan. The PM noted that the special strategic and global partnership between the two nations is an important anchor for peace, stability and prosperity in the Indo-Pacific and beyond. Union Cabinet has approved the establishment of a bench of the High Court of Jammu and Kashmir in Ladakh. Union Home Minister Amit Shah yesterday announced this, sharing a social media post. Mr. Shah said that the decision will significantly enhance access to justice for citizens living in remote areas of Ladakh by reducing the time required to avail themselves of the legal services they are entitled to. He added that government is fully committed to the all-round development of Ladakh and to ensuring constitutional safeguards. The Supreme Court has constituted a five-member high-powered inquiry committee headed by former top court judge Justice R. Subhash Reddy, HPEC, to independently examine allegations of violence during the student demonstrations held at Jantar Mantar in New Delhi and other locations across the country last month. A high-powered inquiry committee has been asked to examine both the allegations of excessive and disproportionate use of force by police and paramilitary forces against protesters, as well as the alleged use of violence by protesters against security personnel and injuries sustained by them. PM Modi has congratulated Hakainde Hichilema on being re-elected as the President of Zambia. In a social media post, Mr. Modi noted that India greatly values its multifaceted partnership with Zambia. The PM added that he looks forward to working together with President Hichilema to further strengthen India-Zambia relations. Veteran Bangladesh Nationalist Party leader Mirza Fakhrul Islam Alamgir was yesterday elected as the country's 23rd president. The 78-year-old leader secured 255 votes in the presidential election held at the Jatiya Sangsad, the country's parliament. He defeated former army officer Oli Ahmed, the candidate backed by the 11-party opposition alliance led by the far-right Bangladesh Jamaat-e-Islami and the country's

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर निशिगंधा लेकर आपके साथ हूं मैं जयती। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार।

आप सुन रहे हैं निशिगंधा और निशिगंधा में आपके साथ हूं मैं जयती। एक बड़ी सुंदर सी बात है कि दिन भर सबके हिस्से की चिंता करते करते कभी अपने हिस्से का आसमान भी देख लिया कीजिए। हर रिश्ता जरूरी है मगर खुद से जो रिश्ता है वो सबसे पुराना है। किसी के चले जाने से या किसी के ना होने से हमारी कहानी खत्म नहीं होती। कुछ लोग एक चैप्टर की तरह होते हैं पर वो पूरी किताब नहीं होते और कुछ मुलाकातें प्रेम से अधिक एक सीख भी दे जाती हैं। रात इसलिए खूबसूरत है कि यह दिन की थकान नहीं अपने भीतर लौटने का बहाना देती है। अपने सपनों को उम्र की चौखट पर मत रोकिए। जिस दिल ने सबको संभाला है उसे भी सहलाने का हक है। कल फिर नई सुबह होगी मगर आज की रात भी आपकी है। कहते हैं ना कि सबको बांटते रहे हम उम्र भर अपनी रोशनी। सबको बांटते रहे हम उम्र भर अपनी रोशनी। एक दिया अपने लिए भी जलाना चाहिए। एक दिया अपने लिए भी जलाना चाहिए। और अगला गीत फिल्म का नाम है दयावान। आइए सुनते हैं ये गीत।

एक बात जो अक्सर हम दोहराते हैं और लगभग हर तीन चार कार्यक्रम के बाद हम आपसे ये साझा करते हैं कि इस दुनिया का सबसे मुश्किल काम होता है प्रेम को लिखना, और सबसे आसान काम भी होता है प्रेम को लिखना।

कहते हैं कि प्रेम को हम जितने भी शब्द दें वो कम ही पड़ जाते हैं, क्योंकि हमारी जैसी फीलिंग होती है, हम जैसा महसूस करते हैं, हम वैसा ही लिखते हैं। प्रेम केवल किसी के साथ रहने का नाम नहीं, कभी कभी दूर रहकर भी कोई बहुत करीब महसूस होता है। और सच्चा प्रेम आपको छोटा नहीं करता, बल्कि वो हर दिन आपको संवारता है, बेहतर बनाता है। वो आपके सामने आपके सपनों से ईर्ष्या नहीं करता, उन्हें उड़ान देता है, पंख देता है। जहां अधिकार बहुत हो, समझ कम हो, वहां रिश्ता धीरे धीरे करके बोझ बनता चला जाता है। जहां सम्मान हो, वहां साधारण सी शाम भी बहुत खास बन जाती है। किसी का भी हाथ पकड़ना, किसी रिश्ते में होना बहुत आसान है, पर उस मन के बदलते मौसमों को समझना बहुत कठिन भी होता है। इसलिए प्रेम में साथ से पहले संवेदना का होना जरूरी है, समझ का होना जरूरी है, क्योंकि सुंदर रिश्ता वही है जिसमें दोनों अपनी पहचान बचाए रखें, दोनों अपने सम्मान को संभाल सकें। और रात के इस पहर सिर्फ इतना याद रखना है कि प्रेम मांगता कम है, संवारता बहुत है। तो कहते हैं कि वो प्रेम कैसा जो मुझे मुझसे ही दूर करे, वो प्रेम कैसा जो मुझे मुझसे ही दूर करे, सच्चा हो तो मेरी उड़ान में भी साथ चले, सच्चा हो तो मेरी उड़ान में भी साथ चले। आप सुन रहे हैं निशिगंधा, और निशिगंधा में आपके साथ हूं मैं जयती। अगला गीत सुनेंगे, फिल्म का नाम है प्रेम रोग, और आवाज है लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर की। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और निशिगंधा में आपके साथ हूं मैं जयती। और निशिगंधा में अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है नीला आकाश, आवाज है आशा भोसले और मोहम्मद रफी की। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

बड़ी पुरानी सी बात है, या यूं कहें कि पुराने लोग कहा करते थे कि हर इच्छा का पूरा हो जाना जरूरी नहीं, कुछ अधूरी चाहतें हमारे भीतर रहकर हमें भीतर से समृद्ध करती हैं। जो नहीं मिला उसके लिए खुद को कभी दोष नहीं देना चाहिए। शायद जिंदगी आपको किसी और रास्ते के लिए बचा कर रखती है। हर बंद राह हार नहीं होती। कभी कभी बंद रास्ते जो हैं वो ये बताते हैं कि अपनी दिशा को बदल लेना चाहिए। रात में बीते हुए सपनों को अगर हम याद करेंगे और याद करके हमें वहां ठहरना नहीं है, बल्कि सुबह उन्हें नए रूप में जीने की कोशिश भी करना है। दिल को केवल पाने की आदत मत डालिए, बदलते रास्तों पर चलना भी।

रखिए, क्योंकि जिंदगी की खूबसूरती सिर्फ मंजिल में नहीं, उस सफर में भी है जो हमें अपने करीब लेके आता है। कहते हैं कि कुछ ख्वाब अधूरे रहकर भी कमाल करते हैं, कुछ ख्वाब अधूरे रहकर भी कमाल करते हैं। ये उम्र भर हमें नए सवाल देते हैं, ये उम्र भर हमें नए सवाल देते हैं। अगला गीत, फिल्म का नाम है सागर, आवाज है लता मंगेशकर और किशोर कुमार की। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

वो अभी हमने कहा ना कि कुछ ख्वाब अधूरे रहकर भी कमाल करते हैं, कुछ ख्वाब अधूरे रहकर भी कमाल करते हैं, ये उम्र भर हमें नए सवाल देते हैं, ये उम्र भर हमें नए सवाल देते हैं। बात अगर हम प्रेम की करते हैं कि प्रेम को लिखना मुश्किल है और प्रेम को लिखना सबसे आसान भी है, तो जनाब अगर बात प्रेम की है तो हम इंतजार को कैसे भूल जाएं? पर इंतजार की बात करेंगे तो हम ये नहीं कहेंगे कि आप उम्र भर इंतजार का दामन थाम कर बैठे रहिए। जी नहीं, जिंदगी इतनी कॉम्प्लिकेटेड बना ली है हमने, इतनी मुश्किल बना ली है, ऐसे में किसी के संदेश का, किसी के आने का, किसी के मिलने का इंतजार करते करते कभी भी अपने जीवन को इंतजार मत बनाइए। जिसे आना होगा वो रास्ता ढूंढ लेगा, जिसे रहना होगा वो वजह नहीं रिश्ता चुनेगा, और जिसे जाना होगा उसे रोक कर भी आप कुछ नहीं पाएंगे। प्रेम में प्रतीक्षा सुंदर है, लेकिन अपनी पहचान खो देना कभी भी सुंदर नहीं है। किसी की याद को अपने दिन की रोशनी बनने दीजिए, पर पूरी दुनिया नहीं। अपनी मुस्कुराहट को किसी जवाब का मोहताज मत बनने दीजिए। कभी कभी रात को अपनी बनाइए और अपने फोन से थोड़ी सी दूरी बनाकर रखिए। अपने दिल के पास बैठिए, खुद के साथ बैठिए और अपने मन की आवाज को सुनिए। आपका दिल आपसे क्या कहना चाहता है, क्या बातें करना चाहता है? शायद वहां कोई ऐसा उत्तर छिपा हो, कोई ऐसा जवाब छिपा हो जिसका इंतजार आप लंबे समय से कर रहे थे, पर आपको वो जवाब नहीं मिल रहा था। और सही कहा गया है कि जिसे आना था वो राह बनकर आ गया, जिसे आना था वो राह बनकर आ गया, मैंने खुद को पुकारा तो अपना साथ मिल गया, मैंने खुद को पुकारा तो अपना साथ मिल गया। आप सुन रहे हैं निशिगंधा।

अशकों की तेरे वो बयानी चाहते हैं, अशकों की तेरे वो बयानी चाहते हैं, दिलचस्प सी कोई कहानी चाहते हैं, दिलचस्प सी कोई कहानी चाहते हैं। वक्त आ चला है कि आपको याद दिला दे कि अब से थोड़ी ही देर बाद यानी कि 1 बजे आप सुनेंगे एफएम गोल्ड पर हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। हमारी और आपकी मुलाकात होगी 1:10 पर। कार्यक्रम होगा गीत सुहाने। छोड़े जाते हैं एक प्यारे से गीत के साथ। सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में केंद्र सरकार के सचिवों के साथ तीसरी उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में देश के बुनियादी ढांचे, संपर्क, सुरक्षा, विदेश नीति और सुशासन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने अधिकारियों से देश के भविष्य को ध्यान में रखते हुए दूरगामी योजना बनाने को कहा। उन्होंने कहा कि सरकारी विभागों के बीच बेहतर तालमेल जरूरी है। श्री मोदी ने डेटा के सही इस्तेमाल पर जोर दिया और इसे देश की महत्वपूर्ण संपत्ति बताया। उन्होंने कहा कि विभागों के बीच सोचने और काम करने के तरीके में सुधार होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने सरकारी विभागों, विश्वविद्यालयों और युवाओं के बीच बेहतर संवाद पर जोर दिया ताकि नीतियां बनाने में नए विचार शामिल हो सकें। उन्होंने देश के रक्षा उद्योग को मजबूत बनाने और उसे वैश्विक स्तर पर आगे बढ़ाने पर भी जोर दिया। कोविड महामारी और पश्चिम एशिया संकट का उदाहरण देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अलग अलग विभागों के बीच बेहतर तालमेल सरकार की कामकाज की संस्कृति का हिस्सा बनना चाहिए। प्रधानमंत्री ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के बेहतर इस्तेमाल की भी बात कही। उन्होंने कहा कि AI के साथ मानवीय विशेषज्ञता और निगरानी भी जरूरी है। जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी ने कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। बैठक में भारत और जापान के बीच रक्षा और सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों की साझेदारी हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने रक्षा क्षेत्र में जापान की कंपनियों और स्टार्टअप्स के साथ मिलकर काम करने, खासकर रक्षा उपकरणों के विकास और उत्पादन में सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं पर भी चर्चा की। जापान के रक्षा मंत्री दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग में हुई प्रगति की जानकारी दी और संबंधों को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख में जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की एक पीठ स्थापित करने को मंजूरी दे दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने कल सोशल मीडिया के माध्यम से इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से लद्दाख के दूरदराज के क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों के लिए न्याय तक पहुंच आसान होगी। श्री शाह ने कहा कि सरकार लद्दाख के सर्वांगीण विकास और संवैधानिक सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व न्यायाधीश आर सुभाष रेड्डी की अध्यक्षता में 5 सदस्यों की एक उच्च स्तरीय जांच समिति गठित की है। हमारे संवाददाता ने बताया कि यह समिति पिछले महीने नई दिल्ली के जंतर मंतर और देश के अन्य जगहों में विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के आरोपों की स्वतंत्र जांच करेगी।
1: समिति में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा, दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश शैलेंद्र कौर, CBI के पूर्व निदेशक ऋषि कुमार शुक्ला और मेघालय के सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक LR बिश्नोई भी शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायाधीश जॉय माल्या बागची और न्यायाधीश वी मोहना की खंडपीठ ने कहा कि उच्च स्तरीय जांच समिति कुछ मुद्दों पर प्राथमिकता के आधार पर काम करे, जिनमें सबसे अहम मुद्दा महिला प्रदर्शनकारियों के खिलाफ लक्षित हिंसा और छेड़छाड़ की कथित घटनाओं से जुड़ा है। अदालत ने समिति से कहा कि वो मुद्दों का लगातार और समय समय पर आकलन करे और अपनी अंतरिम रिपोर्ट समय पर सौंपे। समाचार कक्ष से मुनीश शर्मा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जाम्बिया के राष्ट्रपति हाकाइंडे हिचिलेमा को दोबारा राष्ट्रपति चुने जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पर पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत जाम्बिया के साथ अपने मजबूत और बहुआयामी संबंधों को बहुत महत्व देता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे भारत जाम्बिया संबंधों को और मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति हिचिलेमा के साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कल मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्च शिक्षा व्यवस्था को मजबूत कर बनाने पर बैठक की। बैठक में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने, शिक्षण संस्थानों को बेहतर बनाने और देश के छात्रों के लिए नए अवसर बढ़ाने से जुड़ी योजनाओं की समीक्षा की गई। श्री जोशी ने कहा कि इन क्षेत्रों में सुधार के लिए सरकार की योजनाओं पर आगे काम किया जाएगा। नई दिल्ली में जारी विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। उन्होंने मलेशिया के जुनैदी आरिफ और रॉय किंग याप की जोड़ी को 21-23, 21-19, 21-17 से हराया। अब उनका मुकाबला तीसरी वरीयता प्राप्त चीन के लियांग वेई केंग और वांग चांग से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani.

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर गीत सुहाने लेकर आपके साथ हूं मैं जयती। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार।

आप सुन रहे हैं निशिगंधा और निशिगंधा में आपके साथ हूं मैं जयती। कुछ बीती बातें रात में अचानक याद आ जाती हैं। बहुत बार ऐसा सबके साथ होता है, तो जो बातें याद आ जाती हैं और आकर मन में घर बनाने लग जाती हैं, उनसे लड़ाई मत कीजिए, उन्हें एक अनुभव की तरह जीवन में शामिल कर लीजिए। हर गलती अपराध नहीं होती, कई बार वो हमारे जीवन में एक सीख छोड़ जाती है। जिस रास्ते ने हमें गिराया, उसने ही हमें चलना भी सिखाया। इसलिए बीते हुए अतीत को सजा बनाकर रखना सही नहीं होता, उसे अपनी समझ की किताब का एक पन्ना बनने देना चाहिए, ताकि जब कभी हमारा मन भटकने लगे या ऐसा लगे फिर से वही गलती करने जा रहे हैं, तो अतीत के उस पन्ने को खोलकर हम जीवन की सीख को दोहरा सकते हैं। जो चला गया उसके पीछे अपना आज क्यों खोना है? आने वाला कल हमारे इंतजार में खड़ा है, और कभी कभी तो दरवाजा बंद होना भी रास्ता बदलने का संकेत होता है, और कभी किसी रिश्ते का अंत अपने प्रति लौटने की शुरुआत भी होती है। आज की रात खुद से बस इतना कहिए, मैं बीते कल से बना हूं मगर मेरा भविष्य अभी बाकी है। जो छूट गया उसे किस्मत का नाम दे देना, जो छूट गया उसे किस्मत का नाम दे देना, जो मिल रहा है उसे दिल से संभाल लेना, जो मिल रहा है उसे दिल से संभाल लेना। और अगला गीत, फिल्म का नाम है लव स्टोरी, आवाज है अमित कुमार और लता मंगेशकर की। तो आइए सुनते हैं ये गीत और फिर करेंगे आगे बहुत सारी बातें।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और गीत सुहाने में आपके साथ हूं मैं जयती। और अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है नगीना, आवाज है अनुराधा पौडवाल और मोहम्मद अजीज की। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

कभी सपनों की उम्र तय नहीं करती। कभी कभी 45 और 50 की उम्र में भी मन 20 साल की तरह खिल उठता है, और कभी एक नई किताब, एक यात्रा या एक दोस्ती पूरे जीवन की दिशा बदल देती है। लोग क्या कहेंगे, इस सवाल ने न जाने कितने सपने रोक दिए। जबकि लोग आज कुछ कहेंगे, कल किसी और बात में लग जाएंगे, और आपकी जिंदगी, हमारी जिंदगी, हमें और आपको ही जीनी है। इसलिए देर से शुरू होने वाली खुशी को भी खुशी समझकर जीवन में शामिल करते चलना चाहिए। नई शुरुआत के लिए जनाब, जीवन में कभी कोई शुभ मुहूर्त नहीं होता, बस एक भीतर सच्ची इच्छा होनी चाहिए। और रात का जो ये पहर है, ये उसी इच्छा को जगाने के लिए काफी है कि हमें अगर जीवन में कुछ भी अच्छा करना है, कोई अच्छी सी प्लानिंग कर रहे हैं, तो हमें उस पर विचार करने का ये रात मौका देती है। उम्र ने पूछा, अब कहां से ख्वाब लाओगी? उम्र ने पूछा, अब कहां से ख्वाब लाओगी? दिल ने हंसकर कहा, जहां चाह होगी राह वहीं होगी, जहां चाह होगी राह वहीं होगी। और अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है प्रोफेसर, आवाज है आशा भोसले और लता मंगेशकर की। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

तुमसे ही महकी मद्धम फिजाएं हैं, तुमसे ही महकी मद्धम फिजाएं हैं, तुम फूल हो तुम दुनिया मेरी, तुम्हारे रंगों में रोशन तुम्हारी खुशबुओं में तर मैं, कभी कभी तुम में खुद को तलाशता हूँ, जबकि मेरी और तुम्हारी दुनिया में बस तुम ही तुम हो हर जगह, तुम में खुद को ढूंढता ये मन डरता है कि खुद के तलाश में दूर कहीं निकल ना जाए, तुम में महका तुम रंग निखरा ये मन तुम्हारा ही है, मगर जब तक तुमने संजोए रखा इसे भी किसी मुस्कुराते फूल की तरह, किसी मुस्कुराते फूल की तरह। और अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है कभी कभी और आवाज है किशोर कुमार और लता मंगेशकर की।

और वक्त आ चला है कि आपको याद दिला दें कि अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 2 बजे आप सुनेंगे एफएम गोल्ड पर हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। हमारी और आपकी मुलाकात होगी 2:10 पर। कार्यक्रम होगा रात सुरमई।

छोड़े जाते हैं आपके एक प्यारे से गीत के साथ। फिल्म का नाम है प्रिंस, आवाज है मोहम्मद रफी की। तो आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में केंद्र सरकार के सचिवों के साथ तीसरी उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में देश के बुनियादी ढांचे, संपर्क, सुरक्षा, विदेश नीति और सुशासन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने अधिकारियों से देश के भविष्य को ध्यान में रखते हुए दूरगामी योजना बनाने को कहा। उन्होंने कहा कि सरकारी विभागों के बीच बेहतर तालमेल जरूरी है। श्री मोदी ने डेटा के सही इस्तेमाल पर जोर दिया और इसे देश की महत्वपूर्ण संपत्ति बताया। उन्होंने कहा कि विभागों के बीच सोचने और काम करने के तरीके में सुधार होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने सरकारी विभागों, विश्वविद्यालयों और युवाओं के बीच बेहतर संवाद पर जोर दिया ताकि नीतियां बनाने में नए विचार शामिल हो सकें। उन्होंने देश के रक्षा उद्योग को मजबूत बनाने और उसे वैश्विक स्तर पर आगे बढ़ाने पर भी जोर दिया। जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी ने कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। बैठक में भारत और जापान के बीच रक्षा और सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों की साझेदारी हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने रक्षा क्षेत्र में जापान की कंपनियों और स्टार्टअप्स के साथ मिलकर काम करने, खासकर रक्षा उपकरणों के विकास और उत्पादन में सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं पर भी चर्चा की। जापान के रक्षा मंत्री ने दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग में हुई प्रगति की जानकारी दी और संबंधों को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख में जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की एक पीठ स्थापित करने को मंजूरी दे दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने कल सोशल मीडिया के माध्यम से इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से लद्दाख के दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों के लिए न्याय तक पहुंच आसान होगी। श्री शाह ने कहा कि सरकार लद्दाख के सर्वांगीण विकास और संवैधानिक सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व न्यायाधीश आर सुभाष रेड्डी की अध्यक्षता में 5 सदस्यों की उच्च स्तरीय जांच समिति गठित की है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यह समिति पिछले महीने नई दिल्ली के जंतर मंतर और देश के अन्य जगहों में विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के आरोपों की स्वतंत्र जांच करेगी।
1: समिति में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा, दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश शैलेंद्र कौर, सीबीआई के पूर्व निदेशक ऋषि कुमार शुक्ला और मेघालय के सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक एलआर बिश्नोई भी शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायाधीश जॉय माल्या बागची और न्यायाधीश वी मोहना की खंडपीठ ने कहा कि उच्च स्तरीय जांच समिति कुछ मुद्दों पर प्राथमिकता के आधार पर काम करे, जिनमें सबसे अहम मुद्दा महिला प्रदर्शनकारियों के खिलाफ लक्षित हिंसा और छेड़छाड़ की कथित घटनाओं से जुड़ा है। अदालत ने समिति से कहा कि वो मुद्दों का लगातार और समय समय पर आकलन करे और अपनी अंतरिम रिपोर्ट समय पर सौंपे। समाचार कक्ष से मुनीश शर्मा।
0: यूक्रेन की राजधानी कीव और आसपास के इलाकों में रूस के बड़े हवाई हमलों में 16 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए हैं। हमले में अस्पताल, स्कूल, रिहायशी इमारतों और कई गोदामों को नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने हवाई सुरक्षा मजबूत करने के लिए दूसरे देशों से और पैट्रियट मिसाइलें देने की अपील की है। उन्होंने कहा कि इन मिसाइलों की जरूरत बैलिस्टिक मिसाइलों से बचाव के लिए है। नई दिल्ली में जारी विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। उन्होंने मलेशिया की जुनैदी आरिफ और रॉय किंग याप की जोड़ी को 21-23, 21-19, 21-17 से हराया। अब उनका मुकाबला तीसरी वरीयता प्राप्त चीन के लियांग वेई केंग और वांग चांग से होगा। महिला डबल्स में ट्रिसा जॉली और गायत्री गोपीचंद ने जापान की रिन इवानागा और की नाका निशी को 21-16, 21-12 से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। अगले दौर में उनका सामना चीन की जिया यीफेन और झांग शू शियान से होगा। नीदरलैंड्स के एम्स्टलफेन में एफआईएच महिला हॉकी विश्व कप में कल भारत और इंग्लैंड का मुकाबला गोल रहित बराबरी पर रहा। इस ड्रॉ के बाद भारतीय टीम टूर्नामेंट के अगले दौर में पहुंच गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani, the news read by Tanvi Gupta. Prime Minister Narendra Modi chaired the third high-level meeting with secretaries to the Government of India at his residence yesterday and discussed the future action agenda of ministries and departments dealing with infrastructure and connectivity, security and external affairs and governance. He urged secretaries to think with a long-term perspective on how the country's future should be shaped. Highlighting the importance of informal interaction and building team spirit among officers, Mr. Modi called for greater engagement between government departments, universities and young people to bring fresh perspectives in policy making. During the meeting, the secretaries shared their experiences on sectoral priorities, emerging challenges and implementation issues. Cabinet Secretary, secretaries of key ministries and departments and senior officials from the Prime Minister's office attended the meeting. Japan's Minister of Defense, Shinjiro Koizumi, who is on an official visit to India, called on Prime Minister Narendra Modi yesterday. During their meeting, Mr. Modi shared his vision for further strengthening the special strategic and global partnership between India and Japan and highlighted the importance of India-Japan defense and security cooperation in furthering peace, stability and prosperity in the Indo-Pacific and beyond. The Prime Minister outlined opportunities for Japan to partner with Indian companies and startups in the defense sector, particularly for co-development and co-production under the aegis of Make in India. Defense Minister Koizumi briefed Mr. Modi about the progress in bilateral defense cooperation and reaffirmed the government of Japan's continued commitment towards deepening ties with India. Prime Minister Modi also recalled his detailed discussion with Japanese counterpart Sunae Takachi during her visit to India for the 16th India-Japan Annual Summit in July this year. Mr. Modi also appreciated the steady momentum in defense collaboration between India and Japan. Sharing a social media post, Mr. Modi said that they had an excellent conversation on deepening defense and security ties between India and Japan. The Prime Minister noted that the special strategic and global partnership between the two nations is an important anchor for peace, stability and prosperity in the Indo-Pacific and beyond. Union Cabinet has approved the establishment of a bench of the High Court of Jammu and Kashmir and Ladakh. Union Home Minister Amit Shah yesterday announced this, sharing a social media post. Mr. Shah said that the decision will significantly enhance access to justice for citizens living in remote areas of Ladakh by reducing the time required to avail themselves of the legal services they are entitled to. He added that government is fully committed to the all-round development of Ladakh and to ensuring constitutional safeguards. The Supreme Court has constituted a five-member high-powered inquiry committee headed by former top court judge Justice R. Subhash Reddy to independently examine allegations of violence during the student demonstrations held at Jantar Mantar in New Delhi and other locations across the country last month. A high-powered inquiry committee has been asked to examine both the allegations of excessive and disproportionate use of force by police and paramilitary forces against protesters, as well as the alleged use of violence by protesters against security personnel and injuries sustained by them. Prime Minister Narendra Modi has congratulated Hakainde Hichilema on being re-elected as the President of Zambia. In a social media post, Mr. Modi noted that India greatly values its multifaceted partnership with Zambia. The Prime Minister added that he looks forward to working together with President Hichilema to further strengthen India-Zambia relations. Now into the sports. In badminton, the fifth-seeded Indian pair of Satwik Sairaj, Ranki Reddy and Chirag Shetty defeated Junaidi Arif and Roy King Yap of Malaysia in the pre-quarterfinals men's double match at the BWF World Championships 2026 in New Delhi. The Indian pair had lost the first game 21-23 but bounced back to win the second and third games 21-19, 21-17 in a close encounter. In hockey, the Indian women's team has advanced to the second round of the FIH World Cup after playing out a goalless draw against England in their final Pool D match at Amstelveen in the Netherlands. Both teams created opportunities but failed to find the back of the net, with India's defence holding firm throughout the contest. The draw helped India, led by Salima Tate, sealing a vital second-place finish in Pool D. And that is the end of this news bulletin.

हर शाम दे गया। उसकी खामोशियों ने जब इनकार लिख दिया, उसकी खामोशियों ने जब इनकार लिख दिया, मन फिर भी स्नेह का खुला इल्हाम दे गया। कहते हैं लोग क्यों किसी पर इतना झुक गए, कहते हैं लोग क्यों किसी पर इतना झुक गए, दिल हंस के बोला यह तो बस अंजाम दे गया, दिल हंस के बोला यह तो बस अंजाम दे गया। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर रात सुरमई लेकर आपके साथ हूं मैं जयती। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। और रात सुरमई में पहला गीत एसपी बाला सुब्रमण्यम और आशा भोसले की आवाज में फिल्म सागर से आप सभी के लिए।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। रात सुरमई में आपके साथ हूं मैं जयती। तुम यदि कभी लिखो तो पूरा आकाश मत लिखना। तुम यदि कभी लिखो तो पूरा आकाश मत लिखना। न ऋतुओं का हाल, न भीतर उतरती किसी अनकही पीड़ा का वृतांत। केवल इतना करना कि कागज के एक कोने पर अपना नाम रख देना, जैसे कोई दीपक दूर पहाड़ी पर रख दिया गया हो और भटके हुए पथिक को दिशा मिल गई हो।

पर रखे बेरुखी का सारा हिसाब, कहां तक उन पर रखे बेरुखी का सारा हिसाब, हमारे हिस्से में भी कुछ जवाब कम निकले। वो सामने थे मगर आंख भर के देख न पाए, वो सामने थे मगर आंख भर के देख न पाए, दिल के बीच कई फासले बेनाम निकले, दिल के बीच कई फासले बेनाम निकले। कभी तो हमने भी रिश्तों को हल्के में रखा, कभी तो हमने भी रिश्तों को हल्के में रखा, कभी तो उनके भी अंदाज कुछ नर्म निकले, कभी तो उनके भी अंदाज कुछ नर्म निकले। कहां तक उन पर रखे बेरुखी का सारा हिसाब, कहां तक उन पर रखे बेरुखी का सारा हिसाब, हमारे हिस्से में भी कुछ जवाब कम निकले, हमारे हिस्से में भी कुछ जवाब कम निकले। और अब जो गीत आप सुनेंगे, आवाज है लता मंगेशकर की और फिल्म का नाम है आपके साथ।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। रात सुरमई में आपके साथ हूं मैं जयती। और अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है कभी कभी, आवाज है मुकेश और लता मंगेशकर की। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

सीढ़ियों से भी प्रेम करता हूं, जिन पर चलकर तुमसे मिलने आया करता था। मैं उन सीढ़ियों से भी प्रेम करता हूं, जिन पर चलकर तुमसे मिलने आया करता था, और आज उस खिड़की से भी जिसके बाहर देखती थी तुम्हारी उदास आंखें। मुझे अब भी उस अंधेरे से प्रेम है जिसके उजालों में चलकर पहुंचता था तुम्हारे पास। मैंने उन सारी चीजों से प्रेम किया जो तुम्हारे हाथों से छुई गई थी कभी न कभी, जैसे दीवार, काजल लगा आईना, कपड़े सुखाने की रस्सियां, कमरे की चाबियां, कमरे की सारी खूंटियां, जहां हमने अपनी प्रार्थनाएं लटकाई थी कभी। मैंने अलमारी में लटके उन सारे हैंगर्स से भी प्रेम किया जिनमें सफेद झाग वाले सर्फ की तरह महकते थे तुम्हारे हाथ। मैंने उन सारी चीजों से प्रेम किया जिन्हें तुम्हारे तलवों ने छुआ था, जैसे पृथ्वी, जैसे यह सारा संसार। इस तरह मैंने तुम्हारी हरेक चीज से प्रेम किया, तुम्हारे प्रेम में तुम्हारे लिए। और अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है नगीना, आवाज है अनुराधा पौडवाल की।

और वक्त आ चला है आपसे विदा लेने का। तो फिर मिलने के वादे के साथ और एक प्यारे से गीत के साथ आपको छोड़े जाते हैं। फिल्म का नाम है मैंने प्यार किया और आवाज है लता मंगेशकर की। साथ ही आपको याद दिला दे कि अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 3 बजे आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। तो मुझे अनुमति दीजिए, सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में केंद्र सरकार के सचिवों के साथ तीसरी उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में देश के बुनियादी ढांचे, संपर्क, सुरक्षा, विदेश नीति और सुशासन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने अधिकारियों से देश के भविष्य को ध्यान में रखते हुए दूरगामी योजना बनाने को कहा। उन्होंने कहा कि सरकारी विभागों के बीच बेहतर तालमेल जरूरी है। श्री मोदी ने डेटा के सही इस्तेमाल पर जोर दिया और इसे देश की महत्वपूर्ण संपत्ति बताया। उन्होंने कहा कि विभागों के बीच सोचने और काम करने के तरीके में सुधार होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने सरकारी विभागों, विश्वविद्यालयों और युवाओं के बीच बेहतर संवाद पर जोर दिया ताकि नीतियां बनाने में नए विचार शामिल हो सकें। उन्होंने देश के रक्षा उद्योग को मजबूत बनाने और उसे वैश्विक स्तर पर आगे बढ़ाने पर भी जोर दिया। जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी ने कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। बैठक में भारत और जापान के बीच रक्षा और सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों की साझेदारी हिंद प्रशांत क्षेत्र

0: में शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने रक्षा क्षेत्र में जापान की कंपनियों और स्टार्टअप्स के साथ मिलकर काम करने, खासकर रक्षा उपकरणों के विकास और उत्पादन में सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं पर भी चर्चा की। जापान के रक्षा मंत्री ने दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग में हुई प्रगति की जानकारी दी और संबंधों को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख में जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की एक पीठ स्थापित करने को मंजूरी दे दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने कल सोशल मीडिया के माध्यम से इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा है कि इस निर्णय से लद्दाख के दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों के लिए न्याय तक पहुंच आसान होगी। श्री शाह ने कहा कि सरकार लद्दाख के सर्वांगीण विकास और संवैधानिक सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व न्यायाधीश आर सुभाष रेड्डी की अध्यक्षता में 5 सदस्यों की उच्च स्तरीय जांच समिति गठित की है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यह समिति पिछले महीने नई दिल्ली के जंतर मंतर और देश के अन्य जगहों में विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के आरोपों की स्वतंत्र जांच करेगी।
1: समिति में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा, दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश शैलेंद्र कौर, सीबीआई के पूर्व निदेशक ऋषि कुमार शुक्ला और मेघालय के सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक एलआर बिश्नोई भी शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायाधीश जॉय माल्या बागची और न्यायाधीश वी मोहना की खंडपीठ ने कहा कि उच्च स्तरीय जांच समिति कुछ मुद्दों पर प्राथमिकता के आधार पर काम करे, जिनमें सबसे अहम मुद्दा महिला प्रदर्शनकारियों के खिलाफ लक्षित हिंसा और छेड़छाड़ की कथित घटनाओं से जुड़ा है। अदालत ने समिति से कहा कि वो मुद्दों का लगातार और समय समय पर आकलन करे और अपनी अंतरिम रिपोर्ट समय पर सौंपे। समाचार कक्ष से मुनीश शर्मा।
0: भारत आज पुणे में 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया करेंगे। बैठक का विषय है लचीले भविष्य के लिए नवाचार, सहयोग और परिवर्तन, ICT। ये आयोजन ब्रिक्स सदस्य देशों को उभरती प्रौद्योगिकियों, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, भविष्य के नेटवर्क, साइबर सुरक्षा, क्षमता निर्माण और समावेशी डिजिटल कनेक्टिविटी पर विचारों का आदान प्रदान करने के लिए एक मंच प्रदान करेगा। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश में आज तेज बारिश कर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड, पश्चिम उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ओडिशा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में भी आज मूसलाधार बारिश की संभावना है। विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, झारखंड, तमिलनाडु, पुदुचेरी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में गरज चमक के साथ तूफान का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। नीदरलैंड्स के एम्स्टर्डम में FIH महिला हॉकी विश्व कप में कल भारत और इंग्लैंड का मुकाबला गोल रहित बराबरी पर रहा। इस ड्रॉ के बाद भारतीय टीम टूर्नामेंट के अगले दौर में पहुंच गई है। ग्रुप डी में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराया, जबकि चीन और इंग्लैंड के साथ 2 मुकाबले ड्रॉ रहे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय तन्वी गुप्ता। Prime Minister Narendra Modi chaired the 3rd high-level meeting with secretaries to the Government of India at his residence yesterday and discussed the future action agenda of ministries and departments dealing with infrastructure and connectivity, security and external affairs and governance. He urged secretaries to think with a long-term perspective on how the country's future should be shaped. Highlighting the importance of informal interaction and building team spirit among officers, Mr. Modi called for greater engagement between government departments, universities and young people to bring fresh perspectives in policy making. During the meeting, the secretaries shared their experiences on sectoral priorities, emerging challenges and implementation issues. Cabinet secretaries, secretaries of key ministries and departments and senior officials from the Prime Minister's office attended the meeting. Japan's Minister of Defense, Shinjiro Koizumi, who is on an official visit to India, called on Prime Minister Narendra Modi yesterday. During their meeting, Mr. Modi shared his vision for further strengthening the special strategic and global partnership between India and Japan and highlighted the importance of India-Japan defense and security cooperation in furthering peace, stability and prosperity

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर और समय हो गया है प्रोग्राम हमराही का। मैं हूं आज आपके साथ आपकी दोस्त भारती और आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। शुरुआत करते हैं प्रोग्राम हमराही की इस गीत के साथ।

रात जितनी शांत होती है दिल उतना ही अपने करीबियों को महसूस करता है। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें शब्दों की जरूरत नहीं होती, बस उनका साथ होना ही दिल को सुकून दे जाता है। जैसे चांदनी रात में हवा का धीरे से गुजरना, बिना कुछ कहे बहुत कुछ कह जाना।

साथ का मतलब केवल पास रहना नहीं बल्कि जिंदगी के हर उतार चढ़ाव में एक दूसरे का हाथ थामे रहना है। खुशियों में साथ मुस्कुराना और मुश्किल घड़ी में बिना कहे हिम्मत बन जाना, शायद यही सच्चे साथ की खूबसूरती है।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: अच्छा तुम ये तो गाओ, तेरे नैना
1: तेरे नैना तेरे।
0: तुम ऐसा करो ये गाओ,

मोहब्बत शायद किसी को अपना बनाने का नाम नहीं बल्कि उसकी खुशी में अपनी खुशी ढूंढ लेने का नाम है जहां शिकायतों से ज्यादा समझ हो अधिकार से ज्यादा सम्मान हो और शब्दों से ज्यादा एहसास हो वही मोहब्बत अपनी सबसे खूबसूरत शक्ल में होती है

कुछ भावनाएं गिनी नहीं जाती, उन्हें बस महसूस किया जाता है। प्यार भी उन्हीं एहसासों में से एक है, जितना बांटें उतना ही गहरा होता जाता है।

रिश्तों में कभी नजदीकियां आती हैं, कभी दूरियां, लेकिन सच्चा अपनापन दूरी से खत्म नहीं होता। कई बार इंसान पास होकर भी दूर होता है और कई बार दूर होकर या दूर रहकर भी हर धड़कन में मौजूद रहता है।

तो आज की इस नर्म से रात में उन लोगों को याद कीजिए जिनकी मौजूदगी ने आपकी ज़िंदगी को थोड़ा और खूबसूरत बनाया है। कुछ रिश्ते चांदनी जैसे होते हैं, चाहे रात कितनी भी गहरी हो उनकी रोशनी दिल तक पहुँच ही जाती है। आप जहाँ भी हो खुश रहें और अपने रिश्तों में प्यार और विश्वास और अपनापन यूं ही बनाए रखें। मैं आपसे ले रही हूँ अनुमति, जल्द मुलाकात होगी, यानी मुलाकात होगी 4:10 पर कार्यक्रम अरुणिमा में। तब तक के लिए मैं आपसे ले रही हूँ अनुमति, कुछ देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में केंद्र सरकार के सचिवों के साथ तीसरी उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में देश के बुनियादी ढांचे, संपर्क, सुरक्षा, विदेश नीति और सुशासन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने अधिकारियों से देश के भविष्य को ध्यान में रखते हुए दूरगामी योजना बनाने को कहा। उन्होंने कहा कि सरकारी विभागों के बीच बेहतर तालमेल जरूरी है। श्री मोदी ने डेटा के सही इस्तेमाल पर जोर दिया और इसे देश की महत्वपूर्ण संपत्ति बताया। उन्होंने कहा कि विभागों के बीच सोचने और काम करने के तरीके में सुधार होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने सरकारी विभागों, विश्वविद्यालयों और युवाओं के बीच बेहतर संवाद पर जोर दिया ताकि नीतियां बनाने में नए विचार शामिल हो सकें। उन्होंने देश के रक्षा उद्योग को मजबूत बनाने और उसे वैश्विक स्तर पर आगे बढ़ाने पर भी जोर दिया। जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी ने कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। बैठक में भारत और जापान के बीच रक्षा और सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों की साझेदारी हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने रक्षा क्षेत्र में जापान की कंपनियों और स्टार्टअप्स के साथ मिलकर काम करने, खासकर रक्षा उपकरणों के विकास और उत्पादन में सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं पर भी चर्चा की। जापान के रक्षा मंत्री ने दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग में हुई प्रगति की जानकारी दी और संबंधों को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख में जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की एक पीठ स्थापित करने को मंजूरी दे दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने कल सोशल मीडिया के माध्यम से इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से लद्दाख के दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों के लिए न्याय तक पहुंच आसान होगी। श्री शाह ने कहा कि सरकार लद्दाख के सर्वांगीण विकास और संवैधानिक सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करने के लिए

0: पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व न्यायाधीश आर सुभाष रेड्डी की अध्यक्षता में 5 सदस्यों की उच्च स्तरीय जांच समिति गठित की है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यह समिति पिछले महीने नई दिल्ली के जंतर मंतर और देश के अन्य जगहों में विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के आरोपों की स्वतंत्र जांच करेगी।
1: समिति में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा, दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश शैलेंद्र कौर, सीबीआई के पूर्व निदेशक ऋषि कुमार शुक्ला और मेघालय के सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक एलआर बिश्नोई भी शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायाधीश जॉय माल्या बागची और न्यायाधीश वी मोहना की खंडपीठ ने कहा कि उच्च स्तरीय जांच समिति कुछ मुद्दों पर प्राथमिकता के आधार पर काम करे, जिनमें सबसे अहम मुद्दा महिला प्रदर्शनकारियों के खिलाफ लक्षित हिंसा और छेड़छाड़ की कथित घटनाओं से जुड़ा है। अदालत ने समिति से कहा कि वो मुद्दों का लगातार और समय समय पर आकलन करे और अपनी अंतरिम रिपोर्ट समय पर सौंपे। समाचार कक्ष से मुनीश शर्मा।
0: भारत आज पुणे में 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया करेंगे। बैठक का विषय है लचीले भविष्य के लिए नवाचार, सहयोग और परिवर्तन, ICT। यह आयोजन ब्रिक्स सदस्य देशों की उभरती प्रौद्योगिकियों, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, भविष्य के नेटवर्क, साइबर सुरक्षा, क्षमता निर्माण और समावेशी डिजिटल कनेक्टिविटी पर विचारों का आदान प्रदान करने के लिए एक मंच प्रदान करेगा। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश में आज तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड, पश्चिम उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ओडिशा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में भी आज मूसलाधार बारिश की संभावना है। विभाग ने अगले 2 दिन के लिए आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, झारखंड, तमिलनाडु, पुदुचेरी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में गरज चमक के साथ तूफान का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। दिल्ली में आज हल्की बारिश के साथ बादल छाए रह सकते हैं। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में आज पुरुष और महिला डबल्स के क्वार्टर फाइनल मुकाबले होंगे। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का सामना चीन की लियांग वेई कैंग और वांग चांग से होगा। महिला डबल्स में ट्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी चीन की जिया यीफान और झांग शू शियान से भिड़ेंगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Tanvi Gupta. Prime Minister Narendra Modi chaired the 3rd high-level meeting with secretaries to the Government of India at his residence yesterday and discussed the future action agenda of ministries and departments dealing with infrastructure and connectivity, security and external affairs and governance. He urged secretaries to think with a long-term perspective on how the country's future should be shaped. Highlighting the importance of informal interaction and building team spirit among officers, Mr. Modi called for greater engagement between government departments, universities, and young people to bring fresh perspectives in policy making. During the meeting, the secretaries shared their experiences on sectoral priorities, emerging challenges, and implementation issues. Cabinet secretaries, secretaries of key ministries and departments, and senior officials from the Prime Minister's office attended the meeting. Japan's Minister of Defense Shinjiro Koizumi, who is on an official visit to India, called on Prime Minister Narendra Modi yesterday. During their meeting, Mr. Modi shared his vision for further strengthening the special strategic and global partnership between India and Japan and highlighted the importance of India-Japan defense and security cooperation in furthering peace, stability and prosperity in the Indo-Pacific and beyond. The Prime Minister outlined opportunities for Japan to partner with Indian companies and startups in the defense sector, particularly for co-development and co-production under the aegis of Make in India. Defense Minister Koizumi briefed Mr. Modi about the progress in bilateral defense cooperation and reaffirmed the government of Japan's continued commitment towards deepening ties with India. Prime Minister Modi also recalled his detailed discussion with Japanese counterpart Sanae Takaichi during a recent visit to India for the 16th India-Japan Annual Summit in July this year. Mr. Modi also appreciated the steady momentum in defense collaboration between India and Japan. Sharing a social media post, Mr. Modi said that they had an excellent conversation on deepening defense and security ties between India and Japan. The Prime Minister

एक बार फिर से मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। समय हो गया है प्रोग्राम अरुणिमा का और मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त भारती। शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की फिल्म भीगी पलकें के गीत के साथ। गीत को अपनी आवाज़ से सजाया है किशोर कुमार ने। गीतकार एमजी असमत, संगीतकार जुगल किशोर और तिलक राज।

अभी आपने गीत सुना फिल्म संगम से मुकेश लता मंगेशकर महेंद्र कपूर की आवाज में, गीतकार शैलेंद्र, संगीतकार शंकर जयकिशन। आगे बढ़ते हैं, अगला गीत सुनते हैं फिल्म काला पत्थर से लता मंगेशकर महेंद्र कपूर और उनके साथियों की आवाज में, गीतकार साहिर, संगीतकार राजेश रोशन।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और समय है प्रोग्राम अरुणिमा का। आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं अगला गीत फिल्म खुदगर्ज से नितिन मुकेश की आवाज में और साथ में मोहम्मद अजीज, संगीतकार राजेश रोशन।

अभी आपने गीत सुना फिल्म कुर्बान से अनुराधा पोडवाल और उदित नारायण की आवाज में। समय हो गया है कार्यक्रम के आखिरी गीत का। गीत है फिल्म लम्हे से लता मंगेशकर इलावा उनकी आवाज में गीतकार आनंद बख्शी। और इसी गीत के साथ छोड़ के जा रही हूँ आपको। जल्द मुलाकात होगी यानी 5:10 पर फिर से आऊंगी लेकर प्रोग्राम भोर सुहानी। तब तक के लिए आप मुझे दीजिए अनुमति और गीत के बाद आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी के में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में केंद्र सरकार के सचिवों के साथ तीसरी उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में देश के बुनियादी ढांचे, संपर्क, सुरक्षा, विदेश नीति और सुशासन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने अधिकारियों से देश के भविष्य को ध्यान में रखते हुए दूरगामी योजना बनाने को कहा। उन्होंने कहा कि सरकारी विभागों के बीच बेहतर तालमेल जरूरी है। श्री मोदी ने डेटा के सही इस्तेमाल पर जोर दिया और इसे देश की महत्वपूर्ण संपत्ति बताया। उन्होंने कहा कि विभागों के बीच सोचने और काम करने के तरीके में सुधार होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने सरकारी विभागों, विश्वविद्यालयों और युवाओं के बीच बेहतर संवाद पर जोर दिया ताकि नीतियां बनाने में नए विचार शामिल हो सके। उन्होंने देश के रक्षा उद्योग को मजबूत बनाने और उसे वैश्विक स्तर पर आगे बढ़ाने पर भी बल दिया। जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइज़ुमी ने कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। बैठक में भाजपा और जापान के बीच भारत और जापान के बीच रक्षा और सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों की साझेदारी हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने रक्षा क्षेत्र में जापान की कंपनियों और स्टार्टअप्स के साथ मिलकर काम करने, खासकर रक्षा उपकरणों के विकास और उत्पादन में सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं पर भी चर्चा की। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख में जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की एक पीठ स्थापित करने को मंजूरी दे दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने कल सोशल मीडिया के माध्यम से इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से लद्दाख के दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों के लिए न्याय तक पहुंच आसान होगी। श्री शाह ने कहा कि सरकार लद्दाख के सर्वांगीण विकास और संवैधानिक सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। भारत आज पुणे में 12वें ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया करेंगे। बैठक का विषय है लचीले भविष्य के लिए नवाचार, सहयोग और परिवर्तन, ICT। यह आयोजन ब्रिक्स सदस्य देशों को उभरती प्रौद्योगिकियों, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, भविष्य के लिए नेटवर्क, साइबर सुरक्षा, क्षमता निर्माण और समावेशी डिजिटल कनेक्टिविटी पर विचारों का आदान प्रदान करने के लिए एक मंच प्रदान करेगा। सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व न्यायाधीश आर सुभाष रेड्डी की अध्यक्षता में 5 सदस्यों की उच्च स्तरीय जांच समिति गठित की है। हमारे संवाददाता ने बताया कि यह समिति पिछले महीने नई दिल्ली के जंतर मंतर और देश के अन्य जगहों में विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के आरोपों की स्वतंत्र जांच करेगी।
1: समिति में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा, दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश शैलेंद्र कौर, CBI के पूर्व निदेशक ऋषि कुमार शुक्ला और मेघालय के सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक LR बिश्नोई भी शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायाधीश जॉय माल्या बागची और न्यायाधीश वी मोहना की खंडपीठ ने कहा कि उच्च स्तरीय जांच समिति कुछ मुद्दों पर प्राथमिकता के आधार पर काम करे, जिनमें सबसे अहम मुद्दा महिला प्रदर्शनकारियों के खिलाफ लक्षित हिंसा और छेड़छाड़ की कथित घटनाओं से जुड़ा है। अदालत ने समिति से कहा कि वो मुद्दों का लगातार और समय समय पर आकलन करे और अपनी अंतरिम रिपोर्ट समय पर सौंपे। समाचार कक्ष से मुनीश शर्मा।
0: और खेलों में, नई दिल्ली में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में आज पुरुष और महिला डबल्स के क्वार्टर फाइनल मुकाबले होंगे। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का सामना चीन की लियांग वेई किंग और वांग चांग से होगा। महिला डबल्स में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी चीन की जियाई फान और झांग शू शियांग से भिड़ेंगी। उधर नीदरलैंड्स के अम्स्टरडैम में FIH महिला हॉकी विश्व कप में कल भारत और इंग्लैंड का मुकाबला गोल रहित बराबरी पर रहा। इस ड्रॉ के बाद भारतीय टीम टूर्नामेंट के अगले दौर में पहुंच गई है। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश में आज तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों, पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भी आज मूसलाधार बारिश की संभावना है। विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, झारखंड, तमिलनाडु, पुदुचेरी और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में गरज चमक के साथ तूफान का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Tanvi Gupta. Prime Minister Narendra Modi chaired the third high-level meeting with secretaries to the Government of India at his residence yesterday and discussed the future action agenda of ministries and departments dealing with infrastructure and connectivity, security, external affairs and governance. He urged secretaries to think with a long-term perspective on how the country's future should be shaped. Calling for greater interoperability and effective use of data, Mr. Modi noted that data is a national asset and a resource for the future. He also emphasized the need to further strengthen the country's defense industry and make it more competitive at global level. During the meeting, the secretaries shared their experiences on sectoral priorities, emerging challenges, and implementation issues. Cabinet Secretary, secretaries of key ministries and departments, and senior officials from the Prime Minister's office attended the meeting. Japan's Defense Minister Shinjiro Koizumi, who is on an official visit to India, called on Prime Minister Narendra Modi yesterday. During their meeting, Mr. Modi shared his vision for further strengthening the special strategic and global partnership between India and Japan and highlighted the importance of India-Japan defense and security cooperation in furthering peace, stability and prosperity in the Indo-Pacific and beyond. The Prime Minister outlined opportunities for Japan to partner with Indian companies and startups in the defense sector, particularly for co-development and co-production under the aegis of Make in India. Defense Minister Koizumi briefed Mr. Modi about the progress in bilateral defense cooperation and reaffirmed the government of Japan's continued commitment towards deepening ties with India. India will host the 12th BRICS Communications Ministers meeting in Pune today. The meeting will be chaired by Union Communications Minister Jyotiraditya Scindia. It will bring together the Communications Minister and senior representatives from BRICS member countries to deliberate on strengthening cooperation in information and communication technologies, ICTs, digital transformation, innovation and resilient digital infrastructure. The theme of the meeting is Innovate, Cooperate and Transform ICT for a Resilient Future. The event will provide a platform for BRICS member countries to exchange views on emerging technologies, digital public infrastructure, future networks, cybersecurity, capacity building and inclusive digital connectivity. Union Cabinet has approved the establishment of a bench of Jammu and Kashmir High Court in Ladakh. Union Home Minister Amit Shah disclosed this in a social media post. Mr. Shah said that the decision will significantly enhance access to justice for citizens living in remote areas of Ladakh by reducing the time required to avail themselves of the legal services they are entitled to. He added that government is fully committed to the all-round development of Ladakh and to ensure

एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं आपके साथ लेकर प्रोग्राम भोर सुहानी। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, और शुरुआत करते हैं प्रोग्राम भोर सुहानी की इस भजन के साथ, जिसको अपनी आवाज़ से सजाया है आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी ने।

पंछियों से सीखिए, आसमान खुला हो तो उड़ान के लिए हिम्मत चाहिए, मंजिल की खोज होनी चाहिए, अपने सपनों को पंख दीजिए, क्योंकि रास्ते कितने भी अनजान हो, उड़ने का साहस रखने वालों के लिए आकाश कभी छोटा नहीं होता।

सुबह की पहली हवा जब चेहरे को छूती है तो लगता है जैसे प्रकृति हमें फिर से जीने का संदेश दे रही हो। हवा कहती है, बीते कल की उदासी को पीछे छोड़िए और आज को नई उम्मीद के साथ अपनाइए। हर सुबह जिंदगी हमें एक नया अवसर देती है, बस जरूरत है उस अवसर को पहचानने की।

जीवन भी पहाड़ों जैसा है, कहीं चढ़ाई कहीं ढलान, कहीं आसान रास्ते और कहीं कठिन मोड़। लेकिन हर ऊंचाई हमें यही सिखाती है कि मुश्किल रास्ते ही अक्सर खूबसूरत नज़ारे तक ले जाते हैं। इसलिए कठिनाइयों से घबराइए नहीं, एक एक कदम बढ़ाते रहिए।